FM 110.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की पहली तिथि, तदनुसार 22 जून 2026। इस समय प्रातः के 5:58 हो चुके हैं। मंगल ध्वनि के साथ हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः की 6 बजने को हैं। श्रोता आप सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल है।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वनकर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हैं। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में

0: साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में आप जानेंगे हमारे इस केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी और उनके प्रसारण समय के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद सुबह 6:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम चिंतन। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन सकेंगे सुबह 6:15 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार सुनिएगा प्रातः 6:45 पर। सुबह 7:20 पर आप सुन सकते हैं भक्ति रचना का कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान। कार्यक्रम नमस्कार चूरू का प्रसारण होगा सुबह 7:30 पर। समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज रिले किए जाएंगे सुबह 8:00 और 8:15 पर। FM चूरू से आप सुन सकते हैं झलकी का प्रसारण सुबह 9:30 पर। समाचार तरंग रिले किया जाएगा आकाशवाणी केंद्र जयपुर से सुबह 8:45 पर। सुबह 9:00 आप सुन सकते हैं आकाशवाणी केंद्र जयपुर से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। फिल्मी कव्वालियों का कार्यक्रम महफिल सुनिएगा

कार्यक्रम उमंग आप सुन सकते हैं दोपहर 12 बजे। लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर सुनिएगा दोपहर 12:30 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी केंद्र जयपुर से दोपहर 1 बजे और महिलाएं सुन सकेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगन दोपहर 1:05 पर। मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से दोपहर 2 बजे और दोपहर 2:15 पर। मेल बॉक्स ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आप सुन सकते हैं दोपहर 2:30 पर। हमारी आज की सायंकालीन सभा में शाम 5 बजे युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। शाम 6 बजे सुनेगा आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले हिंदी में समाचार, अंग्रेजी में समाचार होंगे शाम 6:05 पर। देशभक्ति फिल्मी गीत सुनेगा शाम 6:10 पर। शाम 6:20 का समय होगा आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले संस्कृत में समाचारों का। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेगा आकाशवाणी केंद्र जयपुर से शाम 6:30 पर। जिले की चिट्ठी का प्रसारण होगा शाम 6:40 पर और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं शाम 6:45 पर। किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती और गृहस्थी, समय रहेगा शाम 7 बजे का। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता सुनेगा रात्रि 8 बजे। समाचार संध्या और न्यूज एट 9 रिले किए जाएंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रात्रि 8:45 पर और रात्रि 9 बजे। राजस्थानी लोक संगीत FM चूरू से आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। कार्यक्रम पब्लिक स्पीक रिले किया जाएगा आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रात्रि 9:30 पर और कार्यक्रम खेल जगत का प्रसारण होगा रात्रि 10 बजे। इसे हम आकाशवाणी केंद्र जयपुर से रिले करेंगे। लुत्फ उठाएगा सुगम संगीत का रात्रि 10:30 पर। रात्रि 11 बजे सुनेगा आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले हिंदी में समाचार, अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे रात्रि 11:05 पर।

FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:10 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन।

साथियों, सलाह लेना कमजोरी नहीं अपितु बुद्धिमानी है। ये बात हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं क्योंकि इस दुनिया में किसी भी एक विधा में कोई एक व्यक्ति पारंगत हो सकता है, लेकिन इस दुनिया में एक नहीं हजारों, हजारों नहीं लाखों ऐसी विधाएं हैं, लाखों ऐसे रास्ते हैं जिनका ज्ञान एक व्यक्ति को होना लगभग लगभग असंभव होता है, या कहें कि बहुत दुष्कर मुश्किल होता है। आप हो सकता है किसान हैं, अपनी किसानी में, अपनी खेतीबाड़ी में आप पारंगत हो सकते हैं, लेकिन हम उसके साथ यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि आप किसानी के साथ साथ बिजनेस में, आप किसानी के साथ साथ कोई गायन में या किसी भी और प्रकार का जो फील्ड है जो आपसे, आपके व्यवसाय से रिलेटेड नहीं है, उसमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम पारंगत नहीं हों। ऐसी स्थिति में अगर दूसरा काम हमें करना पड़े, दूसरी

किसी काम में हमें उलझना पड़े तो हमें उस व्यक्ति के जो पारंगत है, विद्वान है, उनसे सलाह लेना ही बुद्धिमानी है। वहाँ पर अगर हम इस भ्रम में, अगर इस ईगो में रहते हैं कि हम किसानी में या हम इस फील्ड के जानकार हैं तो इसमें भी हम अवश्य ही जानकार होंगे, ये हमारा गलत निर्णय हो सकता है। आप हो सकता है छात्र हों, आप गणित विषय आपका अच्छा हो सकता है, साइंस हो सकता है या कोई भी, लेकिन कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जिनमें आपकी पकड़ नहीं है। वहाँ कैसे क्या होगा, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वहाँ हमें सलाह लेना ज़्यादा बेटर होगा। ऐसे ही अगर बहुत बार जिन रास्तों पर हम जा रहे होते हैं उन रास्तों से हम परिचित हो चुके होते हैं, वहाँ पर हमें सलाह लेने की शायद ही आवश्यकता हो, लेकिन जीवन केवल चुनिंदा 1, 2, 4, 5 रास्तों पर ही नहीं चलता। हमें जीवन में अनेक मोड़ ऐसे भी आते हैं जहाँ नए रास्ते चुनने होते हैं। उन नए रास्तों पर जो व्यक्ति पहले चल चुके हैं, अगर हम उनसे सलाह लेते हैं तो हमारे सफल होने की संभावना अधिक हो जाती है। इसलिए ऐसी परिस्थितियाँ जो जीवन में नई आती हैं, वहाँ हम उन व्यक्तियों से जो उन रास्तों पर पहले चल चुके हैं अगर सलाह लेते हैं तो हमारे सफल होने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। इसलिए सलाह लेना निश्चित तौर पर कमजोरी नहीं है, सलाह लेना निश्चित तौर पर किसी के ऊपर निर्भर होना नहीं है, बल्कि एक बुद्धिमानी है जिसका हमें उपयोग बिना अहंकार के कर लेना चाहिए।

श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन FM 110.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:15 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

श्रोता भी सुन रहे थे भक्ति रचना का कार्यक्रम वंदना FM 102.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:45 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार।

श्रोता इस वक्त अपने रेडियो सेट पर सुन रहे हैं हसरत जयपुरी के शब्दों को शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में। आवाज़ है किशोर कुमार की और फिल्म का नाम अंदाज़।

आई श्रोताओं सुनते हैं एक बार फिर से किशोर कुमार की आवाज़, साथ में है लता मंगेशकर।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: FM चूरू से श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार। आइए सुनते हैं अमित कुमार की आवाज। आप सुनेंगे राजेश रोशन का संगीत और इंदिवर के शब्द।

श्रोता अभी सुन रहे थे मोहम्मद रफी को। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज एक बार फिर से। श्रोताओं आप सुनेंगे आनंद बख्शी के शब्दों को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में।

श्री रामचरित मानस कान FM 102.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार चूरू। नमस्कार चूरू सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। मनीष भारद्वाज का श्रोताओं, जिस प्रकार हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारे फिट रहने के लिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए, हमारा कोई भी काम करने के लिए बहुत जरूरी है। हमारा शरीर अगर स्वस्थ है तो हम कुछ भी काम पूरी दक्षता से, पूरी तल्लीनता के साथ कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक हेल्थ की हम और बात करते हैं, वो है मेंटल हेल्थ, यानी मानसिक स्वास्थ्य। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत से ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं जो फिजिकली आपको चुस्त दुरुस्त चलते फिरते एकदम फिट दिखेंगे, फिट एंड फाइन, लेकिन उनका दिमाग किसी न किसी एंगल से, किसी न किसी रूप से पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होके कमजोर होता है। और ये कोई उसकी जन्मजात बीमारी या कोई ऐसा नहीं है कि उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो या जिसको हम पागल कहें, ऐसा व्यक्ति नहीं होता है। बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, जिस प्रकार हम हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए नियमित तौर पर योगा, व्यायाम या कुछ और इस प्रकार के कार्य करते हैं जिससे कि हमारी बॉडी चुस्त और दुरुस्त रहे, इसी प्रकार से हमें हमारे मानसिक स्वास्थ्य को अपडेट रखने के लिए, उसको पूरा चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। आपके पैर में, घुटनों में दर्द है, हो सकता है आप 5-10 प्रकार की एक्सरसाइज, योगा कर लें। आपके हाथ में दर्द है, कमर में दर्द है, हम कर लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि मानसिक स्वास्थ्य को किस प्रकार से स्वस्थ रख सकते हैं? इसके लिए भी अलग से कोई व्यायाम, योगा, तकनीक, विधियां जो भी हैं, हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य ओके नहीं है, ग्रीन रिपोर्ट नहीं है, तो हमारा फिजिकल हेल्थ सही होते हुए भी हम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं और पूरी तरह से अपने आप को किसी भी काम में नहीं झोंक सकते। आपको अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी पूरी तरह से दुरुस्त रखना है। और इसके लिए जो भी कुछ अलग से विधि, व्यायाम, योगा या हम इसके लिए स्पेशलाइज्ड अगर कोई फूड ऐसे होते हैं, आहार ऐसे होते हैं, न्यूट्रिशंस ऐसे होते हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो हमें लेने चाहिए। तो आज तक हमने इस मुद्दों पर बात करी कि किस प्रकार हम सुबह सुबह योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रखें, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो भी एक्सरसाइज, जो भी योगा, जो भी भोजन आप अपने लिए फिट पाते हैं, इसलिए हम आपको कोई सूची यहाँ पर शेयर नहीं कर रहे हैं कि आप ये कीजिए जिससे कि आपकी मेंटल हेल्थ सही रहेगी। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए कुछ रिक्वायरमेंट अलग हो सकती हैं हमसे। मेरी मेंटल हेल्थ की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है आपकी रिक्वायरमेंट से, इसलिए हम शेम कॉपी ना करते हुए इसको दुरुस्त रखने के लिए जो भी आवश्यक कार्य हैं वो हमें करने चाहिए। तो ऐसा हम करेंगे, आप और हम, उम्मीद है हम सभी से।

एफएम चूरू से श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार चूरू। श्रोताओं, बचत बनाती है हमें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर। ये बात हम जब छोटे बच्चे थे तभी से एक बिना बिजनेस किए, बिना व्यवसाय किए, बिना कोई बड़ा चौड़ा प्लानिंग किए हम इस बात को एक हल्का हल्का सा फील करते आए हैं कि जब हमें बड़ों से

एक रुपया या कुछ पैसे मिलते थे तो उसमें से कुछ पैसे बचाकर हम गुल्लक में डालते थे, और एक न एक दिन वो गुल्लक भर जाता था, और तब हमें पता लगता था कि जो हमें जेब खर्ची के रुपये मिले थे उसमें से हमने अपना मनपसंद का सामान चीज़ें खरीद के या खाकर उसके बाद जो बचा था, जो थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा लगा था उस दिन, कि ये 10 पैसे 20 25 50 1 रुपया बहुत थोड़ा सा लगा था, लेकिन वो एक एक रुपया आज जब गुल्लक खुला तब पता लगा कि सैकड़ों में या हजारों में वो रुपये होते हैं। और उन चीज़ का आप बहुत बड़ा अपने लाइफ के लिए उपयोग कर सकते हैं। बचपन की ये छोटी सी एक कला आप जिंदगी के ऊपरी स्तर पर भी कर सकते हैं और करनी ही चाहिए, क्योंकि जो छोटी छोटी बचत है वो आपको इतना बड़ा एक जीवन का आधार दे सकती है कि आप उससे अपना जीवन का कुछ भी बड़ा सेटअप कर सकते हैं। और दूसरी बात, कोई बड़े बिजनेस सेटअप की बात हम करें या ना करें, लेकिन आपका हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो अगर आपके और हमारे पास एक कैश के रूप में या बैंक में हमारे सेविंग अकाउंट के रूप में अगर रुपया एकत्रित है, तो आपका आत्मविश्वास प्रबल रहेगा कि कोई अचानक आने वाली समस्या में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। और बचत के लिए कोई बहुत बड़ा आपको साइंस, कोई बहुत बड़ी ट्रिक नहीं लगानी है। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें से कुछ अनावश्यक खर्चों को कम करते हुए रोज़ थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करें और उसको इन्वेस्ट भी करते रहें। आप देखेंगे कुछ समय बाद ही वो छोटी छोटी बचत बहुत बड़ी एक धनराशि के रूप में इकट्ठी हो जाती है, जो शायद हम एक साथ कोई और विधि से हासिल नहीं कर सकते थे।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: श्रोताओं, FM चूरू से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार चूरू। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। श्रोताओं, ये स्लोगन हमें सुनते काफी साल हो चुके हैं। इस योजना के बारे में हम इसी मंच से आपसे बहुत बार बातें कर चुके हैं। शायद आपको लगता होगा कि ये अब इसके बारे में हम सब कुछ जान चुके हैं, इसलिए शायद चर्चा करने की ज़रूरत ना हो। लेकिन साथियों, ये हमेशा याद रखें कि इस योजना के बारे में भी या किसी ऐसी योजना के बारे में भी जिनके बारे में हम सैकड़ों बार चर्चा कर चुके हों, उनके बारे में लोग आज भी पूरी तरह से अवेयर नहीं हैं। इसलिए हम आपको हमको याद दिलाने के अलावा ये उम्मीद करते हैं चर्चा के दौरान कि हमसे दूसरे लोगों तक भी ये बात पहुंच जाए कि जहां तक पहले ना पहुंची हो।

या जिन्होंने पहुंची है लेकिन उस पर गौर नहीं किया है। इसलिए आज फिर से इस मुद्दे पर बात करते हैं कि इस स्लोगन में दो बातें हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमें बेटियों की बच्चियों की सुरक्षा भी करनी है, क्योंकि बहुत से माता पिता ऐसे हैं जो कि बेटी को जन्म देने से बचना चाहते हैं और जन्म हो गया तो उसको मार देना, उसको ख़त्म कर देना या उसको कहीं लावारिस स्थिति में छोड़ देना का भी कदम उठाते हैं। तो एक तो इस काम पर रोक लगानी है और दूसरी बेटी को शिक्षित करना है, क्योंकि वह शिक्षित होगी तो आगे आप देखेंगे पूरे परिवार में किस प्रकार शिक्षा की अलख जग सकती है। तो इन दो कामों पर हम और आप अगर पहले से इन चीज़ों को कर चुके हैं तो हमारी जिम्मेवारी है कि अब अगला कदम ये होगा कि हम जो लोग इन चीज़ों पर अवेयर नहीं हैं, बहुत से दूर दराज के ऐसे एरिया हैं जहां पर इन चीज़ों की अवेयरनेस अभी नहीं है, वहां तक ये बात पहुंचानी है। और ये जो स्लोगन है इसको पूरी तरह से चरितार्थ करना है।

श्रोता, उम्मीद करते हैं कि आज जिन मुद्दों पर हमने आपने बातें की, वो मुद्दे हालांकि ऐसे हैं जिनको कि हम डे टू डे की लाइफ में रोज जी रहे हैं, लेकिन शायद कई बार इतने व्यस्तता में, इतने भीड़ भड़के में हम खुद की बातें खुद से ही भूल जाते हैं। तो इसलिए इन रोज़मर्रा की चीज़ों को सुबह सुबह इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इसलिए रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि आप और हम और हमारे सुनने वाले तमाम श्रोता और उनसे जुड़े लोग भूल न पाएं। उम्मीद करते हैं आज की बातें हम एग्जीक्यूट करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम नमस्कार चूरू संपन्न करने की अनुमति दीजिए अपने साथी मनीष भारद्वाज को।

FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं। श्रोता आप सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले समाचार प्रभात। मॉर्निंग न्यूज का प्रसारण होगा सुबह 8:15 पर। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
1: भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता होगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौ सैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कूनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कूनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कूनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा

0: सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच NTA ने नीट UG पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
2: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में आर्मस्ट्रांग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वहीं स्मॉल क्लाउड्स को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। द ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत वंदे मातरम के 150 वर्ष भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ MIFF 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
3: लेक ल्यूरसन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार

0: पर प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
2: हम लिख के गया ऐसे करते करते लेखक का दर्जा मिल गया।
3: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
4: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
5: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
6: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2 लाख अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग।

0: कंघी कहाँ गई?
1: अरे भाई उर्मेल,
2: क्या है?
1: अरे भाई कंघी कहाँ है?
2: वही होगी।
1: वहाँ कहाँ? आज कई बरस हो गए तुमसे सर खपाते कि जहाँ से चीज उठाया करो वहीं रख दिया करो, लेकिन तुम्हारे कान पर ना आज तक जो रेंगी है न रेंगेगी।
3: 15 बरस हो गए तुम्हारे दामन से बंधे हुए और ये कहते हुए कि अपने लिए अलग कंघी लाकर मेज की दराज में रखो, मगर 15 पैसे की कंघी ना आ सकी। कंघी तो क्या, घर में कभी बाहर की झलक भी ना आ सकी। यूँ गीत गाने से क्या होता है, अब के भी दिन बाहर के यूँ ही गुजर गए। अरे बाहर आई ही नहीं तो गुजर कैसे गई?
1: अच्छा अच्छा बहस ना करो, जल्दी से टी शर्ट मेज पर सजा दो। जोगिंदर बड़ा पंक्चुअल है, मेरा मतलब है कि वो ठीक वक्त पर पहुँचेगा। आखिर विदेश में 8 बरस रहकर आया है, अपने वक्त को बहुत कीमती समझता है।
3: तुम्हारा जोगिंदर अगर अपने वक्त को बहुत कीमती समझता है तो मेरी पड़ोसिन अपने इस टी सेट को बहुत कीमती समझती है। बड़ी मुश्किल से मांग कर लाई हूँ, तुमने तो पोपले मुँह से कह दिया कि जल्दी करो। जल्दी में अगर किसी प्याली का कोई कोना टूट गया तो ऐसा नया सेट लाकर देना होगा, आधी तनख्वाह से हाथ धो बैठोगे।
1: अच्छा बाबा जो जी में आए करो। हाँ धोबी मेरा कोट इस्त्री करके कब लाएगा?
3: ले आया है, लेकिन इस्त्री के बाद भी कोट बीमार के चेहरे की तरह नजर आ रहा है। अब मैं तो समझती हूँ ये स्वेटर ही पहने रहो, कोट को संदूक में ही बंद रहने दो। कुछ चीजों के जाहिर और नमूदार न होने में ही भलाई होती है।
1: हंसे जा रही हो? खामखा। अरे भाई कोई बात भी हो?
3: अजी कोई बात ही नहीं, मैं तो तुम्हारी बात पर हैरान हो रही हूँ।
1: किस बात पर?
3: तुम्हें अपनी हालत का पता था, फिर तुमने जोगिंदर को चाय की दावत क्यों दी?
1: अरे भाई बरसों के बाद एक दोस्त विदेश से आया, उल्टा वो हमें अपने घर ले गया, और फिर उसने कल हमें कितनी अच्छी चाय पिलाई। भाई मेरा भी फर्ज था कि मैं भी उसे अपने घर बुलाता।
3: मैं जानती हूँ तुम अपना फर्ज कहाँ तक पूरा करते हो।
1: प्लीज उर्मिल, ये अपने ताने थोड़ी देर के लिए उठा रखो और ये सोचो कि आज हमारी इज्जत कैसे रहेगी। जोगिंदर एक अमीर घराने का लड़का है।
3: हाँ, लेकिन तुम भी तो कल अपने मैले और घिसे कोट में ये बताने की कोशिश करते रहे कि हम किसी से कम नहीं।
1: भाई कभी कभी आदमी बात करके फंस जाता है, मैं भी फंस गया हूँ। लेकिन उर्मिल बात रखनी पड़ेगी, तुम अगर सहायता करो तो।
3: इससे ज्यादा और क्या सहायता कर सकती हूँ जी, पड़ोसन से टी सेट मांग कर लाई हूँ और लाला बनारसी दास से 10 रुपए उधार लाई हूँ, और मुझे मालूम है ये 10 रुपए का घाटा अगले महीने की तनख्वाह में क्या क्या गुल खिलाएगा।
1: गम ना करो उर्मिल, जोगिंदर आज पहली बार इतने बरसों के बाद हमारे घर आ रहा है। अरे भाई 20-50 की चीज तो लाएगा ही।
3: जी हाँ, कल तुम उसके घर क्या लेकर गए थे जो वो हमारे घर कुछ लाएगा? ये तो हाथ को हाथ धोता है।
1: तुम्हारी अकल भी खास चरने गई हुई है, वो तो कल हमें बाजार में इत्तेफाक से मिल गया था, ऐसे वक्त में उसके घर क्या ले जाते। वो समझदार दोस्त है।
3: तुम तो यूँ बातें कर रहे हो कि अगर वो तुम्हें बाजार में न मिलता, वैसे घर बुलाता, तो तुम उसके हीरे की अंगूठी ले जाते।
1: और मैं, तुम मेरी गरीबी पर वार करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती हो। अच्छा चलो ये बातें छोड़ो, देखो आज जरा सलीके से काम लेना है। सारी बात सलीके में ही होती है उर्मिल, तुम तो देखी आई हो कल आखिर जोगिंदर के घर में क्या था। खाने की तो वही चीजें थी जो आम मिलती हैं, लेकिन उसकी बहनों के सलीके ने चाय के रंग को निखार दिया था।
3: तुम भूलते हो अकेला सलीका कुछ भी नहीं होता, सलीके को 4 चांद लगाने के लिए ये होना चाहिए 10 का नोट।
1: ओफो, तुम समझी ही नहीं। अरे बाबा सलीके से मेरा मतलब ये था कि आज तुम जरा सुघड़ सयानी बनकर रहना।
3: क्या मतलब?
1: मतलब ये कि मैं जोगिंदर पर रोब गांठ चुका हूँ कि हम भी किसी से कम नहीं। हमारा ये रोब कायम रह सकता है अगर तुम।
3: अगर मैं क्या?
1: अगर तुम मेरा हाथ बटाओ।
3: बटा तो रही हूँ।
1: अभी क्या है उर्मिल, अभी तो हाथ बटाने का वक्त आएगा। देखो सुनो।
3: कहो कहो।
1: देखो जब जोगिंदर आएगा तो मैं तुमसे कोट लाने को कहूंगा, तुम 4-5 शहरों का नाम ले देना।
3: ये कोट का शहरों के नाम से क्या वास्ता?
1: पूरी बात सुनती नहीं और पट से सवाल कर देती हो। भाई मैं कह रहा था मैं तुमसे कोट मंगवाऊंगा तो तुम मुझसे कहोगी कौन सा कोट लाऊं, कलकत्ते वाला, बम्बई वाला या मद्रास वाला।
3: अच्छा ये बात है।
1: हाँ यही बात है उर्मिल। अच्छा इसी तरह मैं जो कुछ भी तुम्हें लाने को कहूँ तुम उसे लाने से पहले चंद शहरों का नाम ले दिया करना।
3: मैं समझ गई, बिल्कुल समझ गई।
1: समझ गई ना। देखो उर्मिल तुम्हारी समझ पर मुझे हमेशा ही शक रहता है, चलो जरा रिहर्सल कर ले। चलो चलो देखो कहीं ऐसा ना हो कि वक्त पर चूक जाओ और लुटिया डुबो दो। बोलो तैयार हो?
3: तैयार हूँ।
1: तो लो मैं तुमसे कोट मंगवाने लगा हूँ। उर्मिल, अरे भाई उर्मिल जरा मेरा कोट तो लाना।

0: मुंबई वाला, बंबई वाला या मद्रास वाला?
1: गुड।
2: उर्मिल, अरे भाई उर्मिल, जरा मेरे जूते तो लाना।
0: कौन से नाव? वो जो करनाल से लाए थे या वो जो आगरा से लाए थे?
2: अरे शाबाश, वेरी गुड। आज मुझे यकीन होता जा रहा है कि तुम मेरी इज्जत रख लोगी। उर्मिल जाओ, अब पिताजी को सामान लाने भेज दो। हैं?
0: बहुत अच्छा।
2: हे प्रभु अपरंपार, तू बड़ा मेहरबान है, तू सब का पर्दा रखता है, एक तेरा सहारा भक्तों के कष्ट हरो प्रभु।
0: सुनो, शायद जोगिंदर आ गया।
2: देखो तुमने पिताजी को भेज दिया है ना?
0: हाँ।
2: पिताजी आए तो उन्हें दूसरे कमरे में बिठाना, मेरे पास तो फिर भी घिसा हुआ कोट है, उनके पास है ही नहीं, और उनके स्वेटर में भी कई छेद हो रहे हैं।
0: तुम पिताजी को क्या समझते हो, बड़े समझदार है, वो खुद ही खिसक जाएंगे।
2: अच्छा जाओ जोगिंदर को ले आओ।
0: तुम तैयार तो हुए नहीं?
2: अरे इसमें भी एक भेद है। हाँ
0: अच्छा, मैं समझ गई समझ गई।
3: हेलो भाभी, हेलो।
0: मैंने क्या कहा था, सचमुच भैया जोगिंदर ही निकले?
3: और कौन हो सकता था। हेलो
0: हरी। अच्छा बैठिए।
3: आई एम सॉरी हरी,
0: मैं अभी चाय लेकर आई।
3: क्या मुझे यही वक्त नहीं दिया गया था?
2: बिल्कुल यही वक्त दिया गया था, और मुझे मालूम था जोगिंदर कि तुम एक मिनट भी आगे पीछे नहीं आओगे।
3: तुम्हें मालूम था और फिर भी तुम तैयार नहीं हो?
2: तैयार? हेलो अभी तैयार हुआ जाता हूँ। उर्मिल, अरे भाई उर्मिल, जरा मेरा कोट तो लाना।
0: कौन सा जी, कलकत्ते वाला, बंबई वाला या मद्रास वाला?
2: लो बताओ यार, उर्मिल ने एक नया झंझट पैदा कर दिया, अब मैं क्या फैसला करूंगा कौन सा कोट पहनूंगा। हटाओ यार, मैं कोई सा भी कोट नहीं पहनता।
3: दोस्त बड़े मजे करते रहे हो, अगर मैं देश विदेश की हवा खाता रहा हूँ तो तुम हिंदुस्तान का कोना कोना छान चुके हो।
2: यार काम ही ऐसा मिला है, पांव में चक्कर है, मुझे अपने काम से कोई शिकायत नहीं, अच्छे पैसे मिलते हैं और सैर भी हो जाती है, नए तजुर्बे होते हैं, नए लोग मिलते हैं। मैं तो हैरान होता हूँ कि हमारा देश भी पूरी दुनिया है।
3: तुम बहुत खुशकिस्मत हो हरीश। यार मैं भी कोई ऐसा ही काम ढूंढूंगा।
2: जरूर जरूर दोस्त, ऐसा काम ढूंढ लो तो कभी कभी सफर में साथ हो जाया करेगा। अच्छा यार कोट ना सही, मेरा ख्याल है टाई ही बांधे लेता हूँ। उर्मिल, अरे भाई उर्मिल, जरा कोई अच्छी सी टाई तो लाना।
0: कौन सी लाऊं, वो जो पेरिस से मिस्टर आंद्रे ने भेजी थी या वो जो न्यूयॉर्क से आई थी?
2: यार उर्मिल में ये बड़ी खूबी है कि वो मेरी हर एक टाई को पहचानती है, लेकिन पसंद का सवाल मुझ पर ही छोड़ देती है, और मैं उस घड़ी कोई भी फैसला नहीं कर सकता। चलो हटाओ यार, आज टाई भी नहीं पहनू।
0: इन जैसा भी कोई नहीं देखा, कभी तो दिन में तीन तीन बार सूट बदलेंगे, नई नई टाई लगाएंगे, और कभी सिर्फ कमीज और पतलून पहन कर निकल जाएंगे।
3: भाभी आदमी को ऐसा होना ही चाहिए, कुछ बातों का पाबंद रहे और कभी सारी पाबंदियां तोड़ दे।
2: That's it, that's
3: बिल्कुल
2: it.
3: इसी तरह किसी दिन मेरा भी यही जी चाहता है कि रात को सोने का लिबास पहनकर सड़क पर घुमा करूं।
0: तुम दोनों दोस्तों की आदतें कितनी मिलती जुलती हैं।
3: अच्छा भाई, टाई नहीं बांधते तो ना बांधो, कोट नहीं पहनते तो ना पहनो, लेकिन मियां जूते तो पहन लो।
2: हाँ हाँ, जूते तो जरूर पहनना चाहिए, भाई आदमी नंगे पांव तो गंवार नजर आता है। उर्मिल चलो जूते ही ले आओ।
0: कौन से लाऊं जी, वो जो करनाल से लाए थे या आगरे से लाए थे या वो जो लखनऊ से लाए थे?
2: देखा तुमने फिर वही झमेला खड़ा कर दिया, तुमसे कितनी बार कहा है तुम ये भूल जाया करो कि मैं कौन सी चीज किस शहर से लाया हूँ।
3: ये तो भाभी का कमाल है कि उसने अपने दिमाग में तुम्हारी हर चीज पर यूं निशानी लगा रखी है जैसे दुकानों में चीजों पर लेबल चिपकाए जाते हो। तुम मेरे दोस्त हर तरह से खुश नसीब हो।
2: मैं तो कभी कभी सोचा करता हूँ यार कि अगर उर्मिल ना होती तो जिंदगी जहन्नुम बन जाती।
3: अरे हाँ भाई, सुना है तुम्हारे पिताजी रिटायर्ड होने के बाद तुम्हारे पास ही रहते हैं?
2: हाँ मेरे पास ही रहते हैं।
3: इस वक्त कहाँ होंगे, उनसे भी तो मिलना चाहिए।
2: जरूर जरूर, मगर वो शायद बाजार गए हैं।
0: नहीं आ गए हैं, मैंने अभी अभी रसोई में आहट सुनी थी, वही होंगे।
2: अच्छा तो उर्मिल जरा पिताजी को बुला लाओ।
0: कौन से पिताजी, लुधियाने वाले, पटियाले वाले या अमृत?
2: उर्मिल जोगिंदर, जोगिंदर तुम कहाँ जा रहे हो यार? जोगिंदर, जोगिंदर, वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। कौन से पिताजी, लुधियाने वाले, पटियाले वाले या अमृतसर वाले? तुम्हारी अकल कभी ठिकाने होती है? बनी बनाई बात बिगाड़ दी।
0: मैं क्या करती, तुम्हीं ने तो कहा था कि मैं जो भी चीज मंगवाऊ तुम दो चार शहरों का नाम ले देना, बेखाली में मेरे मुंह से लुधियाना और पटियाले वाले पिताजी निकल गया, वरना मैं इतनी बेवकूफ तो नहीं।
2: बेवकूफों के सर पर कोई सींग हुआ करते हैं क्या? बात मुंह से निकालते हुए कुछ सोचा तो होता।

0: जल्दी में ध्यान ही नहीं रहा, यहाँ मैं जोगिंदर को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। अरे पिताजी आप क्यों हंस रहे हैं?
1: मैं हंस रहा हूँ कि बाजार से मैं जो ये मथुरा के पेड़े, संदीले के लड्डू, कराची का हलवा और नागपुर के संतरे लाया हूँ, उन्हें वो शख्स तो खाएगा नहीं जिनके लिए ये लाए गए हैं। वो तो चला गया।
0: अच्छा, तो आप हमारी सारी बातें सुनते रहे हैं, वरना आप इतने शहरों के नाम नहीं गिनवाते।
1: सुनता तो रहा।
0: तब फिर आप हंस क्यों रहे हैं? उर्मिल ने जो कुछ किया है उस पर रोना चाहिए, मगर आप है यहाँ से जा रहे हैं।
1: अरे भाई, हंस रहा हूँ कि तुम खाम खा उर्मिल पर बिगड़ रहे हो। इस बिचारी ने कोई गलती नहीं।
0: आप भी कमाल करते हैं पिताजी। उर्मिल ने कोई गलती नहीं की।
1: नहीं, कोई गलती नहीं की। बेटा, मैं अपनी मुलाजमत के दौरान लुधियाना भी रहा हूँ, पटियाला भी रहा हूँ और अमृतसर भी।
0: तुम भी हंस रही हो?
2: हंस रही हूँ कि मैंने गलती तो की, मगर वो कोई गलती ही नहीं थी।
0: अरे जोगिंदर, तुम तो चले गए थे यार। आओ।
3: गया कहीं भी नहीं था भाई, मुझे भाभी की एक्टिंग के फेल हो जाने पर इतनी हंसी आई कि वो गले में ऊंचू लग गया। और फिर मैं ये पैकेट अपनी मोटर में छोड़ गया था।
0: पैकेट?
3: इसे खोल कर देखो भाभी।
2: ये तो सूट है। बहुत अच्छा।
3: ये मैं हरीश के लिए पेरिस से लाया हूँ।
2: पेरिस से?
3: हाँ, पेरिस से।
0: So nice of you.
3: इसकी अंदरूनी जेब के नीचे पेरिस के दर्जी का नाम देख लो। देखो भाभी।
2: हाँ?
3: ये
2: हाँ, है तो पेरिस का सिला हुआ।
3: और ये भाभी मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ।
2: नेकलेस? ये नेकलेस कहाँ से लाए हो? लंदन से, रोम से या बर्लिन से?
0: अपनी अकल का ढिंढोरा पीट कर मजाक कर रही हो?
3: ये भाभी तुम्हारी एक्टिंग के फेल होने का इनाम है।
1: अरे इनाम तो एक्टिंग की कामयाबी पर मिला करता है।
0: जोगिंदर, इनसे मिलो, मेरे पिताजी।
3: आपसे मैं मिल चुका हूँ।
0: कब?
3: हंसी से लोटपोट होकर जब मैं बाहर गया तो आपसे मुलाकात हुई और आप ही ने मुझे बहुत कुछ बताया भी।
0: क्या कुछ बताया था?
3: यही कि दोस्त बनावट से काम नहीं लिया करते, दोस्तों में कोई पर्दा नहीं होता और किसी चीज को छुपाया नहीं जाता। हरीश,
0: क्या है?
3: जाने दो, बुरा मान जाओगे।
0: नहीं नहीं, कहो यार।
3: हरीश, तुम मेरे दोस्त हो और मेरे टोकियो, होनोलुलु, हांगकांग, काठमांडू के दोस्तों से अच्छे दोस्त हो।
1: तो लाहू संदीले के लड्डू, मथुरा के पेड़े और नागपुर के संतरे।

0: हम भी किसी से कम नहीं। आप सुन रहे थे मखमूर जालंधरी की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे सत्येंद्र शरद।
1: श्रोता अभी सुन रहे थे झलकी हम भी किसी से कम नहीं FM 100.7 MHz पर। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 होने को हैं। श्रोता आप सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र जयपुर से रिले समाचार तरंग। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: स्वागत करते हैं। प्रस्तुत है सप्ताह भर की सुर्खियां।
1: दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योग सभी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है।
0: राज्यस्तरीय समारोह सिरोही के आबूराज में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया।
1: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का प्रदेश दौरा, विभिन्न रेल सेवाओं और सुविधाओं

0: का लोकार्पण किया।
1: केंद्र सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल के पूरे होने के उपलक्ष्य में विविध गतिविधियां।
0: लोगों की समस्याओं के एक ही स्थान पर समाधान के लिए प्रदेश भर में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन।
1: बच्चों में दस्त रोग से होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए शुरू किया गया स्टॉप डायरिया कैंपेन।
0: विश्व रक्तदाता दिवस पर प्रदेश भर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाए गए।
1: वीरता और स्वाभिमान के अमर प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से मनाई गई।
0: दुनिया भर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। विश्व भर में बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग थीम पर कार्यक्रम हुए। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व करते हुए कहा कि योग सभी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है।
2: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
0: प्रदेश में सभी जिलों, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों, शैक्षणिक संस्थानों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर योग कार्यक्रम हुए। राज्य स्तरीय समारोह सिरोही के आबू राज में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समारोह में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि योग अब एक विश्वव्यापी जन आंदोलन बन गया है। उन्होंने सभी से स्वस्थ जीवन शैली के लिए नियमित योग अपनाने का आह्वान किया।
3: शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को जोड़ता है, वैसे ही योग आज विश्व को भी जोड़ रहा है। योग के शारीरिक और मानसिक लाभ भी अनगिनत है। ये शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाता है, तनाव, चिंता और क्रोध को कम करता है तथा मन को शांति प्रदान करता है, एकाग्रता बढ़ाता है, निर्णय क्षमता को मजबूत करता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। आधुनिक विज्ञान भी आज योग की महत्ता को स्वीकार कर रहा है।
0: इधर बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने योग शिविर में योगाभ्यास किया। योग प्रोटोकॉल सत्र में भाग लेने से पहले मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जीवन में योग को अपनाने से न केवल बीमारियों से बचाव संभव है बल्कि ये एक संपूर्ण जीवन पद्धति भी है।
4: योग को अपनी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बनाए हम सब। योग से ही जीवन के सारे रोग दूर हो सकते हैं और साथ ही साथ जीवन जीने की एक पद्धति बन सकती है योग। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत भारत की संस्कृति को विश्व के पटल पर पहुंचाया, वैसा ही योग को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पटल पर पहुंचाया है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रदेश को कई रेल सेवाओं और सुविधाओं की सौगात दी। उन्होंने बीकानेर से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे गुजरात और राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान के पूरे सीमावर्ती क्षेत्र को रेल नेटवर्क से जोड़ने की परियोजना पर काम किया जा रहा है।
5: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है, जिसमें हमारे, अगर हम देखें, सरूपसर से, जैतसर से अनूपगढ़, अनूपगढ़ से रोजरी बीकानेर, एक लाइन ये हो गई, और अनूपगढ़ से खाजूवाला, खाजूवाला से जैसलमेर और बाड़मेर होते हुए भिलड़ी। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है और हमारे प्रदेश के लिए भी बहुत अत्यंत आवश्यक है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं।
1: केंद्रीय मंत्री ने जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। ये रेलगाड़ी राजस्थान और बिहार के बीच संपर्क को नई गति देगी। श्री वैष्णव ने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने 41 छोटे और मध्यम स्टेशनों पर नए प्लेटफॉर्म विस्तार तथा 16 स्टेशनों पर एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली का भी लोकार्पण किया। इसके अलावा राज्य के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर विकसित की गई यात्री सुविधाओं का भी लोकार्पण किया गया।

0: केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्यभर में जागरूकता प्रदर्शनियां और प्रचार गतिविधियां आयोजित की गई। 12 साल विश्वास की, विकास की, जनकल्याण के विषय पर आयोजित प्रदर्शनी में सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अलवर जिला मुख्यालय पर लगाई गई प्रदर्शनी का प्रभारी मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीना ने अवलोकन किया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और इसके लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा।
1: विकसित भारत संकल्प सम्मेलन के तहत बीकानेर में भाजपा की ओर से प्रबुद्ध जन सम्मेलन रखा गया। सम्मेलन में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों में भारत ने विकास, सुशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक न्याय और जनकल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ काम किया है।
2: नल से जल की बात करो, हर घर बिजली की बात करो, बिजली पहुंचने की बात हो और चाहे देश की रक्षा सुरक्षा की बात हो, इसी कालखंड में देश ने सर्जिकल स्ट्राइक देखा, एयर स्ट्राइक देखा, ऑपरेशन सिंदूर भी देखा और इसी कालखंड में धारा 370 समाप्त हुए भी देश ने देखा और जम्मू कश्मीर भी मुख्य धारा में जुड़ा।
0: प्रदेश में इन दिनों विभिन्न जिलों में आयोजित हो रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से स्थानीय लोग लाभान्वित हो रहे हैं। शिविरों में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है, साथ ही आवासीय पट्टे भी सौंपे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सहित अन्य कैबिनेट मंत्री और आला अधिकारी इन शिविरों का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने उदयपुर में शहरी सेवा शिविर में अवलोकन किया। उन्होंने उदयपुर विकास प्राधिकरण परिसर में आयोजित शिविर में लाभार्थियों को पट्टे, प्रमाण पत्र और दिव्यांगों को सहायता राशि के चेक तथा सहायक उपकरण वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिविर में मौजूद लोगों से बातचीत कर फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री ने आमजन से अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों को शिविरों तक पहुंचाने में सहयोग करने का आह्वान किया।
3: मित्रों, इन शिविरों के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारी शहरी क्षेत्रों जो भी हमारे वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको उनका लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो नामांतरण का हो, शुद्धिकरण का हो, बंटवारे का हो, पट्टों का हो, उसके घर में किसी तरह से कोई परेशानी जैसे नाली, सड़क, खरंजा, सिवरेज खराब, बिजली की व्यवस्था, ये सारे विषय उसमें आते हैं। हम चाहते हैं कि इन शिविरों का आम जन को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले।
0: सवाई माधोपुर में लगाए गए शिविर में वहां की निवासी सुनीता अग्रवाल को आवासीय पट्टा सौंपा गया। इस पर खुशी व्यक्त करते हुए उन्होंने सरकार का आभार जताया।
4: मैं सवाईमाधोपुर जिले की रहने वाली हूँ और मैं पट्टे के लिए 1.5-2 साल पहले आवेदन करा था, तो आज हमें प्राप्त हुआ, मैं बहुत खुशी हुई और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री साहब का दिल से आभार करना चाहूँगी, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद।
0: इंडिया स्टोन मार्ट 2028 के आयोजन के लिए रीको और लघु उद्योग भारती के बीच एमओयू हुआ। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ की मौजूदगी में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कार्यक्रम में ये एमओयू किया गया। इस मौके पर श्री राठौड़ ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में पत्थर और शिल्प की कोई कमी नहीं है, इसे उत्कृष्ट पहचान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि स्टोन मार्ट पत्थर उद्योग के लिए वैश्विक मंच के रूप में उभर चुका है।
5: राजस्थान का जो पत्थर है वो निश्चित रूप से बहुत मशहूर है, चाहे यहाँ का मार्बल हो, हमारा कोटा स्टोन हो, लाइम स्टोन हो, सैंड स्टोन हो, नॉर्वुड स्टोन हो, जैसलमेर स्टोन हो, हर तरह से, चाहे आधुनिक बिल्डिंग हो, चाहे पुरानी जो किले है, मंदिर है, हर तरफ हमें राजस्थान का पत्थर दिखाई देता है और ये पत्थर तो ऐसा है जिसके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए टूरिस्ट विदेशों से आते हैं, तो पत्थर में कोई कमी नहीं। अब ये हमारी पीढ़ी के ऊपर निर्भर करता है, हम एक दूसरे के साथ बैठकर किस तरह का मंथन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, किस तरह से जोड़कर अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर अब डिपेंड करता है कि हम राजस्थान के पत्थर को और कितना ऊंचा लेंगे।
1: राज्य में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्टॉप डायरिया कैंपेन चलाया जा रहा है। 5 वर्ष तक के बच्चों को दस्त रोग से सुरक्षित रखने और बाल मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से ये कैंपेन चलाया जा रहा है। 16 जून से शुरू हुआ ये अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। हनुमानगढ़ के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि इसके लिए अस्पतालों में विशेष व्यवस्था की गई है, वहां ORS कॉर्नर बनाए गए हैं,
6: जिसमें इस बार की हमारी थीम है डायरिया की रोकथाम, सफाई और ORS से रखें अपना ध्यान। इस कैंपेन के दौरान।

0: हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी आशा आएएनएम घर घर जाकर जागरूकता भी करेंगे, हाथ धोने की तकनीक, सफाई किस तरीके से रखें, और साथ में हमारा ORS और जिंक वितरित भी किया जाएगा। हमारे सभी संस्थानों पर ORS कॉर्नर बनाए जाएंगे। इसका मूल उद्देश्य है कि जो 5 साल तक के बच्चे हैं, जो डायरिया से जिनको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उनकी रोकथाम और डायरिया के लिए जागरूकता।
1: प्रदेश में शिशु मृत्यु दर IMR में लगातार सुधार हो रहा है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की ताजा आंकड़ों के अनुसार शिशु मृत्यु दर में 1 अंक की कमी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग में शिशु स्वास्थ्य परियोजना निदेशक डॉ. प्रदीप चौधरी ने आकाशवाणी को बताया कि नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से शिशुओं को बेहतर देखभाल मिल पा रही है।
2: हमारे राज्य में जो नवजातों की, जो बीमार नवजात है स्पेशली, उनकी जो उपचार के लिए जो सुविधाओं का विस्तार हुआ है, अभी राज्य में 71 स्पेशल न्यूबोर्न केयर यूनिट्स, जिनको सामान्य भाषा में आप नर्सरी भी बोलते हैं, और लगभग 1,20,000 के लगभग नवजात वित्तीय वर्ष 25-26 में इन यूनिट्स में भर्ती कर उपचारित किए गए थे। उसके अलावा आशाओं द्वारा घर घर जाकर जो नवजात होते हैं उनकी होम बेस्ड न्यूबोर्न केयर विजिट किया जाना, उसके बाद 3, 6, 9, 12, 15 महीने पे भी बच्चों की विजिट आशाओं द्वारा की जाती है, उनका टीकाकरण इंश्योर किया जाता है। टीकाकरण का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है शिशु मृत्यु दर को कम करने में।
1: विश्व रक्तदाता दिवस पर विभिन्न जिलों में सामाजिक संगठनों की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाए गए। मानवता की एक बूंद रक्तदान करें जीवन बचाएं थीम पर लगाए गए इन शिविरों में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। करौली से हमारे संवाददाता बांकी बिहारी शर्मा ने बताया कि वहां शिविरों में निशुल्क रुधिर जांच की गई और बड़ी संख्या में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया।
3: हिंडौन उपखंड रक्तदान की मजबूत परंपरा के लिए पहचान बना चुका है, जहां प्रतिवर्ष 1000 यूनिट से अधिक रक्त का संग्रह किया जाता है। यहां से एकत्रित रक्त का उपयोग जयपुर, करौली सहित विभिन्न ब्लड बैंकों के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों के उपचार में किया जाता है। सामाजिक संगठनों, युवाओं और स्वयंसेवी रक्तदाताओं की सक्रिय भागीदारी से जिले में रक्तदान के प्रति जागरूकता लगातार बढ़ी है। विश्व रक्तदाता दिवस पर जिला मुख्यालय स्थित जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर आयोजित किया, जहां अधिकाधिक लोगों से रक्तदान कर जीवन बचाने के इस महादान में सहभागी बनने की अपील की गई है।
1: वीरता और स्वाभिमान के अमर प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती और हल्दीघाटी विजय के 450 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम रखे गए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भारतीय क्षत्रिय महासंघ की ओर से जयपुर में आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की। उदयपुर में शोभा यात्रा निकाली गई और राष्ट्रीय चेतना संकल्प सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने महाराणा प्रताप के संघर्ष को देश की स्वतंत्र चेतना, स्वाभिमान और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा का प्रतीक बताया।
4: हल्दीघाटी युद्ध में विजय हुई महाराणा प्रताप की, वहां लड़े थे थोड़े से मेवाड़ के वीर, मेवाड़ की जनता के साथ राणा प्रताप नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूरा भारत उस लड़ाई पर निगाह टिकाए बैठा था। और उस लड़ाई ने यह तय कर दिया कि ये जो विदेशी आक्रमण है ये भारत को झुका नहीं सकता। हम भारतवासी अपने धर्म संस्कृति से यहाँ पहले से है, बाद में भी रहेंगे।
1: श्रोताओं, आज के संक में बस इतना ही। अब हमें इजाजत दीजिए। जाने से पहले आपको बता दें, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रहे रामनाथ मीना।
5: अभी आप सुन रहे थे समाचार तरंग। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह अमीर चैनल है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
6: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में सिजेरियन के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी, विशेषज्ञों की टीम अलर्ट मोड पर। राज्य स्तरीय CSR कॉन्क्लेव का आयोजन आज से सवाईमाधोपुर में किया जा रहा है। और राज्य में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज से 7 जिलों में 3 दिनों तक आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट।

0: समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। दो दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी से जुड़े सुरक्षित उपायों के मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल उदयपुर की महत्वाकांक्षी देवास 3 और 4 पेयजल परियोजनाओं का हवाई निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन बांधों के कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण परियोजना के सभी काम उच्च गुणवत्ता और पूर्ण सुरक्षा मानकों के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने से उदयपुर शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों की वर्तमान तथा भविष्य की पेयजल आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी। इस मौके पर वरिष्ठ प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बांध, टनल निर्माण और पुनर्वास से जुड़े कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। राज्य सरकार प्रदेश में डेयरी सेक्टर को मजबूत करने और युवाओं को रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। पशुपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कल पाली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि राजस्थान का डेयरी क्षेत्र बेहद मजबूत है और इस पर गुजरात डेयरी या अन्य किसी बाहरी का हस्तक्षेप का कोई असर नहीं पड़ेगा।
1: हमारा डेयरी सेक्टर इतना मजबूत है कि यहाँ पर उन नियमों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा गांव-गांव तक, हर किसान तक हमारा डेयरी सेक्टर फैला हुआ है। हम किसानों को फैट के आधार पर, दूध पालकों को फैट के आधार पर तो पैसा देते हैं, लेकिन 5 रुपए सरकार की तरफ से पर लीटर उनको अनुदान भी देते हैं। इसलिए जो लोग, जो किसान, जो पशुपालक हमारी डेयरी से जुड़े हुए, निश्चित रूप से वो हमारी डेयरी से जुड़े रहेंगे। उनके नियमों से हमारे यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं।
0: रोजगार के मोर्चे पर राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए श्री कुमावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में 4.25 लाख सरकारी नौकरियां देने के बजट घोषणा पर तेजी से अमल हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने अलवर जिले को विकास की 2 बड़ी सौगातें दी है। उन्होंने 42.80 करोड़ रुपए की लागत से कल नटनी का 12 से जैसमन बांध नहर को पक्की करने के काम का शिलान्यास किया। साथ ही 3.34 करोड़ रुपए से निर्मित भाखेड़ा एनिकेट का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन दोनों परियोजनाओं से क्षेत्र का भूजल स्तर रिचार्ज होगा, जिससे वन्य जीवों, किसानों और आमजन की पानी की जरूरतें पूरी होंगी। जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में डिलीवरी के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। इनमें से 2 महिलाओं की हालत गंभीर होने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। इन सभी महिलाओं की शनिवार को सिजेरियन डिलीवरी कराई गई थी। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि ऑपरेशन के बाद प्रसूताओं को स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं होने लगी, जिसके बाद उनका उपचार शुरू किया गया।
2: पावटा अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर कुलबीर चोपड़ा ने बताया कि शनिवार को अस्पताल में 8 सिजेरियन ऑपरेशन हुए। ऑपरेशन के बाद भी सभी का ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव होने लगा। इनमें से 2 महिलाओं की स्थिति अत्यंत गंभीर होने पर उन्हें तत्काल मथुरादास माथुर अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उन्हें आईसीयू में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। दोनों मरीजों की किडनी भी प्रभावित हुई है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से ऑपरेशन थिएटर बंद कर दिया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो सकेगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov

0: www.govi.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। सवाई माधोपुर में आज से राज्य स्तरीय कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान वन विभाग की ओर से हो रहे दो दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य CSR के माध्यम से वन और वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन तथा स्थानीय समुदायों के सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री होंगे और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता।
1: राजस्थान वन विभाग द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के माध्यम से वन और वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन तथा स्थानीय समुदायों के सतत विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आज से राज्य स्तरीय CSR कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। कॉन्क्लेव में विभिन्न कॉरपोरेट संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों, उद्योग समूहों, गैर सरकारी संगठनों, वन अधिकारियों, संरक्षण विशेषज्ञों तथा नीति निर्माताओं की सहभागिता रहेगी। कार्यक्रम का उद्देश्य वन विभाग और कॉरपोरेट क्षेत्र के मध्य प्रभावी साझेदारी स्थापित कर वन और वन्य जीवों का संरक्षण प्रभावी बनाना है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान में राजस्थान की पहली सफेद बाघ सफारी शुरू हो गई है। यहां सफेद बाघ, भीम और सुनहरी बाघिन सस्कंधी को टाइगर सफारी क्षेत्र में छोड़ दिया गया है। रविवार को पर्यटकों ने सफारी के दौरान इन दोनों बाघों को नजदीक से देखा। इससे पहले ये बाघ केवल जैविक उद्यान क्षेत्र में रखे गए थे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा शुरू करेगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में इस महीने की 30 तारीख तक प्रतिदिन दो पारियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो JRF सहायक प्रोफेसर पदों तथा PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। NTA ने अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड करने और परीक्षा से संबंधित सभी विवरणों का सावधानीपूर्वक सत्यापन करने की सलाह दी है। नीट UG पुनर्परीक्षा कल कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेशों के 14 केंद्रों पर कुल 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। इधर प्रदेश के विभिन्न जिलों में नीट परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई। इसी कड़ी में राजधानी जयपुर में भी रविवार को नीट UG की पुनः परीक्षा कड़े सुरक्षा प्रबंधों और प्रशासनिक निगरानी के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। राज्य में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम ने करवट ली है। प्रदेश में सक्रिय हुए एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में कल सर्वाधिक अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस तापमान फलोदी में दर्ज किया गया। आज 7 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। जोधपुर और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में 25 जून तक आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है। इस बीच विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि खुले में रखी तैयार फसलों और अनाज को सुरक्षित स्थानों पर ढक कर रखें ताकि उन्हें भीगने से बचाया जा सके। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में सिजेरियन के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी, विशेषज्ञों की टीम अलर्ट मोड पर। राज्य स्तरीय CSR कॉन्क्लेव का आयोजन आज से सवाईमाधोपुर में किया जा रहा है और राज्य में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज से 7 जिलों में 3 दिनों तक आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:10 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं देशगान।

कार्यक्रम के आगाज में आप सुनेंगे मोहम्मद रफी मन्ना डे, बातिश सुधा और साथियों की आवाजें। इस कव्वाली को शब्द दिए हैं साहिर लुधियानवी ने और

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।
1: FM चूरू से श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं फिल्मी कव्वालियां। कार्यक्रम चल रहा है महफिल।

महेंद्र कपूर, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों के साथ ही आज का फिल्मी कव्वालियों का कार्यक्रम महफिल यहीं संपन्न होता है। एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रलोक।

श्रोताओं, कार्यक्रम चित्रलोक में आज हम सुनेंगे अभिनेता विनोद खन्ना पर अभिनीत फिल्मी गाने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुर्बानी फिल्म से। इस नगमे को गाया है कंचन और मनहर ने।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: हो गया इंतजाम।
4: किसका?
3: गुड्डी की फीस का।
4: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
5: RBI कहता है,
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: जानते,
7: FM चूरू से श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रलोक। आपके रेडियो सेट पर इस वक्त आप सुनेंगे कुमार सानू और साधना सरगम को। राजेश रोशन के संगीत को शब्द दिए हैं इंदिवर ने।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

श्रोता भी सुन रहे थे किशोर कुमार द्वारा गाया इम्तिहान फिल्म का नगमा।

श्रोताओं से माफी चाहेंगे, समय अभाव के कारण से गीत आपको पूरा नहीं सुनवा पाई। कार्यक्रम चित्रलोक में आज आप सुन रहे थे अभिनेता विनोद खन्ना पर अभिनीत फिल्मी गीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने को हैं। श्रोता आप सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र मुंबई से रिले विविध भारती के कार्यक्रम। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: ये है विविध भारती
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

श्रोताओं नमस्कार, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं, जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई है उनकी बेटी रीमा अमरा।

0: पुरकर उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत की पहली कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक बहुत खास शख्सियत मौजूद हैं जो एक और बहुत ही खास शख्सियत को याद करने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में आई हैं। कार्यक्रम का नाम ही उजाले उनकी यादों के है, तो आज का कार्यक्रम है उजाले सदाशिव अमरापुरकर की यादों के। और ये उजाले बांटने के लिए मौजूद हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। बहुत बहुत स्वागत रीमा जी।
2: धन्यवाद धन्यवाद।
1: पिताजी की यादों के उजाले बांटने के लिए आकाशवाणी के स्टूडियोज में, विविध भारती के स्टूडियोज में आते हुए जो पहली फीलिंग है वो क्या है?
2: आकाशवाणी या विविध भारती के स्टूडियोज में मैं जब भी आती हूँ तो थोड़ा मैं अपने बचपन में चली जाती हूँ, बिकॉज हमारी पूरी फैमिली का आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, विविध भारती, इससे बहुत ही करीबी संबंध रहा है। तो मेरी माँ भी रेडियो आर्टिस्ट थी, अलग अलग ड्रामास, एड फिल्म्स में उन्होंने काम किया था ऑल इंडिया रेडियो के लिए। मैं खुद बचपन में मराठी दो शोज कर चुकी हूँ जिसमें मैं वॉइस आर्टिस्ट थी। और सबसे जरूरी बात कि 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है जो उन्होंने आकाशवाणी के साथ की है,
1: परभणी में।
2: तो वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहां पर वो लगभग 2 महीने टिके, तो ये टिके ही कहना सही होगा, बिकॉज उनकी वो पर्सनालिटी नहीं थी कि वो जॉब करे, क्योंकि शादी हो चुकी थी, 2 बच्चियां थी। तो इसलिए पिताजी को दिखाने के लिए कि नहीं नहीं मैं कमा रहा हूँ, उन्होंने वो जॉब की थी।
1: ये सोचकर कितना मजेदार लगता है कि वो मराठी में बोलते होंगे आकाशवाणी का ये परभणी केंद्र है।
2: और उनकी आवाज तो वैसे भी उनकी स्ट्रेंथ थी, आज भी है। मतलब आज भी जब भी हम आवाज सुनते हैं तो फैमिली मेंबर्स की तो हमारी आंखें भर आती है। उस वक्त तो उनकी ताकत बहुत ही ज्यादा थी उस आवाज की, तो उनके बहुत सारे फैंस हो गए थे। और फिर ऐसे हुआ कि एक पॉइंट पे मम्मी को ऐसे लगने लगा कि अरे अभी बहुत ही ज्यादा फैंस हो रहे हैं इनके, विशेषतः लड़कियां, तो ये अगर छोड़ रहे हैं जॉब तो ठीक ही बात है।
1: वाह वाह वाह। ये रेडियो में आना उनका कैसे हुआ था, इसकी कोई कहानी हो तो वो?
2: हाँ, तो उसमें बात ऐसी थी कि जैसा मैंने कहा कि पापा बिल्कुल ही पूरी तरह से वो थिएटर, रंगमंच, नाटक, इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व थे, कि दिमाग में 2400 घंटे वही चलता था। और माँ की और उनकी जो मुलाकात हुई थी वो भी नाटक के दौरान ही हुई थी। मतलब मजे वाली बात यह है कि वो बचपन से, जैसे हम लोग कहते हैं किंडरगार्टन से, वैसे बचपन से वो एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में पढ़े। लेकिन कॉलेज में, क्योंकि माँ बहुत होशियार स्कॉलर, उस जमाने में जो कंसेप्ट थी स्कॉलर की, वैसी स्कॉलर थी, तो इसलिए उसने साइंस लिया हुआ था और पापा ने आर्ट्स लिया था। तो कॉलेज में भी वो एक ही कॉलेज में थे। तो जब थिएटर करना शुरू किया तब उन्हें लगा नहीं नहीं नहीं, ये सुनंदा ने करना चाहिए हमारे साथ काम, तो इसलिए उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी। और फिर वो थिएटर में मम्मी जो घुस गए, तो फिर साइंस वायंस सब पीछे रह गया, थिएटर ही चलता रहा।

0: लकीली पापा के जो पिताजी थे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे अहमदनगर में, जो आज अहिल्या नगर कहा जाता है जिसे। तो उनका ऐसा कुछ नहीं था कि बाबा तू पहले नौकरी कर, पैसे कमा, फिर तेरी शादी करता हूँ। उन्हें पता चला कि ये सुनंदा और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो इनकी शादी करा देना सबसे अच्छी बात। आई थिंक पापा 23-24 साल के थे और मम्मी 23 साल की थी। उन दोनों में 6 महीने का ही अंतर है उम्र में। तो तब उनकी शादी हुई, 73 में शादी हुई, और 74 में मेरी सबसे बड़ी बहन जो है उसका जन्म हुआ। मम्मी उस वक्त LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वहां पर जॉब करती थी, तो मम्मी ने पापा को ये सहूलियत दे रखी थी कि
1: अपने मन का जियो,
0: हाँ तुम जियो, मैं संभाल लूंगी, मैं कमा रही हूँ, अपने बच्चों को हमें कुछ कम नहीं पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा, दादाजी और दादी और चाचा जी ये सब लोग थे, तो फैमिली में वैसे पैसे की उनका ये कहना नहीं था कि तुम घर में पैसे दो, पर उनका ये कहना था कि तुम खुद के लिए कुछ कमाओ। तो और मम्मी वो कर रही थी, तो इसलिए दादाजी का भी था कि चलो ठीक है, अभी अगर तुम्हारी बीवी कमा रही है तो तुम्हें जो करना है वो तुम करो। तो पहली बेटी हुई 74 में, 76 फरवरी में दूसरी बेटी हुई। तब फिर मम्मी को ऐसे लगने लगा, अरे अभी अपनी 2 बच्चियां हो गई, अभी भी ये कुछ नहीं कमा रहे हैं। तो रीजनल न्यूज़पेपर्स में उस समय एड आती थी, हाँ। तो फिर वो मम्मी ने वो एड देखी, और पापा का ऐसा था, वो पूना मुंबई थिएटर के चक्कर में चक्कर काट रहे थे, अहमदनगर पूना मुंबई इस तरह से उनका चल रहा था। तो उन्होंने मम्मी ने वो एड देखी न्यूज़पेपर में, और मम्मी ने बिना पापा को बताए वहां पे अप्लाई कर दिया।
1: वेरी गुड,
0: हाँ। और फिर जब ऑडिशन थी तब मम्मी ने उन्हें बताया SSC ऑडिशन है, आपको जाना है और करके आना है। वो समय ऐसा था कि कमाने वाली माँ थी और घर पे दिखाना बहुत जरूरी था कि भाई मेरी फैमिली बढ़ रही है, मैं भी कमा रहा हूँ उस तरह से। सो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलो अब तुम कह रही हो तो मैं जाता हूँ और ऑडिशन देता हूँ। और ऑफकोर्स उनकी आवाज ऐसी थी कि सिलेक्ट हो

0: ना ही होना था। तो वो सिलेक्ट हो गए और उन्होंने जॉब करी, 2 महीना उन्होंने जॉब करी वहां पर, और 1.5 महीने बाद उन्होंने मम्मी को खत लिखा कि मैं अगर ये करता रहा तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा जिंदगी में। तो फिर मम्मी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तो तुम छोड़ दो। तो उन्होंने छोड़ दिया, पर उन्होंने वो जॉब इस तरह से करी थी तो आकाशवाणी ने उन्हें काफी हाथ दिया था उस वक्त जब उन्हें वो जरूरत थी पुश की, एक जो साइकोलॉजिकल पुश हमें लगता है मानसिक रूप से कि हमें अभी मुझे कुछ अचीव नहीं कर पा रहा हूं मैं, उस वक्त जो एक अचीवमेंट की फीलिंग है वो आकाशवाणी ने दी हुई है। और मेरे ख्याल से हमें भी, विशेषतः मेरे बारे में मैं कहूंगी कि जब आप ऐसे घर में पैदा होते हो और बड़े होते हो कि जहां पर सुपर अचीवर है आपके आजू बाजू सारे, तब एक होता है कि मुझ में क्या है, शायद मुझ में कुछ नहीं है, ऐसी एक फीलिंग जो घर का सबसे छोटा सदस्य होता है उसमें आ सकती है, आने की आशंका होती है। तब मुझे आकाशवाणी ने हाथ दिया और मुझे ये समझ में आया उस वक्त कि नहीं, मेरे पास मेरी आवाज है और मैं बहुत अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, कंडक्ट कर सकती हूँ। आई थिंक आकाशवाणी हमारे परिवार के लिए वैसा एक जरिया रहा है कि जिन्होंने हमें, जब हमें कॉन्फिडेंस नहीं था या जब हम एकदम लो जिसे फेज कहते हैं वैसे इसमें रहे हैं, उस वक्त हाथ दिया है, जिसे मराठी में हम उभारी कहते हैं, उभारी दी है,
1: उबारा है।
0: हाँ, तो आकाशवाणी से हमारा रिलेशनशिप हमारी फैमिली का इस तरह से।
1: कितनी सुनहरी यादें आपने शेयर की सदाशिव जी के आकाशवाणी से जुड़ने की। यहाँ सुनंदा जी का जिक्र आता है और नाटकों का भी जिक्र आता है कि जहाँ वो उनके रास्ते एक साथ हुए,
0: राइट।
1: कोई पॉइंट ऑफ टाइम था जहाँ ये एहसास हुआ कि उन्हें अब सुनंदा जी के साथ जीवन बिताना है, वो कोई एक मोमेंट था जहाँ ये हुआ?
0: पापा उनके नाम ही की तरह सदाशिव भोला सांब जिसे कहते हैं, वैसी पर्सनालिटी के थे, स्पेशली जब वो कॉलेज में थे तब। तो उनके दिमाग में एक ही पागलपन चढ़ा हुआ था, एक ही भूत सवार था, वो था नाटक, और उन्हें वही करना था। ठीक है, नाटक करते वक्त घंटों तक आप साथ में रिहर्सल्स करते हैं, सब करते हैं, साथ में वक्त बिताते हैं, तो जो दोस्ती है वो दोस्ती से थोड़ी ज्यादा है, इतना उन्हें शायद समझ में आया होगा। पर उसके ऊपर कुछ करे, उसके ऊपर कुछ एक्ट करे, ये उनकी पर्सनालिटी नहीं थी।
1: पहला कदम उनकी पहला तरफ से नहीं आना था।
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मुझे याद है आज भी, मतलब ये हमारे घर में हमारे बहुत ही आर्ग्यूमेंट का विषय हुआ करता था जब पापा थे तब, कि पहले प्रपोज किसने किया। लेकिन जब अभी मम्मी ने किताब लिखी है उसमें उसने क्लियरली लिखा हुआ है कि मम्मी ने ही उन्हें एक चिट्ठी लिख के कहा था कि ऐसा ऐसा मेरी फीलिंग्स है और क्या आपको भी यही लगता है, और उन्हें वो चिट्ठी दी थी उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा था कि देखो अपने दोस्तों के सामने मत खोलना ये चिट्ठी, घर जाके अकेले में खोलना, बिकॉज पापा ऐसे थे वो हमेशा दोस्तों से घिरे रहते थे, तो दोस्तों के सामने खोलेंगे, जोर से पढ़ेंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा, इतना डर मम्मी को लग रहा था। तो इस तरह से तो वो पॉइंट था जब मम्मी, क्योंकि मम्मी के घर पे उनके पिताजी की मौत बहुत जल्दी हो चुकी थी जब वो 10-11 साल की थी, तो उस वजह से उनके घर पे वो और उनकी माँ इतने ही थे, उनकी बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। तो अभी इसके लिए भी लड़का देखो ये करो, जब वो शुरू हुआ उनके घर पे, जब वो ग्रेजुएशन के आसपास थी, तब उन्होंने कहा अभी ये मेरा ये जो पगला आदमी है उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम में जो है वो प्यार है, उसे ये समझाना अभी जरूरी हो गया है। और फिर उन्होंने वो चिट्ठी लिखी थी, तब फिर उनका आगे जाके इस तरह से हुआ कि फिर मम्मी ने ही थोड़ा थोड़ा, बिकॉज उस वक्त मेरे दादाजी जो थे वो बहुत कर्मठ स्वभाव के थे, तो किसी लड़की का घर पे आना, लड़कियों से दोस्ती, ये सब इम्पॉसिबल था उस समय और अहमदनगर जैसे छोटे से शहर में। पर लकीली मम्मी के पिताजी और वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, तो जब मम्मी घर जाने लगी दादी से, फिर पापा की बुआ भी उन्हीं के साथ रहती थी, उनसे इस तरह से जब बातें होना शुरू हुई, तब उन्हें समझ में आया कि कुछ तो मामला है। और फिर उन्होंने वन फाइन डे मम्मी को बुलाया घर पे और कहा कि देखो तुम्हें ये सब दिख रहा होगा कि इतना बड़ा घर है, ये है वो है, पर ये सब मैं धर्मादाय कर दूंगा, बेटों को कुछ नहीं दूंगा मैं। हाँ, तो अगर तुम ये सोचती हो कि इस वजह से है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तब मम्मी का इतना क्लियर था कि उसने कहा ठीक है मैं जॉब कर रही हूँ, मैं चला लूंगी घर, नो प्रॉब्लम। तो बहुत ही ज्यादा क्लियर इन दोनों के थॉट्स थे। और जैसा मैंने कहा कि

0: आपा को ये शब्दों में पेश करना कि जो हमें हुआ है वो प्यार है, ये पॉसिबल नहीं था जो मम्मी कर पाई, लेकिन जिस वक्त वो कमिटमेंट हो गई उस वक्त वो कंप्लीट कमिटमेंट हुई।
1: वाह वाह।
0: तो वो हालांकि वो उन्होंने शब्दों में नहीं कहा होगा, पर वो उनके एंड तक, मतलब ये उन्हें प्यार हुआ जब वो 21 साल के थे, 64 के होने तक वो प्यार बिल्कुल वैसा ही रहा, और ये हम सब लोगों ने देखा हुआ है। और उन दोनों ने वही सीख हमें भी दी है कि अगर कमिटमेंट कर रहे हो तो पूरी तरह से करो, फिर वो अपने काम की तरफ हो या इंसानों की तरफ हो।
1: क्या तो प्यारी बात है। यहाँ एक बहुत क्यूट बात सामने आई है, और वो है एक प्रेम कहानी जो चिट्ठी के जरिए आगे बढ़ती है। हम जिस समय और समाज में हैं वहां ये यकीन करना अब जरा मुश्किल है कि चिट्ठियों के जरिए भी प्यार का इजहार हो सकता है, और वो चिट्ठी बचाकर जीवन भर रखी जा सकती है। मुझे लगता है ये जगह है गाने की, और वो गाना बहुत ही मुफीद है जो चिट्ठी के जरिए प्यार के इजहार की बात करता है। फिल्म है संगम।

0: यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात जो पीछे छूट गई है उसका सिरा पकड़ के आगे बढ़ते हैं। मम्मी की एक किताब है पिताजी के नाम पर, और आपने कहा कि उसमें ये जिक्र आता है कि उन्होंने सबसे पहले इजहार किया। उस किताब का नाम बताइए और वो नाम क्यों रखा गया है, इसकी कहानी बताइए।
1: हाँ, ओके। तो वो किताब अगर आप देखेंगे तो उसका नाम है खुलभर दुधाची कहानी। खुलभर माने छोटी सी कटोरी में जितना दूध बैठता है उसको खुलभर कहते हैं।
0: ओके।
1: हाँ, उतना सा खुलभर दुधाची कहानी। सो उतने से दूध की ये कहानी है।
0: हाँ, सवाल आता है कि ये आखिर क्या है,
1: क्या है? राइट। सो श्रावण महीना जब होता था तो अहमदनगर में, या आज भी छोटे गांव में होता होगा, हर मंगलवार को और शुक्रवार को उपवास होता है, पूजा होती है, कथा कथन होता है। तो उस वक्त जो फोक टेल्स जिसे हम कहते हैं, वैसी कथाएं कही जाती थी। तो उस समय सुनी हुई ये कहानी है। ये कहानी है कि एक छोटा सा गांव है, राज्य है, और वहां पर अकाल पड़ा हुआ है, बारिश हुई ही नहीं है, ठीक है, सूखा पड़ा हुआ है। और वहां पर वो राजा हैरान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, और इसलिए वो पंडितों को बुलाता है और कहता है अब मैं क्या करूं। वो पंडित उसे कहते हैं कि जो ये महादेव का मंदिर है आपके गांव में, तो उसका जो गर्भगृह है उसे पूरी तरह से दूध से आप भर दो, तो शंकर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और फिर आपको बारिश हो जाएगी। तो राजा फरमान निकालते हैं कि हर एक के घर में कल जितना भी दूध होगा, जितना भी जिसके पास होगा, वो सब लाके गर्भगृह में अर्पण कर दे। तो ये सब होता है तो फिर भी वो गर्भगृह भरता ही नहीं है, इतना दूध आता है, लंबी लंबी लाइनों में लोग आके दूध डालते हैं, वहां फिर भी नहीं होता है। और जो सिपाही होते हैं वो घर घर जाकर आपके पास और दूध है, और दूध है, और दूध है, ऐसा करते हैं। तब वो एक घर में जाते हैं, वहां पे एक बुढ़िया होती है। तो वो कहते हैं आप गए थे दूध डालने, उन्होंने नहीं नहीं मैं अभी जा ही रही हूँ। तो उसने एक कटोरी में, छोटी सी कटोरी में दूध लिया हुआ है, और उसने क्या किया है कि उसके घर पे जो उसके बच्चे बच्चिया पोते सब लोग हैं, उनका खाना पीना सब कुछ होने के बाद जितना दूध बचा वो लिया और वो गई और महादेव जी के ऊपर उसने चढ़ा दिया। और जिस क्षण उसने वो चढ़ाया, वो गर्भगृह पूरा दूध से भर गया। तो कहानी का मतलब ये है कि आपके जो कर्तव्य है वो आप पूरा कीजिए, और फिर जो बचा कुचा है वो आप भगवान को दीजिए, भगवान को चलता है।
0: वाह वाह वाह।
1: सो बेसिकली आप अपनी जो पूरी जिंदगी है वो अपने कर्तव्यों के प्रति और अपनी जो जिम्मेदारियां है उनके प्रति आप अर्पण कीजिए, इस तरह की वो कहानी है। और थोड़ी बहुत मम्मी की जो कहानी है, जीवन की कथा अगर हम सोचे तो वो उसी तरह से गई है। वो भी एक गजब की अदाकारा है, बहुत अच्छा गाती है, लिखती है, बट जब उनकी शादी हुई और उन्हें ये समझ में आया कि नहीं, ये जो मेरा सदाशिव है, ये जो मेरा महादेव है, इसे जो करना है, इसमें ज्यादा पोटेंशियल है, इसने ये करना चाहिए, तब उन्होंने अपना खुद का सब पीछे छोड़कर एक बहुत ही कर्मठ घर में जाकर बच्चियों को पाला, और दादा दादी मतलब उनके सास ससुर, बुआ पापा की बुआ थी जो सन्यासिन थी, उनका सब कुछ करते हुए, ये सब कर्तव्य करते करते करते फिर अल्टीमेटली जब उनकी बेटी की शादी हुई आते ये जो 53, फिर उन्होंने अपना लिखाई का काम और ये सब शुरू किया। और अभी ये है कि पिछले 20 सालों में उनकी लगभग 30 किताबें आ चुकी हैं। तो इसलिए वो हमें लगा कि ये जो कहानी है ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट है उस बुक के लिए, क्योंकि उनकी जिंदगी की कहानी उस तरह से रही है। और ऑफ कोर्स भगवान, मतलब उन्होंने पापा को जिस तरह से प्यार दिया, जिस तरह से विश्वास दिया, वैसा ही पापा ने उन्हें रेसिप्रोकेट किया। पापा का भी उन पर ऐसा ही विश्वास था, जो अंधविश्वास हम कह सकते हैं थोड़ा सा था, पर वो था। और उस वजह से आई थिंक जो आज भी हमारा घर फूला फला है और इतना अच्छा है, वो उस विश्वास की वजह से है।
0: बहुत ही

दर घटना है, ये जो किताब के नाम की घटना है और जिस तरह से आपने उसको विस्तार दिया है ये बहुत ही मार्मिक है। अब चूंकि अमूमन जो रवायती इंटरव्यूज होते हैं वो ये कि बचपन से शुरू करेंगे, लेकिन हम कहीं से शुरू हुए हैं तो वो बचपन की बातें हम आगे कहीं जाके करेंगे, क्योंकि बातचीत के अंदर घटनाएं तो आगे निकल कर

0: कहानियां हो तो वो बताएं।
1: राइट सो उनसे जुड़ी तो काफी कहानियां हैं जो हम सुनते सुनते बचपन से आ रहे हैं
0: जी।
1: पर उन्होंने एक जो प्ले उन्होंने किया था वो था बंडू बेबी अणि बुरखा। तो उस वक्त इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स होती थी। ये जो प्ले था इसमें बंडू और बेबी तो पति पत्नी का कैरेक्टर था, ये इन दोनों ने किया था। और उसी नाटक के दौरान आई थिंक दे रियलाइज्ड कि दे आर इन लव विद ईच अदर। ये एक नाटक के बहुत सारे किस्से हैं, मतलब मम्मी क्योंकि जैसे मैंने कहा कि स्कॉलर इसकी थी तो जब भी उनकी एग्जाम आती थी तो वो अवेलेबल नहीं होती थी प्ले के लिए। प्ले तो करना था, अभी कॉम्पिटिशन है तो जाना तो पड़ेगा। तो उस वक्त मम्मी तो नहीं है, मम्मी ने कहा मैं तो नहीं, मेरी एग्जाम है अभी, मैं पढ़ाई करने वाली हूँ, आपको जो करना है करो। तो उन्होंने किसी और को वहां पर कास्ट किया और फिर मम्मी ने कहा अगर ये लड़की कास्टिंग है तो आप नहीं करोगे ये रोल तो इसलिए फिर पापा का रोल भी किसी और ने वहां पर किया।
0: बहुत सही,
1: ठीक है,
0: बहुत ही सही।
1: तो और वो जो था वो उसका शो था संगमनेर नाम के एक छोटे से गांव में, अहमदनगर के पास ही है, वहां पर उसका शो था। और उस समय लाइट चली गई तो माइक नहीं थे तो फिर आवाज ही नहीं आ रही थी। अच्छा मम्मी हालांकि नाटक में नहीं थी पर क्योंकि वो यूथ फेस्टिवल जैसा माहौल था तो और किसी कॉम्पिटिशन में वो थी तो इसलिए वो वहां गई हुई थी। तो फिर वहां पर और वो जो नई लड़की और लड़का था उनके आवाज पहुंच ही नहीं रहे थे ऑडियंस तक। तो फिर इन दोनों ने वो डायलॉग्स पीछे से जोर से वो बोले और उन लोगों ने लिप सिंक किए स्टेज के ऊपर।
0: वाह वाह क्या प्रयोग।
1: इस तरह से वो हुआ। तो ये जो एक किस्सा है ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद कभी भी मम्मी ने पापा से ये नहीं कहा कि मैं नहीं हूँ प्ले के लिए जो भी डेट चाहिए जब भी चाहिए वो अवेलेबल होती थी।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर। एक पूरा दौर था जब सदाशिव जी लगातार नाटक कर रहे थे और भ्रमण कर रहे थे क्योंकि नाटकों के लिए तो अलग अलग शहरों में गांवों में जाना होता है। उस दौर के कोई बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं जिन्होंने उन्हें एक मुकम्मल पहचान दी थी, उनकी बात करते हैं।
1: उसमें मैं सबसे पहले पापा कलाकार तो थे, एक्टर तो थे ही, पर वो निर्देशन में भी बहुत रस रखते थे, वो निर्देशक भी थे, राइट। सो अगर उनके नाटकों की बात कही जाए तो उन्होंने कुछ नाटक ऐसे किए थे जैसे छू मंतर करके एक नाटक था, फिर बखरे का राजा जी ये एक प्ले था, छिन्न करके एक नाटक था, कन्यादान एक नाटक था, फिर हैंड्स अप, ये जो पांच छह नाटक है, काही स्वप्ने विकाई जी ये भी एक था, पर काही स्वप्ने विकाई जी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल था और कंपटीशन वाला प्ले था, बाकी के ये जो सारे जो मैंने नाम लिए ये कमर्शियल नाटक थे। इसके अलावा भी बहुत सारा काम किया हुआ है पर ये नाटक मैं स्पेशल इसलिए समझती हूँ बिकॉज ये हर एक नाटक ने कुछ इंडस्ट्री को भी दिया हुआ है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका अलग अलग जिक्र मैं चाहता हूँ, जैसे छिन्न का बहुत जिक्र मिलता है, हैंड्स अप का जिक्र मिलता है, काही स्वप्ने विकाई जी अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ उसका भी खूब जिक्र मिलता है कि अलग अलग मानदंडों पर इन्होंने कुछ
1: किया है
0: कामयाबी।
1: काही स्वप्ने विकाई जी ये जो प्ले था ये बहुत पहले कुछ जो प्लेस पापा ने किए थे उसमें से था। तो उसमें वो एक रिटायर्ड टीचर का रोल करते थे जो 83 इयर्स ओल्ड होते हैं और उस वक्त पापा की उम्र थी 23-24 ज्यादा। उस समय उन्होंने काफी सारे उस पे INT और ये जो सारी कॉम्पिटिशन्स होती थी उसमें काफी सारे अवार्ड्स जीते थे उस एक रोल के लिए। उन्हें लोग कास्टिंग के लिए बुलाते थे कि आप आओ हमारे यहाँ पे प्ले में और वो हर बार जाते थे तो लोगों को लगता था ये कौन आ गया, वो तो एक बुढ़ा आदमी है जो वो रोल कर रहा है, यू नो उम्र में ज्यादा है, आपने कैसे किया, आप तो नहीं हो सकते। ऐसे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज उस समय पापा की आंखें चली गई बिकॉज लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये वही इंसान है जिसने 83 साल के एक वृद्ध इंसान का रोल किया हुआ है और वो इतना बखूबी निभाया उन्होंने कि लोग ये सोच ही नहीं सकते थे कि एक 24-25 साल का युवक है। तो वो एक प्ले इसलिए बहुत ज्यादा फेमस था क्योंकि पापा की जो एक्टिंग की रेंज थी वो एक प्ले में काफी सारी एक्सपोज हुई थी। इसके अलावा छिन्न जो प्ले है वो विजय तेंदुलकर साहब ने लिखा हुआ था और उसकी खासियत यह है कि वो एक प्ले है जिसमें सबसे पहले और मेरे ख्याल से आखिरी बार वही एक प्ले है जिसमें स्मिता पाटिल जी ने कमर्शियल थिएटर किया था
0: और पापा के निर्देशन में
1: एग्जैक्टली। तो इसलिए वो एक बहुत

0: खास प्ले रहा है और लोगों ने जो सराहा है उस प्ले को, क्योंकि उसका विषय है और जो सब था, एक तो तेंदुलकर साहब की जो लिखाई है वो एक तो पाथ ब्रेकिंग, ग्राउंड ब्रेकिंग होती है, और उसके ऊपर पापा का डायरेक्शन, ये बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट दोनों चीजें हुई थी। उसी की स्टाइल में दूसरा एक नाटक कहा जाए तो वो है कन्यादान। कन्यादान में डॉक्टर श्रीराम लागू, नीना कुलकर्णी, आशालता वाबगावकर, ये बहुत बड़े बड़े नाम थे उस समय, और उनके साथ अगेन पापा ने निर्देशित भी किया था, उन्होंने एक्टिंग भी की थी उसमें। छिन्ना और कन्यादान, इन्होंने पापा को एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर डायरेक्टर के तौर से एस्टेब्लिश किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। और उस समय थिएटर जिस तरह से देखा जाता था, लोग जिस तरह से देखते थे, वैसा मुझे नहीं लगता आज तक वो सुवर्ण काल फिर से आया है।
1: हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब टेलीविजन उस तरह से नहीं आया था और महाराष्ट्र में खास तौर पर थिएटर की सशक्त परंपरा थी और कामयाबी के झंडे गाड़ते थे प्लेज, और उनकी दास्तानें आज तक कही जाती है।
0: करेक्ट करेक्ट। तो ये प्ले था, उसके बाद पापा ने INT के लिए ही एक प्ले किया था, बखरे का राजा जी। तो बखरे का राजा जी ये जो प्ले था, इसमें नीना कुलकर्णी और दिलीप कुलकर्णी जो उनके हस्बैंड थे, वो भी एक बहुत उम्दा कलाकार थे, उन दोनों को लेकर ये प्ले बनाया गया था। पर उस समय वो प्ले चला नहीं, कमर्शियली इट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल, और INT को काफी लॉसेस झेलने पड़े थे, बिकॉज इट वाज अ हिस्टोरिकल सेट, सब वैसे लगा था और ये सब हुआ था। तो उसके बाद पापा ने डिसाइड किया, अब मैं जो करूंगा वो मैं कमर्शियली वायबल करूंगा, पैसे कमाने चाहिए लोगों, मतलब प्रोड्यूसर्स ने, राइट। तो इसलिए उन्होंने दो प्लेज किए उसके बाद डेफिनेटली, जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। एक प्ले तो था छू मंतर, जो उन्होंने डायरेक्ट किया था, और इस प्ले की मजे वाली बात यह है कि उस वक्त लक्ष्मीकांत बेरडे को फर्स्ट टाइम कमर्शियल प्ले में पापा ने कास्ट किया था।
1: गजब।
0: इट वाज हिज लॉन्च। तो और वो प्ले बहुत चला, बिकॉज इट वाज अ आउट एंड आउट कॉमेडी, और बहुत मजा आया लोगों को, और एक लक्ष्मीकांत बेरडे जैसा कलाकार आया, पापा थे, लक्ष्मीकांत बेरडे थे, तो इट वाज पिक्ड अप लाइक हाउ। उसके बाद हैंड्स अप किया था पापा ने, जिसमें वो थे, भक्ति बर्वे थी, ऐसे 5-6 बहुत ही स्ट्रांग आर्टिस्ट उसमें थे, और पापा ने निर्देशित भी किया था वो प्ले, और दैट वाज अ हिस्टोरिकल प्ले। मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि बहुत बारी ये बात आई भी है कि जब गोविंद निहलानी जी ने वो प्ले देखा, अगेन विजय तेंदुलकर जी ने उनसे कहा था कि तुम हैंड्स अप का प्ले देखो, बिकॉज उस समय निहलानी जी अर्धसत्य का कास्टिंग कर रहे थे और पुलिस इंस्पेक्टर का हीरो है, ये तो पता था, बिकॉज तेंदुलकर साहब ने ही वो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि तुम ये प्ले देखो, इसमें ये लड़का है, ये बहुत अच्छा इंस्पेक्टर निभाता है, तो तुम देखो। तो इसलिए गोविंद जी गए, उन्होंने वो देखा प्ले, और उन्होंने पापा को इंस्पेक्टर के रोल में ही थे वो देखा, लेकिन उन्होंने उनकी कास्टिंग रामा शेट्टी के लिए की।
1: वाह।
0: ओके। और फिर उसके बाद तो इट इज, जैसे हम कहते हैं कि हिस्ट्री है, उसके बाद फिर पापा एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कलाकार का नाम उन्हें मिल गया और वो काफी सारी फिल्मों में ही बिजी हो गए। तो थिएटर वो करते रहे, पर बहुत थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा बाद में वो करते रहे।
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए वो हैंड्स अप, ये एक जो प्ले है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड्स अप का ये एक मजेदार किस्सा है, उस वक्त क्या होता था, जैसे आपने कहा कि वो समय ऐसा था जब मराठी में नाटक की परंपरा बहुत बहुत स्ट्रांग थी, तो दिन में दो दो तीन तीन शो लगते थे एक प्ले के। तो और उस वक्त जैसे अब है, मेट्रो पकड़ लिया चले गए, उबर पकड़ ली चले गए, वैसा नहीं था। आर्टिस्ट को खुद ही जुगाड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। पापा के पास उस वक्त एक 2-व्हीलर थी, तो शिवाजी मंदिर में प्ले खत्म हुआ, वहां से उन्हें ठाणा पहुंचना था। और ये मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ये सब इतना अच्छा नहीं था बम्बई में।
1: हाँ जी।
0: तो पापा स्कूटर पे जाते थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कपड़े नहीं बदले और वो वैसे ही निकल गए, और एक भी सिग्नल पर वो नहीं रुके, और हर बार जब उन्हें ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो बिकॉज वो उस कॉस्ट्यूम में थे, उनको लगता था अरे ये तो कोई इंस्पेक्टर है, कुछ अर्जेंट काम होगा, तो सॉरी सॉरी सर करके तो ये कलाकार इस तरह से होते हैं, औलिया जिसे हम कहते हैं, कि वो उन्हें सिर्फ वही दिखता है कि मेरा कर्टन और आधे घंटे में खुलने वाला है, मुझे वहां पहुंचना है बस। और
1: क्या प्यारी बात है। वाह। यहां भी गाने की जगह बन रही है।

0: मुझे लगता है कि ये करते हैं कि मम्मी की पसंद का कोई गाना लगाते हैं यहाँ पर।
1: मम्मी की पसंद का ये जो गाना है, मेरे महबूब में क्या नहीं।
0: वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात क्या बात, सुनते हैं ये गाना।

0: बहुत लंबी एक दिलचस्प बात हुई नाटकों को लेकर, और तेंदुलकर साहब का नाम वहां बार बार आता है। बहुत करीबी रिश्ता सदाशिव जी का तेंदुलकर जी से रहा है, उससे जुड़ी कुछ घटनाएं जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, आपसे सुनना चाहता हूँ।
1: ओके, तेंदुलकर जी एक हम कह सकते हैं विद्यापीठ थे।
0: बिल्कुल,
1: किसी भी घटना की तरफ देखने का उनका जो दृष्टिकोण होता था वो बहुत अलग होता था। रोज की घटनाओं की तरफ भी वो जिस तरह से देखते थे और बात करते थे ये बहुत अलग था। तो उनकी और पापा की जो पहचान थी वो प्ले की वजह से हुई थी, पर सुहास अउचट करके बहुत बड़े आर्टिस्ट है, पेंटर है, उन्होंने उनको मिलाया था। एक ये अहमदनगर से आया हुआ लड़का है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, ये जब तेंदुलकर साहब को समझ में आया तो उन्होंने उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट किया। और सपोर्ट किया मतलब मैं इस तरह से कहती हूँ कि देर वर डेज, ऐसे दिन थे जब दो दो तीन तीन दिन तक पापा उनके घर पर ही रहते थे।
0: गजब।
1: हाँ, और उस वक्त तेंदुलकर साहब जो काम कर रहे थे, इतना बड़ा काम कर रहे थे, तो वो प्रोसेस का एक भाग होना एक युवा के लिए जो अहमदनगर जैसे छोटे से गांव से आया है ये बहुत बड़ी बात थी। तो पापा हमेशा कहते हैं कि मैं तो उनके सामने जाता था तो जैसे ब्लॉटिंग पेपर होता है जो इंक ब्लॉट करता है, वैसे मैं, मराठी में हम उसे टिप कागद कहते हैं, तो वैसे मैं टिप कागद हो जाता था, जो भी मिले वो एब्जॉर्ब करो।
0: वाह वाह,
1: बस उतना ही। तो ये स्थान तेंदुलकर साहब का पापा की जिंदगी में था। दूसरा, जब 82 में मम्मी को बॉम्बे में ट्रांसफर मिली, तब कैसे तैसे करके पापा ने एक किराए का घर

0: लिया था, क्योंकि हम तीनों बच्चिया, मेरी दादी और मम्मी और वो, ऐसे हम सब लोग रहने वाले थे।
1: किस इलाके में?
0: अंधेरी में ही लिया था उन्होंने बिकॉज उस वक्त बांद्रा बहुत महंगा था तो ऐसे उन्होंने अंधेरी में लिया था। तो एक किराए पे छोटा सा घर लिया था, और दो साल बाद वो घर मालक ने कहा कि भाई अभी नहीं, अभी आप छोड़ दो, मुझे ये घर बेचना है। तो रातों रात एक हफ्ते के अंदर बंबई जैसे शहर में एक घर ढूंढ पाना ये बहुत ही डिफिकल्ट है। तो पापा गए तेंदुलकर साहब के पास, बिकॉज जैसे मैंने कहा ही वॉज अ गाइड, ही वॉज अ फ्रेंड, ही वॉज अ फिलोसोफर। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा हुआ है, नो प्रॉब्लम। उन्होंने सीएम साहब के लिए एक लेटर लिखा कि ये ऐसा ऐसा कलाकार है, बहुत अच्छा कलाकार है, और इसे बंबई में रहने के लिए घर नहीं है, तो आप इसकी कुछ मदद कर दीजिए। तेंदुलकर साहब का लिखा हुआ खत लेकर पापा पहुंच गए। उस समय चव्हाण साहब सीएम थे, उन्होंने वो लेटर देखा और एक मिनट के अंदर उन्हें लेटर दिया। उस समय ऐसा था कि 2% कोटा हुआ करता था कलाकारों के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए। तो उसमें से जोगेश्वरी में जो नई एक कॉलोनी बन रही थी वैशाली नगर, वहां पर हमें एक 1 BHK का फ्लैट म्हाड़ा का मिला। तो वो लेटर तेंदुलकर साहब ने दिया और इट वाज अमेजिंग। जैसा पापा हमेशा कहते थे कि आपकी जिंदगी के हर मुकाम पर आपको ऐसे इंसान मिलते हैं जो या तो आपको कुछ नया दिखाते हैं या आपको आगे पुश करते हैं। तो मेरे ख्याल से और पापा से जो बातें होती थी उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि तेंदुलकर साहब ऐसे थे जो पापा के लिए ना ही, मतलब एक नया तरीका दुनिया को देखने का तो था ही जो उन्होंने सिखाया उन्हें, पर उन्होंने उन्हें बहुत बड़ा पुश भी दिया। तो बंबई में घर अपना खुद का लेना हो या उन्हें पहली फिल्म मिलनी हो, पहली फिल्म हालांकि पापा की 22 जून 1897 थी,
1: उसकी बात आगे करेंगे,
0: उसकी आगे करेंगे, पर बड़ी फिल्म जिसमें हालांकि 3.5 सीन थे पर वो पूरी फिल्म पे छा गए थे, रामा शेट्टी छा गया था कैरेक्टर, तो वो फिल्म हो, तो आई थिंक तेंदुलकर साहब का अनन्य साधारण महत्व हमारी पूरी फैमिली की लाइफ में है।
1: बिल्कुल। एक घटना है जिसमें उन्होंने पूछा था तेंदुलकर से कि आपने अर्धसत्य में मुझे रोल क्यों दिलवाया, उसका जिक्र करें।
0: उसका ये तो एक्चुअली तेंदुलकर साहब ही बेस्ट बता पाएंगे पर उन्होंने जब पूछा तब मेरे ख्याल से जो मुझे याद है कि तेंदुलकर साहब ने कहा था कि देखो कलाकार कलाकार होता है, क्योंकि उस समय भी और आज भी हमारी इंडस्ट्री में काफी कैंप्स बने हुए हैं।
1: बिल्कुल।
0: सो पूना से आने वाले लोगों का एक कैंप है, बॉम्बे से लोगों का एक कैंप है, अभी तो बॉलीवुड में भी यूपी से आने वाले लोगों का एक कैंप है, इस तरह से, और वो कालातीत है, वो चलता ही रहता है, हर जगह वो होता है। तो उन्होंने कहा था कि कलाकार जो होता है ना, उसकी जात और उसका ये सिर्फ एक होता है धर्म, वो है कला। और तुम जिस तरह से खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हो वैसे मुझे लगता है तुम ये रोल ठीक से कर पाओगे। हालांकि उस वक्त बात ये हुई थी कि पापा को लग रहा था कि हीरो का रोल उन्हें मिलेगा, जो कि ओमपुरी जी को मिला था, क्योंकि इंस्पेक्टर हैंड्सअप में उन्होंने इंस्पेक्टर किया था, और ये रामा शेट्टी का रोल इन्हें ऑफर किया गया था। तो उन्होंने तेंदुलकर साहब से पूछा था, पर मुझे तो लगा था मैं इंस्पेक्टर का रोल करूंगा। तो उन्होंने कहा था तुम बस जो तुम्हें काम दिया है वो ठीक से करो, तुम विलन हो या हीरो हो दैट डज नॉट मैटर, ये फिल्म के आखिर में तुम याद रहने वाले हो लोगों को, ये भूलना मत। तो वो पापा ने सुनी उनकी बात और ही इज वेयर ही रीच्ड।
1: बिल्कुल बिल्कुल। एक कलाकार की ताकत ये है कि कितना छोटा रोल क्यों ना हो, अपनी मौजूदगी, अपनी आमद को कैसे साबित किया जा सकता है, उसकी मिसाल है अर्धसत्य। हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसे बहुत कम मिसालें मिलती हैं जहां कुछ दृश्यों में अभिनेता ने अपनी वो छाप छोड़ी के इतिहास रच दिया। लेकिन ये उनकी पहली फिल्म नहीं थी,
0: नहीं थी।
1: तो पहली फिल्म जो नचिकेत और जयू वाली थी वो कैसे मिली, उसका जिक्र कीजिए।
0: वो कैसे मिली इसके बारे में मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगी
1: जी।
0: लेकिन पूना में उस वक्त पापा रहते थे ज्यादा करके, और वहां पर वो प्ले वगैरह कर रहे थे, तो उन्होंने कास्टिंग में उन्हें तिलक का रोल दिया गया था, और पापा उस वक्त एकदम पतले दुबले पतले से ऐसे थे, तो जयू और नचिकेत पटवर्धन उनके बहुत अच्छे दोस्त थे उस वक्त। तो आप करोगे

0: कहा हाँ मैं करूंगा, नो प्रॉब्लम, चलो।
1: मतलब पापा कहते थे कि अभी दुकान ही खोलकर बैठे हैं तो जो आएगा वो करना तो पड़ेगा, इस yes. तरह से उन्होंने वो किया था। तो लेकिन उन्होंने वो रोल किया उस वक्त, जयू और नचिकेत पटवर्धन ये अभी तो बहुत ही सीनियर और रिस्पेक्टेड ये है, पर वो भी काफी यंग थे उस वक्त। और फिल्म में मुझे याद है पापा ने बाद में जब राज से स्वराज तक में लोकमान्य तिलक का रोल किया तब उन्होंने बहुत ज्यादा उस पर मेहनत की थी, क्योंकि उन्हें समझ में आया था कि ये जो फिल्म हमने की है जयू नचिकेत के साथ इसमें हालांकि मैं तिलक लग रहा हूँ फीचर्स के तौर पर, लेकिन जो उसका क्रिटिक आया था वो ऐसा आया था कि मैं मराठी में ये वाक्य कहती हूँ, यजतला लोकमान्य टिळक हा रामोशा सारखा दिसतो। रामोशी मतलब जो क्लीनर्स होते हैं ना ऑफिस में या घर में, उन्हें रामोशी कहा जाता था एक जमाने में, अब तो नहीं कहते कोई, तो इस तरह से वो दिखता है। तो इसलिए उसके बाद जब पापा ने राज से स्वराज तक की, जब उन्हें फिर से एक बार तिलक करने का मौका मिला, लोकमान्य तिलक का किरदार निभाने का मौका मिला, तब पापा ने बाकायदा 6-8 महीने, उस समय ये नहीं होता था लेकिन जिम जाकर, बिकॉज लोकमान्य तिलक की जो बॉडी थी ही वॉज वेरी वेल बिल्ट, तो इस तरह से दिखने के लिए पापा ने वो सारे एफर्ट्स लेकर वो काम किया हुआ था। ये फिल्म के बारे में जब भी पापा से बात होती थी तो कहते थे मैं तो थ्रिल था कि मुझे फिल्म में लिया है, बिकॉज उनकी उम्र भी काफी कम थी उस वक्त। और क्या करना चाहिए जब आप कोई इस तरह का किरदार जो इतना बड़ा है, इतनी बड़ी इंसान का किरदार जब आप निभा रहे हो, तब क्या करना चाहिए इसके लिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों चीजें उन्हें उस फिल्म से समझ में आई। आज भी जब वो दूरदर्शन पे वो फिल्म लगती है तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच।
2: बिल्कुल, राज से स्वराज का जो जिक्र आया है, मैंने उनके इंटरव्यूज में देखा और पढ़ा है कि बहुत ही प्रिय रहा है ये रोल उनके लिए, और जब भी कभी उनसे ये पूछा गया कि आपके फेवरेट रोल्स कौन से रहे, तो उन्होंने बड़ी फिल्मों और वो तमाम मशहूर रोल्स को छोड़ के इसका जिक्र किया। वो क्यों है?
0: क्योंकि जैसा मैंने कहा कि राज से स्वराज तक में जो लोकमान्य तिलक की भूमिका निभाना है, ये उनके लिए एक लर्निंग कर्व रहा है। 22 जून 1897 ये फिल्म में जयू नचिकेत पटवर्धन उन्हें डायरेक्ट किया था लोकमान्य तिलक की भूमिका में, और यहाँ पर अमाल अलाना जी ने उन्हें डायरेक्ट किया था राज से स्वराज तक में। अमाल अलाना अगेन एक बहुत बड़ा नाम है, अलकाजी सर जिन्होंने NSD जैसी संस्था को रूप लाया, उनकी बेटी अमाल अलाना, उन्होंने ये दिग्दर्शित किया हुआ था। और उस समय ना पापा और 10-15 साल आगे आ चुके थे करियर में एज एन एक्टर ऑल्सो, ही वॉज अ स्टार एट दैट टाइम जब राज से स्वराज तक हुई थी। तो जब उन्हें फिर से चांस मिला तो उन्होंने सोचा कि अब आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ,
2: अभी कसर रह गई
0: जो
2: है।
0: कसर रह गई है वो पूरी करनी है, अभी मैं रामोशी नहीं दिखूंगा।
2: yes.
0: मुझे याद है उन्होंने वो विग से लेके, बिकॉज उनकी कंटिन्यूटी काफी सारी फिल्म्स की होती थी, अब जैसे होता है कि कलाकार एक समय पे एक ही फिल्म करते हैं तो इसलिए वो पूरी तरह से वैसे ड्रेस्ड अप होते हैं, वैसे नहीं हुआ करता था उस वक्त। 2 दिन इस फिल्म का शूटिंग हुआ, फिर 2 दिन उस फिल्म का हुआ, इस तरह से चलता था। तो किसी भी रोल के लिए पूरी तरह से बाल निकालना या ये पॉसिबल नहीं था। पर मुझे याद है कि जब उन्हें ब्रेक था एक महीने का, तब पापा ने जो कोर्ट सीन्स थे स्पेशली उसके लिए ये निकाले थे, बिकॉज अमाल जी ने उन्हें कहा था कि देखो कोर्ट सीन में जब लाइटिंग होती है तो विग बहुत बुरा दिखता है। एग्जैक्टली तो इसलिए उन्होंने उस समय बाल निकालकर, और बाकी की फिल्मों में अगर आप देखोगे उस समय में जो शूटिंग हुए थे उसमें पापा ने विग्स पहने हुए है।
2: क्योंकि कोई रास्ता नहीं था।
0: एग्जैक्टली, पर उस समय कलाकार ऐसा नहीं करते थे, वो मैं बताना चाहती हूं। तो ही वॉज वेरी वेरी इन्वॉल्व्ड इन द स्क्रिप्ट, और उस समय तक पापा का जो रीडिंग था, पापा ही वॉज अ वोरेशियस रीडर, मतलब रोज वो 2-3 घंटा तो पढ़ना तो बनता ही है, किताबें पढ़ना उनका एक जरिया था। तो तब तक उन्होंने जो इतिहास के बारे में पढ़ा था, आई थिंक उसकी वजह से भी उन्हें वो करते वक्त, वो एक्टिंग करते वक्त बहुत मजा आया था, इसीलिए शायद वो उनका फेवरेट ये है कि मैं अभी प्रूव करूंगा। और वैसा लोकमान्य तिलक बाद में, हालांकि बहुत लोगों ने कोशिश की, पर जैसा राज से स्वराज तक में है वैसा लोकमान्य तिलक आज तक हो नहीं पाया है, वैसा लिखा भी नहीं गया है उस तरह से। तो आई थिंक इसलिए वो उनका बहुत फेवरेट कैरेक्टर रहा है।
2: दिलचस्प बात यह है कि इस सीरीज को आज भी लोग खोज खोज कर देखते

0: हाँ? और दूरदर्शन के आर्काइव्स पर ये अभी भी देखा जा सकता है, खोज कर अगर आप देखें हाँ? तो वेव्स पर शायद ये अभी भी उपलब्ध है।
1: तो वेव्स पर ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी है जो श्याम बाबू ने डायरेक्ट की थी।
0: उसका जिक्र करने से पहले यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बताइए कि कौन सा गाना यहाँ आना चाहिए।
1: यहाँ पर तो मुझे ऐसे लगता है कि एक गाना है जो बिल्कुल पापा की जो सोच थी उनके समाज के प्रति, उनके देश के प्रति, वो बहुत ही सुंदर तरीके से जिस गाने में आई है वो था राजी फिल्म का, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू।
0: क्या बात है, मुजा साहब के बोल।
1: ऑफ कोर्स
0: सुनते हैं ये गाना।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। बातचीत की श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: फीवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।
1: श्रोताओं निजी सुनिए, कार्यक्रम विवरण में हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी और उनके प्रसारण समय के बारे में। अब से कुछ देर बाद 11:05 पर आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। दोपहर 12:00 हम आपको सुनवाएंगे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 12:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम होगा माटी के स्वर। आज के कलाकार हैं गणपत लाल डांगी और उनके साथी। 1:05 पर घर आंगन कार्यक्रम होगा। चर्चा होगी बेल के फल का सेवन करें पेट की समस्याओं को दूर। एक और जानकारी होगी आंवला जूस या मुरब्बा किसका सेवन करना रहता है फायदेमंद। कद्दू के बीज भारतीय सुपर फूड के बेहतरीन स्रोत। ये तमाम जानकारियां आप सुन पाएंगे कार्यक्रम घर आंगन में, साथ ही लोक गीत संगीत का भी आप लुत्फ उठा पाएंगे। श्रोताओं आज है सोमवार और दिन में 2:30 हम आपको सुनवाएंगे ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम मेलबॉक्स। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए श्रोता हमें आज दिन में 1:00 तक अपने ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है manbhavanchoru@gmail.com manbhavanchoru@gmail.com। आपको अपने ईमेल में अपना नाम, अपने गांव और शहर का नाम, अपने पसंद का गीत और उस गीत की फिल्म का नाम, ये तमाम जानकारियां लिख के भेजनी हैं। और आपसे आग्रह है कि आप सिर्फ एक बार में एक ही ईमेल हमें भेजें।

हमारी सायंकालीन सभा प्रारंभ होगी शाम 5 बजे युववाणी कार्यक्रम के साथ। आज की युववाणी में चर्चा का विषय मिला शेर भवानी कश्मीर। चर्चा होगी ना कहने की कला और आत्मसम्मान। एक और जानकारी होगी क्या प्रेरणा सिर्फ बड़े लोगों से मिलती है। पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, इन तमाम बिंदुओं पर युवा साथी आज इस कार्यक्रम में चर्चा सुन पाएंगे। शाम 6:10 पर आपको सुनवाएंगे फिल्मी देशभक्ति गीत। जिले की चिट्ठी का प्रसारण होगा आकाशवाणी जयपुर से शाम 6:40 पर। संध्या 7 बजे हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम खेती और गृहस्थी। आज की चर्चा इस सप्ताह के प्रमुख कृषि कार्यों पर, जैविक कृषि तकनीक इस विषय पर भी बातचीत होगी। साथ ही दुधारू पशुओं की उचित देखभाल को लेकर भी किसान भाई बातचीत करेंगे। आपको मीठे मीठे लोकगीत और लोक भजन भी इस कार्यक्रम के दौरान सुनवाए जाएंगे। रात 8 बजे श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। 9:15 पर आपको सुनवाएंगे राजस्थानी लोक संगीत।

श्रोताओं, आज रात 9:30 पर हम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित करेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। 10 बजे खेल जगत कार्यक्रम आकाशवाणी जयपुर से होगा और हमारे केंद्र से आप सुन पाएंगे सुगम संगीत रात 10:30 पर। कार्यक्रम विवरण के दौरान एक और जानकारी आपको फिर से अपडेट कर देते हैं। आज दिन में 2:30 श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम मेल बॉक्स और इसके लिए ईमेल भेजने का समय है आज दिन में 11 से 1 तक। मेल एड्रेस हम आपको फिर से बता देते हैं, manbhavanchuru@gmail.com। उम्मीद है श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आपकी ज्यादा से ज्यादा भागीदारी रहेगी। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। कारवां फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रही हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में।

श्रोता भी सुन रही थी किशोर कुमार की आवाज़, फिल्म का नाम बुड्ढा मिल गया। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम चित्रपट संगीत आकाशवाणी के चूरू केंद्र से कुंज बिहारी के साथ। बॉबी फिल्म का ये गीत सुनिए मन्ना डे, शैलेंद्र सिंह और साथियों की आवाज़ों में।

0: उस्ताद राशिद खान की आवाज़ में श्रोता सुन रही थी जब वी मेट फिल्म का गाना।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
2: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
3: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

मोहम्मद रफी की आवाज को आप सुन रही थी फिल्म हमसाया में। आप सुन रही हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

जब प्यार किसी से होता है, इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। चित्रपट संगीत का अगला गीत आपके रेडियो सेट पर अनुराधा पोडवाल और सुरेश वाडेकर की आवाज़ है। फिल्म का नाम प्रेम गीत।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

फिर तेरी कहानी याद आई। इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे साधना सरगम की आवाज़ में। श्रोता सुन रही हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

मोहम्मद अजीज और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे चरणों की सौगंध फिल्म का गाना। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं हमेशा की तरह आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मार्कंडेय जी आपके सुंदर विचार के लिए। सच है श्रोताओं, प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा तरीका है सकारात्मक भाव को बनाए रखना। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा जी का। दूसरा संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान और जिज्ञासा के साथ साथ विराट तामुरिया, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन का। अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले कुछ और श्रोताओं के नाम। तो अगला संदेश हमें मिला है ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हमें मिला है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू,

और शुभम साहू के साथ साथ सेजल साहू जी का। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो सुनिए हमारा पहला प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है, लोहे की सुई पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसके विपरीत लोहे का जहाज बहुत बड़ा और अंदर से खोखला होता है जिससे उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो अपने भार से अधिक पानी को हटाकर तैरता रहता है। हमारा अगला सवाल था कि लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? इसका उत्तर है, लोकटक झील में द्वीप मिट्टी घास और कई ऑर्गेनिक पदार्थों से बने हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न था, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का नाम है राक्षस ताल। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? तो श्रोताओं इसका उत्तर है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से चीन, साइबेरिया, रूस और मंगोलिया से आते हैं। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा अंतिम प्रश्न था, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? तो इसका उत्तर है, डल का अर्थ होता है जलाशय या झील। तो श्रोताओं ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमें प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप ताजा जानकारी के लिए CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, राग सिंदूरा। इस कार्यक्रम में राग सिंदूरा की स्वरमालिका, आरोह अवरोह, थाट और गायन समय के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रोताओं, संगीत विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ ये कार्यक्रम सामान्य श्रोता वर्ग के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम राग सिंदूरा।

राग सिंदूरा। राग सिंदूरा की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसे राग सैंधवी भी कहा जाता है। इसमें कोमल गंधार यानी कोमल ग और कोमल निषाद यानी कोमल नी के अलावा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में गंधार और निषाद अर्थात ग और नी ये दोनों वर्जित स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर षडज यानी स है, संवादी स्वर पंचम यानी प है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग सिंदूरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

थे राग सिंदूरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग सिंदूरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, कल कल नदिया बहती जाती। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग श्रृंखला की एक कड़ी है, जिसके द्वारा बताया गया है कि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच ही हमें सीमित कर देती है और इसी कारण हम पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है। सोचिए, जरा बताइए तो।
1: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।

0: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई। हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई। वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहाँ के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गाँव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही। लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
0: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
1: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने

देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक

0: सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
0: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
1: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीमित मत रहिए, और अब इसी के साथ अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, इसका प्रसारण आकाशवाणी के चूरू केंद्र से किया गया। जब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर।

马拉多道牌坊。

ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

गणपतलाल डांगी और उनके साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे ये लोकगीत। कार्यक्रम माटी के स्पर अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। दिन का 1 बजने वाला है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। जोधपुर शहर के सरकारी पावटा जिला अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद तबीयत बिगड़ने वाली 8 प्रसूताओं में से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जयपुर में पत्रकारों को बताया कि इनमें से 6 प्रसूताओं की स्थिति सामान्य है, वहीं एक को एम्स में भर्ती कराया गया है।
1: पावटा के अंदर 6 पेशेंट्स बिल्कुल नॉर्मल है, उनका यूरिन वगैरह ऑल पैरामीटर्स आर ओके। एक जो एम्स में रेफर कर रहे हैं वो हाईली डायबिटिक है और एक प्रसूता जो एमडीएम में है उसके पीलिया हुआ है, उसको भी जो है हम परमिशन ले रहे हैं कि हम चांस क्यों ले, क्योंकि एम्स की फैसिलिटीज जो है वो एक अलग लेवल की फैसिलिटीज होती है।
0: ये मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने संबंधित ऑपरेशन थिएटर को सीज कर दिया है। संक्रमण के कारणों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन थिएटर में उपयोग किए गए उपकरणों, दवाओं और अन्य व्यवस्थाओं की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अपार सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन को पूरी तरह शांत रखने का साधन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन को शांत करना और श्वास प्रवाह को नियमित करना इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की तीव्र गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रेंट क्रूड की कीमत प्रति बैरल में 2% से अधिक की गिरावट के साथ लगभग $89 पर आ गई। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में जैसलमेर से गिरफ्तार मुश्ताक अली को आज जयपुर की एक अदालत ने 3 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया है। 5 दिन की रिमांड पूरी होने पर आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया था। पुलिस ने कॉल डिटेल और बैंक खातों की विस्तृत जांच के लिए अदालत से रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। पुलिस के अनुसार मुश्ताक पिछले 2 साल से पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था और खुफिया जानकारी पाकिस्तानी एजेंटों के साथ साझा करता था। प्रदेश में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष यातायात अभियान के तहत 1,37,000 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की गई है। 4 से 20 जून तक चले इस अभियान में सबसे ज्यादा शिकंजा अवैध काली फिल्म वाले वाहनों पर कसा गया। इसके तहत 51,000 से अधिक वाहनों में काली फिल्म हटवाई गई। साथ ही नियम विरुद्ध नंबर प्लेट, अनाधिकृत चिन्ह, लाल बत्ती, नीली बत्ती, प्रेशर हॉर्न के मामलों में भी सख्त कार्रवाई की गई। यातायात महानिदेशक अनिल पालीवाल ने बताया कि

0: इस अभियान का मुख्य उद्देश्य चालान काटना नहीं बल्कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है। जिलेवार कार्रवाई में जयपुर पश्चिम सबसे अव्वल रहा। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच आम जन को पेयजल संकट से राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार के विशेष अभियानों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा चलाए गए 9 अभियानों के तहत 24,000 से अधिक पेयजल समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया है। 5 अप्रैल से 20 जून तक चले इन अभियानों में 5,000 से अधिक खराब हैंडपंपों की मरम्मत, पाइप लीकेज दुरुस्त करने और बाधित जलापूर्ति बहाल करने सहित लाखों लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई गई है। पिछले सप्ताह इस अभियान के दौरान एक दिन में 2,385 पेयजल समस्याओं का निस्तारण किया गया। प्रदेश में मौसम के मिजाज में बदलाव का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं कहीं मेघ गर्जन के झांकेदार हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। सबसे अधिक 26 मिलीमीटर बारिश झुंझुनू और सीकर के रामगढ़ में दर्ज की गई। वहीं सर्वाधिक अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस तापमान श्रीगंगानगर में रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान जोधपुर में 30.7 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा अलवर, पिलानी और सीकर में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 17 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये चुरू केंद्र है। डीजे प्रस्तुत है कार्यक्रम घर आंगन।

कार्यक्रम है घर आंगन कार्यक्रम लेर हाजिर हूँ मैं भावना। तो आपना कार्यक्रम में अपनी बहना रो करा मोकलो मोकलो स्वागत और कराबा सब छू राम राम। सुनता रियो बनता रियो आज री खास कार्यक्रम के अंदर में थारे लिए बहुत सारी जी की जानकारियां हैं बे लेर आए हाँ। आज की जी की जानकारी है बा है खान पान पर। अरे वाह कठे हो सारा आलस छोड़ो और तैयार हो जाओ सुनो अपनी माटी री मीठी बोली में ओ कार्यक्रम पधारो सा। आज आपा बात कर श्या अपने जो राजस्थानी लोक संगीत है वह सुना श्या भी के साथ साथ बात कर श्या अपने खान पान री और खान पान में जिकर में फलां की बात कर श्या और बेल में लगन आ रही जिकी सब्जी है बाकी बात कर श्या साथ ही साथ बात कर श्या जो फल रा बीज हो वह अपने सेहत के लिए कितना फायदेमंद हो बांको सेवन किया करनो चाहिए के टाइम पर करनो चाहिए और कितनी मात्रा में करनो चाहिए वही आज के कार्यक्रम में भे था सबने इसकी जानकारी दे श्या। तो कार्यक्रम की शुरुआत करा एक मिठे से लोक गीत रे साथ।

कार्यक्रम में फिर सु था सबको स्वागत है। भेणो संतुलित थाली, स्वस्थ भाग्य, स्वस्थ भोजन करो, समृद्ध जीवन जियो, स्वस्थ भोजन खुश मन। यानी कि आपनो जो को स्वास्थ्य है वो सबसे महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य से बड़ो कोई भी धन लाभ को नहीं। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए आपने आहार पर एक पूरी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। अपना जो खान पान है भी को ध्यान रखना पड़ेगा। देखो प्रकृति है हर तरीके से, इस तरीके से हर चीज ने बनाई है कि वह आपने लिए हर ऋतु के अंदर भी हिसाब से ही सब्जियां और फलों को जो एक तरीको है वो प्रकृति में अपन देखने मिला है। और हर ऋतु की अलग सब्जी हुए है। आपने जिया जिया ऋतुआ बदला है, बिया बिया अपनो जो शरीर है वो भी बदला है। तो भी जब ऋतु के बदलने से जो शरीर की जो एक तरीका एक खाना को पहनने को रहने को जो को तरीको है वो बदल जावे, तो ये बदलाव के साथ ही ऋतुओं के साथ ही खान पान भी बदल जावे है। तो बहनों जो या एक प्रकृति की धरोहर है कि गर्मी के अनुसार गर्मियां की सब्जियां अपन मिले है और सर्दी के अनुसार सर्दी की सब्जियां अपन मिले है, वर्षा ऋतु के अनुसार अपन वह सब्जियां मिले है। तो देखो गर्मियों में जो कि जकी सब्जी आवे बम आप देखा कि मिनरल यानी कि पानी की मात्रा खूब सारी हुए हरी सब्जियों के अंदर, और अपने शरीर में भी टाइम पानी की कमी हुए तो वह सब्जियां वह फल है वह अपने शरीर में भी पानी की कमी ने पूर्ति करे। यानी कि जो डिहाइड्रेशन है भी की पूर्ति हुए, पानी की पूर्ति है वह अपने शरीर में हुआ है। तो आज आप बात करा आंवला की। आंवला जूस और मुरबो दोनों को ही सेवन अगर आप करा तो अपने शरीर ने बहुत ज्यादा फायदों मिला है। तो इसलिए अपन देखो जो आंवला जूस है वो आंवला जूस को जो प्रयोग है वो कहीं करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए वो सब आप आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जान सा। जो आंवला को जूस है मुरबो है दोनों ही अपनी सेहत के लिए अच्छा हुआ है, और एक मई मौजूद जगह विटामिन और जो एंटीऑक्सीडेंट हो वह शरीर की रोग क्षमता ने बढ़ावे, और जो अपना बाल त्वचा और बंक लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक हुआ और फायदेमंद हुआ है। तो अपन जो आंवला है वो आंवला को अपा जूस भी ले सका बना के भी, साथ साथ भी को मुरबो भी ले सका, सब्जी वगैरह बना के भी आपा खा सका। तो इन कोई भी तरीके से आपा प्रयोग कर सका। आंवलों को जो को जूस है या मुरबो है वो सेहत के लिए अमृत हुआ है। विटामिन सी और गुणा की खान आंवलों है वो इम्यूनिटी ने बढ़ावे, साथ ही अपना बाल मजबूत करे, पाचन शक्ति ने सुधारे, और आंखें की जिकी रोशनी है बिना तेज करण में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद हुआ है। आंवला में जो 17 से 20 गुना ज्यादा विटामिन सी हुआ है को नो शरीर ने बीमारियों से बचार बना ताकत देवे। भी के साथ साथ आंवलो खून न साफ करे और कब्ज और गैस जिसी समस्या है ऐसी समस्या है बिना भी मिटावे है। भी के साथ साथ जूस पीवन से पाचन तंत्र सही रहे और वजन भी कम करण में मदद मिले है। एक साथ साथ आंवलो खानो या जूस पीने से बाल मजबूत हुए और अपनी जिकी त्वचा है भी में भी बहुत ज्यादा फायदो मिले है। शरीर ने ताकत और ऊर्जा देवे, तो मुरबो मीठो होने से शरीर ने तुरंत ताकत देवे और थकान ने दूर करे। मुरबे में आयरन

0: भी भरपूर मात्रा में आवे, जिसकी वजह से आपने जो खून की कमी हो जावे है भी मैं इन्हें पूर्ति करे। एक साथ साथ इनमें मिठास होने के कारण आयरन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होवे, जो हीमोग्लोबिन ने बढ़ावे, यानी कि अपना खून की जिकी कमी है भी ने भी पूर्ति करे है। या आंवला ने आपा सुखा के भी को पाउडर भी 2 चम्मच सुबह ले सका हाँ, वो भी बहुत फायदे करे है। और आपने जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी सही, और भी साथ साथ खून ने साफ करे, और जो पेट की जिकी समस्या है वह समस्या ने दूर करे। तो आपा जो यो आंवला है यो आसानी से मिल जावे, तो इको जूस या मुरब्बो को सेवन है वो आपने जरूर करना चाहिए, ताकि अपने शरीर ने एक से फायदो मिले।
1: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

अब बात करा आपा समय की, के समय आपने लिए कितो अनमोल हुए, कितो विशेष हुए, और बिने अपन समय ने के तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। समय जीवन को सबसे अनमोल और सीमित संसाधन है, जो कदी लौट कर वापस को नहीं आवे। तो इको सही उपयोग ही सफलता, अनुशासन और व्यक्तिगत विकास की कुंजी है। यानी आपा अगर समय को सदुपयोग करा तो ही आपन सफलता प्राप्त हो सके है, आपा अनुशासन में रह सका हाँ, और अपना जो व्यक्तित्व है, अपनी पर्सनैलिटी है, वह अच्छी बन सके है। और जो समय लौट गयो वो समय कद ही वापस को नहीं आवे। तो आपने पुरानी बाता न छोड़ के आगे जो भी कुछ हो रहे है भी में अपने समय को है वो सदुपयोग करना चाहिए। धन है अगर चलो जा तो वापस आ जावे, अन्य जगह संसाधन है आपा नहीं खरीद पा रहे, सुविधा नहीं खरीद पा रहे तो भी आपा फिर से प्राप्त कर सका हाँ। लेकिन अगर एक पल भी बीत गयो तो भी वो पल भी वापस लौट के को नहीं आवे। इसलिए हर क्षण ने हर समय विवेक पूर्ण उपयोग करके, यानी आपकी बुद्धि को और विवेक को पूरी तरीके से इस्तेमाल करके हर समय ने हर पल ना आप

आवश्यक रूप से उपयोग करा। साथ ही साथ जो सफलता को आधार है वो भी समय है। जीवन में चाहे विद्यार्थी हो चाहे कामकाजी पेशेवर हो, सफलता हमेशा समय का सही प्रबंध सही तरीके से उपयोग पर ही निर्भर करे।

जो दिन को जो समय है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जावे, और अगर वो आपको एक टाइम को पंक्चुअल हुए, समय को जो अगर पाबंद हुए, तो वो भी को हर काम है वो सही तरीके से सही समय पर हो पावे है, और वो ही भी जीवन में अनुशासित बनावे है। यह टाइम आपा ने सिखावे है कि टाल मटोल से बचा और हर कार्य ने भी की तय सीमा पर ही पूर्ण करा, जद ही आपा ने सफलता है वा मिलेगी, आपा एक उच्च शिखर पर पहुंच पावांगा। समय धन से भी अधिक कीमती हुए, धन कमाने का अवसर तो बार बार मिल सके, लेकिन समय की बर्बादी व्यक्ति ने भविष्य में केवल पछताना के अलावा कुछ ही कुन दे पावे। जीवन में संतुष्टि और प्रगति के लिए समय की मूल्य की पहचान करनो और वर्तमान क्षण को सदुपयोग करनो ही बेहद जरूरी है। समय को सम्मान करा ताकि समय भी आपको आप सबको सम्मान करे, आपनों सबको सम्मान करे, क्योंकि जो समय की कदर कौन कर पावे, समय बिकी भी कदर कौन कर पावे। तो जब आपा एक बार तो इस समय ने खोया, लेकिन आगे जाके आपा पछतावा कि काश भी समय में वो काम है आपा कर लेता, तो आज आपा भी सफलता की सीढ़ी चढ़ पाता। लेकिन पछताने से पहले आपा समय को सदुपयोग करा, अनुशासन में रहवा, अपने व्यक्तित्व तो अपनी छवि ने अच्छी बनावा, ताकि आप एक अच्छा आपा अच्छा इंसान बन सका, अच्छा नागरिक बन सका, और अपने देश की प्रगति में अपनो सहयोग है वो प्रदान कर सका।

0: अब फिर सु आपा बात करा खान पान की। आयुर्वेद में बेल ने पेट रे रोग रे खातिर अमृत मान्यो जावे है। कब सु राहत मिले बसरते ई रो उपयोग लगातार करियो जानो चाहिए, क्योंकि बेल है बिक अंदर फाइबर होवे और बिक कारण बा आंत ने साफ करण में मदद करे है। बेल में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाए जावे जो पेट रे संक्रमण दस्त और पेट री एंठन शांत करण रो रामबाण इलाज है। ईरो सेवन करण से में के अंदर अगर पेट में सूजन हुए बा कम हो जावे, बिक साथ साथ गैस कोनी बने और पाचन क्रिया ने अब मजबूत बनावे है। बेल के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट गुण हुए है वह अल्सर ने भी ठीक करण में सहायक हुए है। और गर्मिया में आपा देखा है कि जो बेल है वह आसानी से अपन उपलब्ध हो जावे है और भी कुछ को जूस है वो बनार पीने से बहुत ज्यादा फायदा हुआ, खासकर पेट का जिका रोग है वह इससे दूर हो जावे। बेल न सेवन करण री विधि, बेल रो जो को शरबत है वो अंदर जो गुद्दो है भी गुद्दन निकाल पानी में अच्छे सु मसल लेनो चाहिए, फिर बीज निकाल छान लेनो चाहिए और स्वाद के लिए थोड़ो हल्को कालो नमक मिला लेनो चाहिए। गर्मिया में इरो नियमित सेवन बहुत ज्यादा फायदेमंद हो है। और साथ ही साथ इन सुखार इको पाउडर भी बनाया जा सके या फिर पाउडर बनेड़ो भी बाजार में मिल जावे है, तो बिन सुबह गुनगुने पानी के साथ खाली पेट 3 से 6 ग्राम सेवन करना चाहिए। और खास बात यह है कि इको जो सेवन है वो सीमित मात्रा में ही करना चाहिए, क्योंकि कई बार ज्यादा आप इको उपयोग कर लेवा तो यह अपने पेट की जिकी कब्ज की समस्या है बिन ज्यादा बढ़ा देवे, यानी कि ज्यादा अति अगर की भी चीज की हुए तो बा नुकसानदायक हुए। इसलिए इन्हें तरीके से और समय पर सुबह जो खाली पेट है भी समय में ही इको उपयोग करना चाहिए, ताकि अपना जिका पेट का रोग है वामा अपने फायदो मिले।
1: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

अब आपा बात करा कद्दू के बीजा की। भारतीय सुपर फूड का बेहतरीन स्रोत हुआ कद्दू का बीज। मैणो आपा कद्दू की सब्जी तो बहुत खाई है और कद्दू की जी की सब्जी है वह पोषक तत्व सु भरेड़ी हुए है, यानी पोषक तत्व रो खजानो हुए है। आ वजन घटान, आंखियारी रोशनी तेज करण, पाचन तंत्र में सुधार करनो और अपने शरीर री रोग प्रतिरोधक क्षमता ने मजबूत करण रो काम करे है। बिया ही कद्दू राज का बीज हुए, बाकी तो बात ही के है। और आरो तो कहनो ही के ए दिखण रमाई जितना छोटा हुआ है आरो फायदो भी तो ही ज्यादा हुए है। आरमाई प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट जैसा पोषक तत्व सु भर

भरपूर एक अंदर हुआ है, वजन कम करण सु लेर नींद हार्मोन संतुलन त्वचा बाल और पाचन तंत्र और का मायने एज का बीज है, हर तरीके सु काम कर है और आपने सेहत के लिए बहुत ज्यादा बेहतर भी हुआ है। अब बात करा आंको के फायदो वे किया खायो जावे है, कितनी मात्रा में खायो जावे है, इकी बात कर सा। कद्दू के बीज ने भून कर खायो जा सके है, भिगो कर भी उपयोग में लियो जा सके, साथ ही साथ पाउडर या तेल के रूप में भी इन्हें खायो जा सके है। अरमाई प्रोटीन मसल री रिकवरी बाल त्वचा और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज्यादा ये फायदेमंद हुआ है। कैलोरी मध्यम स्तर री हुआ है और पर एनर्जी बहुत ज्यादा देवे, यानी कम मात्रा पोषक तत्व ज्यादा हुआ है। मैग्नीशियम जो को है वो तनाव नींद मांसपेशियां हार्ट का खातर बेहद जरूरी हुआ है। कद्दूरा बीज आंको शानदार एक प्राकृतिक स्रोत है जिसको आपा उपयोग में ले सका और इको उपयोग करके आपा कई सारी जी की बीमारियां से दूर हो सका हाँ। और जो कद्दू का बीज है वह अपने हार्ट के लिए यानी कि दिल के लिए बहुत अच्छा माना जावे है। जो अन्न को जो उपयोग करे जावे है तो विषय जिका हेल्दी फैट्स खराब कोलेस्ट्रॉल ने कम करने रो काम करे है। मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर ने नियंत्रित करे है और आंख के अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जो आपने जिकी आंत की सूजन है या हृदय की जिकी सूजन है भी न कम करे है। तो ये सब मिलकर अपना हृदय रोग ने बचावे है। बिक साथ साथ कद्दू का जिका बीज है वह अपना शरीर ने यानी कि जो अपना मूड है भी ने बूस्टर करे है और नींद और हार्मोन जिका हुआ है मेला जो अन्न बनाने रो काम करे है। अगर आपा ने नींद नहीं आवे तो रात में एक चम्मच कद्दू का बीज लेनो बहुत ज्यादा फायदेमंद हो है। साथ ही जो कद्दू का बीज है वह फाइबर से भरपूर हुआ है तो कब्ज कम करे है, पेट साफ करे है, गैस और ब्लोटिंग कम करे है और अन्न भिगो के आपा खा सका हाँ और आसानी से ये पच भी जावे। कद्दू का बीज है वह त्वचा में गलो लेवे क्योंकि बांका अंदर एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स से लड़ने की जिकी क्षमता हुआ है। तो यह त्वचा ने निखारने के साथ साथ झुर्रियां और एजिंग का जिका लक्षण है बाने भी कम करे है। साथ ही साथ एक अंदर जो बीज के अंदर जिंक जो हुआ है और प्रोटीन जो हुआ है बाला ने झड़ने सो दूर करे और बाल है जिका अपना मजबूत बनावे। तो आपको नियमित सेवन है वो करनो बहुत ज्यादा फायदेमंद हो है। बाला बाला को जड़नो कम करे, बाल घना करे और आपने की यानी कि बाला की जो जड़ हुआ है बिन मजबूत करे है। कद्दू का जिका बीज है मैं महिलाओं के लिए बेहद उपयोगी हुआ है क्योंकि ये हार्मोन से संतुलित करे है तो आपने जरूर खाना चाहिए उपयोग में लाना चाहिए। और एक साथ साथ जो आपनों प्रोसेस स्वास्थ्य है बिना सुधार है और यूरिन संबंधी समस्या है बिना भी कम करे है और अपना जो को शरीर है भी को संतुलन बनाएड़ो रखा है। तो जो का कद्दू का बीज है वह आसानी से आपन उपलब्ध भी हो जावे और बांको आपा उपयोग भी कर सका हाँ। सुबह ऊर्जा और पाचन ने बेहतर बनाने के लिए आपने जरूर जगह कद्दू का बीज को इस्तेमाल करना चाहिए। नींद में सुधार के लिए और बहुत सारा जगह फायदा है वह कद्दू के बीज से मिले। तो कद्दू का बीजा को उपयोग आपा करा, ये भारतीय सुपर फूड है जो को अपने शरीर ने अपने मूड ने अपने बाला ने सब चीजा ने पोषण देवे और स्वास्थ्य ने बेहतर बनाने में काम करे।

कार्यक्रम में फिर से बहनों का स्वागत करा। अब बात करा बहनों, आपने बरसात के मौसम में जो जो बारिश हुए भी बारिश ने संचय करके आप अभी को के फायदा उठा सका। हाँ देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि जो बारिश हुए तो भी पानी को जो आप इकट्ठो कर लेवा और

तो पेड़ पौधा जगह लगा वहां बाप, पेड़ पौधा ने वो बहुत ज्यादा फायदो देवे। तो सबसे पहली बात तो है कि अपना जगह छत पर जो बनाएड़ा हुआ है पानी ने इकट्ठा करने का, और नीचे जो टांका बनाएड़ा हुआ है बा टांका के अंदर पानी को इकट्ठो करने को काम आपा जरूर करा, ताकि अपना लगाएड़ा जगह बगीचो या छोटा जगह पौधा है बा पौधा में वो पानी है, जब बारिश कम हुआ है तो भी पानी को आपा इस्तेमाल कर सका, दिख साथ साथ बगीचा या पौधा की सिंचाई कर सका हाँ। और यो पर्यावरण का अनुकूल होने के साथ साथ अपने पानी का बिल और बिजली की बचत में भी मदद करे है, और एक साथ साथ छता पर गिरने वालों साफ बारिश का पानी नापा पाइप के जरिए बाल्टी या ड्रामा में इकट्ठो कर सका हाँ, और बिन बाद में काम में ले सका हाँ। इस संग्रहित जल न उपयोग कर आपा कपड़ा धोने में, बर्तन साफ करने में और शौचालय के लिए भी प्रयोग कर सका हाँ। बारिश को पानी है पौधा के लिए प्राकृतिक वरदान हुआ है, इस सीधे बगीचे या गमला में दे सका हाँ। बिक साथ साथ बरसात का मौसम में वात और कफ बढ़ जावे, इससे बचने के लिए आपा अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान रखा, तुलसी और गिलोय को काढ़ो है वो पीवा ताकि आपा स्वस्थ रह सका।

0: BRICS National Security Advisors meeting begins in New Delhi to discuss emerging security challenges. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar arrives in Mongolia to hold meeting with his counterpart to deepen economic ties. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. And in FIFA World Cup, Egypt beat New Zealand 3-1 to secure first ever World Cup victory. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में दो प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय शासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्श्व शिक्षक का वेतन 5,000 रुपए बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में 5,000 रुपए की वृद्धि की गई है। चंदीपन दासगुप्ता के साथ काश्मीर नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल, बीजेडी और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण

0: कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज सीआईएसएफ के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 2 और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 2 मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
2: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन आज शाम 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं।

डॉक्टर मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौद तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकुवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: श्रोताओं, दिन के 2:30 बजे हैं। डीजे प्रस्तुत है आपका अपना फरमाइश कार्यक्रम मेलबॉक्स। कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को कुंज बिहारी का नमस्कार। श्रोताओं, आपकी पसंद हम सेलेक्ट कर चुके हैं और बहुत सारे श्रोताओं के ईमेल्स भी हमें मिल गए हैं। तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने समय निकाल के और समय का ध्यान रखते हुए हमें ईमेल्स भेजे हैं। और अब श्रोताओं से अनुरोध है कि हमें ईमेल इस समय ना भेजें, हम आपके कार्यक्रम की पहली ईमेल शामिल कर रहे हैं। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से लिखते हैं प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। और कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी। आपने सुनना चाहा है भीगी पलकें फिल्म का गाना, ये गाना हम सुनवाएंगे और कुछ और नाम इसमें शामिल कर लेते हैं। आप लिखते हैं सूरत सिटी से अल्पा जैन, अदिति जैन, पुष्पा जैन और पूनम जैन। ये श्रोता है राजकोट से जमीन कुमार जैन, हैतल, कृष्णा, राकेश जैन। विरमगाम गुजरात से हमारे श्रोता है अजीत भावसार, प्रमिला, भावेश, सन्नी, जमीन भावसार और उनका पूरा परिवार। आप श्रोता लिख रहे हैं ग्राम भागमुड़ा कोमा खान छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता है प्रज्ञानंद देवांगन, नंदनी, प्रकाश और यहीं से है गायत्री, यशवर्धन, यशस्वी। आप सभी की पसंद को पूरा कर रहे हैं इस गीत के साथ। उम्मीद है हमारे श्रोता हमें इस वक्त लाइव सुन रहे हैं और अपनी पसंद का गीत भी वो आकाशवाणी चूरू के माध्यम से सुन रहे हैं।

और श्रोताओं, साथ आपका और हमारा भी है। इस बेतार की दुनिया ने हमको जोड़े हुए हैं और अगला गीत भी हम मेलबॉक्स कार्यक्रम में ले रहे हैं। फिल्म का नाम है मीरा का मोहन और इस गाने के लिए मिली जुली फरमाइश हमें मिल गई है। हमारे श्रोता हैं दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि पुष्पेंद्रमणि नोखीलाल वर्मा। आप श्रोता हमें लिख रहे हैं, माँ नर्मदा श्रोता परिवार शिवकोटी ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर से लिखते हैं राकेश पप्पू सेन, निशा सेन द्वारकीबाई इंदौर लिम्बोदी से लिखते हैं गिरधारीलाल चौधरी, मनीषा वै चौधरी। ये श्रोता हमें लिख रहे हैं ग्राम पीपर रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा। आप श्रोता हैं तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, शेख रहीम मुन्ना और इनका पूरा परिवार। ये श्रोता हमें लिख रहे हैं गांव जाखोद से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू का भी ईमेल हमने शामिल कर लिया है। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुरीत डोमन पाव, बिहार से डॉक्टर डब्लू, डॉक्टर सोनम और दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद और परमानंद, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी। ये ईमेल हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और जस्पी यादव का। और आप श्रोता हैं सौराष्ट्र राजकोट से जूली, जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी। तमाम श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार हम व्यक्त कर रहे हैं, ताकि आप इसी प्रकार इसी जोश के साथ हमें ईमेल करते रहें। फिलहाल सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

श्रोताओं, आपने सुना अंदाज फिल्म का ये गाना, और इस गाने के लिए मिली जुली फरमाइश आप सभी की। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता का ईमेल हम शामिल कर रहे हैं। आप हैं वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। ये श्रोता हैं चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, और आप श्रोता हैं खुर्जा यूपी से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन अंकुश और इनके परिवार के सभी सदस्य हैं। अगला ईमेल हम शामिल कर रहे हैं गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी और इनके परिवार के सभी सदस्य। उम्मीद है श्रोताओं आपने अपनी पसंद अवश्य सुनी होगी। अगला गीत हमने लिया है फिल्म हरियाली और रास्ता से। इस गीत के लिए मिली जुली जो फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं वो आप तमाम श्रोताओं की है। आप लिख रहे हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला ओम कुमार, आरती कुमारी। ये ईमेल हमें मिला है, लिखने वाले श्रोता हैं गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, डेनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान और डांगरी से बाबूराम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से खुदाबख्श खलीफा। आप श्रोता हैं हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़के, नंदा बोड़के, हनुमान और उत्तम जमदाड़े। ये ईमेल हम शामिल कर रहे हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज का ईमेल भी हम शामिल कर रहे हैं। नेपानगर एमपी से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला चीनू, दीपक और अनुश्री श्याम कुंवर। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी का ईमेल मिला है। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्वनी और विपुल कांबड़े। नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी।

और दिशा गोस्वामी। ये हमारे श्रोता हैं गांव हीरावाली फजिलका पंजाब से, सुभाष गोतारा, बिमला गोतारा, इंदु, पार्वती और हिमांशु गोतारा। तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत आभार। और अब आपके रेडियो सेट पर आ रहा है आप सभी की पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम हरियाली और रास्ता।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से कार्यक्रम मेलबॉक्स। कुछ श्रोता हमें इस वक्त ईमेल भेज रहे हैं, जबकि हम बहुत लंबे समय से हमारे श्रोताओं से आग्रह कर रहे हैं कि आप मेलबॉक्स कार्यक्रम के लिए दिन में 11 बजे से 1 बजे तक हमें ईमेल भेजें, और यदि आप एक बार सिर्फ एक ईमेल भेज देंगे तो वो भी हमारे लिए काफ़ी पर्याप्त रहेगा। अगला और अंतिम गीत हम आज के इस कार्यक्रम का शामिल कर रहे हैं, और इस गीत को सुनने की ख्वाहिशमंद है आप सब। भंवर सिंह मीणा, तन्मय मीणा, हमेरी कलां झुंझुनू से लिखते हैं, महेश जानू बहादुरवास झुंझुनू से, सुखजिंदर बुगालिया चिड़ावा जिला झुंझुनू से, बलजीत कांटीवाल बिदासर जिला झुंझुनू से हमारे श्रोता हैं, और ये हमारे श्रोता हैं।

नई सड़क चूरू से लिखते हैं राजा नंदवाणी, रजत, रोहित, केशव, मुकुल, मनीष, सुमित, साक्षी और किरण नंदवाणी। गुदड़ी बाजार चूरू से जगदीश मंडल, अभिषेक मंडल और दूधवा मीठा चूरू से राकेश कुमार। लादड़िया गांव से लिखते हैं जिला चूरू अरविंद खाड़िया। ये हमारे श्रोता हैं गोंदिया महाराष्ट्र से निशांत पुंडे, ओम प्रकाश पुंडे, मानसी, चेतन और उनके परिवार के सभी सदस्य। श्रोताओं, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे साथी नियमित रूप से हमें याद करते हैं और समय का खास तौर पर ख्याल रखते हुए कार्यक्रम में शामिल होते हैं, तो उनका हक भी बनता है कि हम उनकी फरमाइश को पूरा करें। आज के इस कार्यक्रम में जिन श्रोताओं ने समयबद्ध तरीके से अपने ईमेल्स भेजे हैं उनके ईमेल्स को हमने शामिल कर लिया है और ये कार्यक्रम का अंतिम गीत हम प्ले कर रहे हैं आप तमाम श्रोताओं की पसंद पर।

श्रोताओं, इस खूबसूरत से नगमे के साथ आज के कार्यक्रम का सफर बस यहीं तक। अगले कार्यक्रम तक के लिए अपने रेडियो दोस्त कुंज बिहारी को दी अनुमति। नमस्कार।

मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बजे हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे सायंकालीन सभा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें।

FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की दूसरी सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। सभा की शुरुआत में युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।

जी दोस्तों, इस गाने के साथ हो चुकी है कार्यक्रम युववाणी की शुरुआत। और आज के इस युववाणी में मैं हूं आपकी युवा साथी टिंपल शर्मा। प्रोग्राम सुन रहे तमाम श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

जी दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज है सोमवार और सोमवार को रहता है हमारा खास सेगमेंट, हमारे प्रेरणा स्रोत। जी बिल्कुल दोस्तों, अगर हम हमारे जीवन की बात करें तो जीवन की राह में कोई भी व्यक्ति, कभी कोई विचार और कभी किसी का संघर्ष जो है वो हमारे लिए एक दीपक बन जाता है। जब रास्ते धुंधले पड़ने लगते हैं तब कुछ महान व्यक्तित्व अपनी मेहनत, साहस और उपलब्धियों से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और उनको देखकर ही हम हमारे जीवन में आगे बढ़ते हैं। और अगर हम प्रेरणा की बात करें दोस्तों, तो प्रेरणा जो है वो केवल किसी महान व्यक्ति की सफलता की कहानी से ही नहीं मिलती, बल्कि जीवन के हर छोटे बड़े अनुभव से भी प्राप्त की जा सकती है। कभी किसी बच्चे की जिज्ञासा, कभी किसी किसान की मेहनत, कभी किसी खिलाड़ी का संघर्ष, तो कभी किसी सामान्य व्यक्ति का असाधारण साहस जो है वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। प्रकृति, पुस्तकें, विचार, घटनाएं और हमारे आसपास के जो लोग हैं वो सब हमें कुछ न कुछ सीख देते ही रहते हैं। आवश्यकता केवल उस सीख को पहचानने और उसे अपने जीवन में अपनाने की होती है। और यही सोच के साथ हम लेकर आए हैं आज का खास सेगमेंट, हमारे प्रेरणा स्रोत, जहां हम उन व्यक्तित्वों की, उन घटनाओं की और विचारों की चर्चा करेंगे जो हमें आगे बढ़ने, चुनौतियों का सामना करने और अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा देती है। और दोस्तों, अगर हम बात करें प्रेरणा के बारे में कि जो प्रेरणा है क्या सिर्फ वो बड़े लोगों से ही ली जाती है, तो जब भी प्रेरणा की बात होती है तो हमारे मन में अक्सर महान वैज्ञानिकों, खिलाड़ियों, नेताओं, समाज सुधारकों या सफल उद्यमियों की जो छवि है वो उभर आती है। हम सोचते हैं कि प्रेरणा केवल उन्हीं लोगों से मिल सकती है जिन्होंने दुनिया में कोई बड़ा नाम कमाया हो, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या प्रेरणा का दायरा जो है वो केवल प्रसिद्ध व्यक्तियों तक ही सीमित है, या फिर प्रेरणा हमारे आसपास, हमारे घर परिवार, समाज और रोजमर्रा के जीवन में भी मौजूद है? इन सभी सवालों के जवाब जो है वो हम आपको देंगे और बातें आगे यूं ही जारी रखेंगे। फिलहाल ये चलते हैं आपको एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक पर।

जी दोस्तों, म्यूजिकल ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे हमारे खास सेगमेंट हमारी प्रेरणा स्रोत में कि क्या प्रेरणा जो है वो सिर्फ बड़े लोगों से ही मिलती है। इस विषय पर हम बात कर रहे थे। तो दोस्तों, यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि प्रेरणा जो है वो किसी पद, प्रतिष्ठा या प्रसिद्धि की मोहताज नहीं होती। प्रेरणा तो वो शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने, बेहतर बनने और कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस देती है। और ये शक्ति जो है वो हमें कहीं से भी मिल सकती है। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जो बार बार गिरने के बावजूद चलना सीखता है, क्या उसका प्रयास हमें हार ना मानने की सीख नहीं देता? एक किसान जो तेज धूप, बारिश और कठिन परिस्थितियों में भी मेहनत करता रहता है, क्या वह हमें धैर्य और परिश्रम की प्रेरणा नहीं देता? एक गृहिणी की अगर हम बात करें जो पूरे परिवार की जिम्मेदारियां मुस्कुराते हुए निभाती है, क्या वह समर्पण और त्याग का उदाहरण नहीं है? सच तो ये है कि जीवन का जो हर व्यक्ति है वो हर अनुभव और हर परिस्थिति में हमें कुछ न कुछ सिखाता रहता है। हम अक्सर सफलता को ही प्रेरणा का आधार मान लेते हैं, जबकि कई बार संघर्ष सफलता से अधिक प्रेरणादायक होता है। किसी व्यक्ति ने भले ही कोई बड़ा पुरस्कार न जीता हो, लेकिन यदि उसने कठिन परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों और हिम्मत को बनाए रखा है तो वो भी प्रेरणा का स्रोत है। जी बिल्कुल दोस्तों, इतिहास के महान लोगों की कहानियां जो है वो निश्चित रूप से हमें प्रेरित करती है। वे हमें बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस देती है। लेकिन यदि हम केवल उन्हीं तक सीमित रह जाएं, तो हम उनके जो आसपास बिखरी हुई अनगिनत प्रेरणाएं हैं उनको देखने से चूक जाएंगे। कई बार हमारे माता पिता ही हमारे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत होते हैं। उन्होंने अपने संघर्षों, त्याग और मेहनत से हमें जीवन की राह दिखाई होती है। हो सकता है कि वे किसी बड़े मंच पर सम्मानित न हुए हों, लेकिन उनकी जो जीवन यात्रा है वो हमारे लिए किसी प्रेरक पुस्तक से कम नहीं होती। इसी प्रकार शिक्षक की भी प्रेरणा का महत्वपूर्ण योगदान हमारे जीवन में होता है। वे केवल किताबों का ज्ञान नहीं देते, बल्कि जीवन जीने की जो कला है वो भी सिखाते हैं। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों के मन में आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का जो बीज है वो बोता है। दोस्तों, प्रेरणा प्रकृति से भी मिल सकती है। सूरज हर दिन बिना थके उगता है और हमें निरंतरता का संदेश देता है। नदी अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ती रहती है और हमें सिखाती है कि रुकना नहीं है। पेड़ बिना किसी भेदभाव की छाया और फल देते हैं और हमें निस्वार्थ सेवा की सीख देते हैं। कभी कभी जो प्रेरणा है वो असफलताओं से भी मिलती है। जब हम किसी व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करते देखते हैं और फिर भी उसे हार नहीं मानते हुए आगे बढ़ते देखते हैं, तो हमें भी संघर्ष करने की शक्ति मिलती है। असफलता हमें ये सिखाती है कि गिरना गलत नहीं है, बल्कि गिरकर उठना सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज के समय में सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से भी हमें कई प्रेरणादायक कहानियां देखने को मिलती है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए दोस्तों कि प्रेरणा केवल बड़े मंचों पर दिखने वाले लोगों तक सीमित नहीं है। हमारे आसपास ऐसे अनेक लोग हैं जो चुपचाप अपने कर्मों से प्रेरणा बांट रहे हैं। कभी आपने सोचा है दोस्तों कि एक सफाई कर्मचारी

जो हर दिन शहर को स्वच्छ रखने के लिए मेहनत करता है, वह हमें कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा देता है। एक सैनिक जो देश की सुरक्षा के लिए अपने परिवार से दूर रहता है, वह हमें समर्पण की प्रेरणा देता है। एक मजदूर जो अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करता है, वो हमें संघर्ष और मेहनत का महत्व समझाता है। इसलिए प्रेरणा को केवल प्रसिद्धि के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। प्रेरणा का संबंध जो है वो व्यक्ति की सोच, कर्म और संघर्ष से होता है, ना कि उसके नाम और पहचान से। एक और महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि प्रेरणा लेने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाना होगा। यदि हम हर व्यक्ति और हर परिस्थिति से सीखने की आदत विकसित कर लें तो हमारा जीवन लगातार समृद्ध होता जाएगा। सीखने की ये प्रवृत्ति जो है वो हमें विनम्र भी बनाती है, क्योंकि तब हम समझते हैं कि ज्ञान और प्रेरणा केवल कुछ चुनिंदा लोगों के पास नहीं बल्कि हर जगह मौजूद है। कई महान व्यक्तियों ने भी स्वीकार किया है कि उनकी सफलता के पीछे अनेक साधारण लोगों का योगदान जो है रहा है और वही उनकी प्रेरणा बनी है। इसका मतलब ये है कि प्रेरणा का कोई निश्चित आकार या पहचान नहीं होती। तो क्या प्रेरणा सिर्फ बड़े लोगों से ही ली जाती है? तो शायद इस सवाल का जवाब जो है वो आप लोगों को मिल गया होगा कि प्रेरणा जो है वो सिर्फ बड़े लोगों से नहीं, हमारे आसपास किसी भी व्यक्ति, किसी भी घटना, किसी भी अनुभव और किसी भी परिस्थिति से ली जा सकती है। प्रेरणा वहां होती है जहां सीख होती है। प्रेरणा वहां होती है जहां संघर्ष, साहस, मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच होती है। इसलिए अगली बार जब आप प्रेरणा खोजें तो केवल बड़े नामों की ओर ही ना देखें, अपने आसपास की नजर दौड़ाइए। हो सकता है कि आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके विद्यालय में या आपके दैनिक जीवन के किसी साधारण व्यक्ति में छिपी हो। और अंत में मेरा बस यही कहना है कि जीवन का सबसे अच्छा विद्यार्थी वही है जो हर व्यक्ति और हर परिस्थिति से सीखने की कला जानता है। जब हम ऐसा करना सीख जाते हैं तब पूरा संसार हमारे लिए प्रेरणा का विद्यालय बन जाता है और हम हर किसी व्यक्ति से जो है वो सीख ले सकते हैं। जी दोस्तों, खास सेगमेंट में बातें यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल लिए चलते हैं आपको एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक पर।

जी दोस्तों, म्यूजिकल ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि प्रेरणा जो है वो सिर्फ बड़े लोगों से ही नहीं मिलती है, अपने आसपास जो भी चीजें होती हैं उनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बात के लिए ना कहना चाहते थे लेकिन सामने वाले को बुरा ना लगे इस डर से आपने हाँ कह दिया। बाद में आपको लगा कि आपने अपनी इच्छा, अपने समय या अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया। और यदि आपका जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से बहुत से लोग जो हैं दूसरों को खुश रखने के लिए अपनी भावनाओं और जरूरतों को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन क्या हर बात पर हाँ कहना अच्छा होता है? क्या अपनी सीमाओं को समझना और जरूरत पड़ने पर विनम्रता से ना कहना गलत है? बिल्कुल नहीं। वास्तव में सही समय और सही तरीके से ना कहना जो है वो आत्मसम्मान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, ना कहने की कला और आत्मसम्मान। जी बिल्कुल दोस्तों, अक्सर लोग जो है सोचते हैं कि ना कहना असभ्यता या रिश्तों को खराब करने का कारण बन सकता है, लेकिन सच यह है कि हर बात पर हाँ कहना हमें मानसिक रूप से थका सकता है। जब हम अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करते हैं तो तनाव, नाराजगी और असंतोष जो है वो बढ़ने लगता है। ना कहना हमें ये अधिकार देता है कि हम अपने समय, ऊर्जा और भावनाओं का सम्मान करें, और ये बताता है कि हम अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं और उनका महत्व जानते हैं। आत्मसम्मान की अगर हम बात करें तो दोस्तों आत्मसम्मान का अर्थ ही यही है कि स्वयं का सम्मान करना, अपनी भावनाओं, विचारों और जरूरतों को महत्व देना। आत्मसम्मान हमें ये सिखाता है कि हम दूसरों का सम्मान करते हुए भी अपने अधिकारों और सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के आत्मसम्मान अंदर होता है वो हर व्यक्ति को खुश करने का कोशिश जो है वो नहीं करता है और हर खुशी में अपनी खुशी भी ढूंढता है। वह जानता है कि सभी को हमेशा खुश रखना जो है वो संभव नहीं है। जब हम हर किसी की बात मान लेते हैं तो कई समस्याएं पैदा हो सकती है, अपने लिए समय नहीं बचता, मानसिक तनाव बढ़ता है, लोग हमारी सीमाओं को समझ नहीं पाते, आत्मविश्वास कमजोर पड़ सकता है और अपने लक्ष्य और प्राथमिकताएं जो है वो पीछे छूट जाती है। इसलिए कभी कभी ना कहना भी जरूरी होता है। ना कहने की कला क्या है? अगर इस पर हम बात करें दोस्तों तो ना कहना केवल एक शब्द बोलना नहीं है बल्कि इसे सही तरीके से कहना भी एक कला है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि मैं नहीं करूंगी, मुझे कोई मतलब नहीं। इस बात के बजाय अगर आप ये कहें कि मुझे खुशी है कि आपने मुझे याद किया लेकिन इस समय मैं ये काम नहीं कर

पाऊंगी। इस तरह का जो कहा गया ना है वो सामने वाले को सम्मान की दृष्टि से भी बनाए रखता है, और आपकी बात जो है वो भी स्पष्ट हो जाती है। और विनम्रता से ना कहना जो है वो आपको सीखना चाहिए। और किस तरीके से आप ना कह सकते हैं उसके लिए कुछ तरीके हैं कि स्पष्ट रहें, घुमाने फिराने की बजाय सीधे और सम्मानपूर्वक बात करें। संक्षिप्त जो कारण है वो दें, यदि आवश्यक हो तो छोटा सा कारण बता सकते हैं। अपराध बोध ना रखें, अपनी सीमाएं जो है वो तय करना गलत नहीं है। सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करें, आपका लहजा बहुत मायने रखता है। विकल्प सुझाएं, यदि संभव हो तो कोई दूसरा रास्ता जो है वो आप बता सकते हैं। जीवन में ना कहने के बहुत से उदाहरण हैं दोस्तों, जिनमें से कुछ है कि जब कोई आप काम जो है वो आपकी पढ़ाई में या किसी काम में बाधा डाल रहा हो, जब कोई आपके साथ ऐसा कार्य करवाना चाह रहा हो जो आपके सिद्धांतों के विरुद्ध हो, जब आपकी कार्य क्षमता जो है या समय सीमा सीमित हो, जब आप मानसिक या शारीरिक रूप से थके हुए हों, तो ऐसे समय में ना कहना कमजोरी नहीं बल्कि आपकी समझदारी होती है। कई लोग सोचते हैं कि ना कहने से रिश्ते खराब हो सकते हैं, लेकिन स्वस्थ रिश्ते वही होते हैं जहां दोनों पक्ष एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करें। जो लोग वास्तव में आपकी परवाह करते हैं वो आपकी परिस्थितियों और निर्णय को समझने की कोशिश करेंगे। और युवा जो साथी हैं उनको विशेष रूप से ये सीखना चाहिए कि गलत संगति, अनुचित दबाव या ऐसे कार्य जो उनके भविष्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके लिए आपको ना कहना आना चाहिए। ना कहना सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही समय पर कहा गया एक छोटा सा ना जीवन की बड़ी समस्याओं से बचा सकता है। तो श्रोताओं, ना कहना किसी का अपमान करना नहीं है बल्कि ये स्वयं का सम्मान करना है। जब हम अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और उन्हें विनम्रता से व्यक्त करते हैं, तब हमारा आत्मसम्मान और भी ज्यादा मजबूत होता है। याद रखिए, हर बात पर हाँ कहना अच्छाई की निशानी नहीं है और हर जगह ना कहना भी उचित नहीं है। समझदारी इसी में है कि कब हाँ कहना है और कब ना कहना है, ये हमें सीखना चाहिए, ये हमें आना चाहिए। आत्मसम्मान हमें ये संतुलन सिखाता है, इसलिए अपने विचारों, समय और भावनाओं का सम्मान कीजिए और जरूरत पड़ने पर आत्मविश्वास के साथ लेकिन विनम्रता के साथ ना कहना सीखिए। इसी सोच के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। फिलहाल लिए चलते हैं आपको एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक पर।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: खो गया इंतजाम।
4: किसका? गुड्डी की फीस का।
5: दिखा।
4: 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले, और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
6: आरबीआई कहता है,
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
8: खेती बाड़ी में ऑर्गेनिक फार्मिंग के बढ़ते चलन को देखते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस बार आधुनिक कृषि चौपाल में बात होगी इसी विषय पर वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञों के साथ, जहां मिलेंगे किसानों को प्राकृतिक खेती बाड़ी से जुड़े उनके सवालों के जवाब।
9: वापसा डेवलप करने के लिए हमें उसमें रेज बेड, जिसको हम गादी क्यारा बोलते हैं, और उसके ऊपर हमें हमारे पौधे लगाने।
10: नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, अग्नास्त्र है, तो दशपर्णी अर्क है, तो इसके माध्यम से आप कीट को आप।
8: तो सुनना न भूलिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार और आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आधुनिक कृषि चौपाल, 21 नवंबर 2025 दोपहर 2:30 बजे सिर्फ आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।
11: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू, क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आप

0: का सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: जी दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है विविधताओं का देश है, जहां हर प्रदेश की अपनी संस्कृति, परंपराएं और धार्मिक आस्थाएं हैं। इन्हीं आस्थाओं और परंपराओं से जुड़ा एक महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव है मेला क्षीर भवानी, जो कश्मीर की पावन धरती पर बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ जो है वो मनाया जाता है। ये मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि कश्मीरी संस्कृति, आस्था और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि मेला क्षीर भवानी जो है उसका इतिहास, इसका महत्व, इससे जुड़ी मान्यताएं और इसके सांस्कृतिक पक्ष के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों कि मेला क्षीर भवानी क्या है। तो मेला क्षीर भवानी जो है वो कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुल्ला गांव में स्थित माता रागन्या देवी के मंदिर में आयोजित होने वाले प्रमुख धार्मिक उत्सवों में से एक है। ये मेला मुख्य रूप से कश्मीरी पंडित समुदाय की आस्था का केंद्र है, लेकिन इसमें विभिन्न समुदाय के लोग जो है वो भी शामिल होते हैं। अब हम इसके नाम का अर्थ जाने तो क्षीर का अर्थ है दूध और भवानी का अर्थ है माता दुर्गा। ये एक स्वरूप है। मान्यता है कि माता को दूध और खीर का भोग जो है वो अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम क्षीर भवानी पड़ा। क्षीर भवानी मंदिर कश्मीर की सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि माता रागन्या देवी पहले लंका में विराजमान थी, बाद में भगवान हनुमान जी उन्हें कश्मीर लेकर आए और तुलमुल्ला में स्थापित किया। ये मंदिर एक पवित्र झरने के बीच स्थित है। इस झरने का पानी जो है वो समय समय पर रंग बदलता है, जिसे श्रद्धालु विशेष संकेत के रूप में देखते हैं। यह मेला जो है ज्येष्ठ मास की अष्टमी के दिन आयोजित किया जाता है और इस अवसर पर हजारों श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर माता के दर्शन करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। क्षीर भवानी मेला श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। श्रद्धालु माता से सुख की, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। मंदिर परिसर में विशेष पूजा, हवन और भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। क्षीर भवानी मंदिर का सबसे अनोखा पहलू वहां का पवित्र झरना है। मान्यता है कि झरने का रंग जो है वो समय समय पर बदलता है। हल्के रंग शुभ माने जाते हैं, जबकि गहरे रंगों को आने वाली जो कठिनाइयां हैं उनका संकेत माना जाता है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसके पीछे प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं। और क्षीर भवानी जो मंदिर है वो कश्मीरी पंडितों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। देश विदेश में रहने वाले अनेक कश्मीरी पंडित इस अवसर पर कश्मीर पहुंचकर माता के दर्शन करते हैं और ये मेला उनकी सांस्कृतिक पहचान और परंपरा से जुड़ाव का भी माध्यम है। अब बात करें सांस्कृतिक महत्व के बारे में, तो ये मेला जो है वो केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। मेले के दौरान लोगों में भाईचारे और एकता की भावना देखने को मिलती है। श्रद्धालुओं द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य जो हैं वो इसमें ये हैं कि माता रागन्या देवी की पूजा अर्चना की जाती है, खीर और दूध का भोग अर्पित किया जाता है, हवन और यज्ञ में भाग लिया जाता है, भजन कीर्तन किए जाते हैं, परिवार और समाज की सुख समृद्धि की प्रार्थना जो है वो की जाती है। और इससे हमें क्या सीख मिलती है? मेला क्षीर भवानी जो है वो हमें श्रद्धा, आस्था, संस्कृति और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का संदेश देता है। ये बताता है कि परंपराएं केवल धार्मिक आयोजन नहीं होती, बल्कि वे समाज को जोड़ने और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने का माध्यम भी होती हैं। दोस्तों, मेला क्षीर भवानी जो है वो एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि कश्मीर की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। माता रागन्या देवी के प्रति श्रद्धा और विश्वास का ये जो पर्व है वो हर वर्ष हजारों लोगों को एक सूत्र में बांधता है। आशा है कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिलहाल ये चलते हैं आपको एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक पर।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जी दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं, आपके पास सांस लेने के लिए हवा है, पीने के लिए पानी है और अपनों का साथ है, सीखने और आगे बढ़ने के अवसर हैं। लेकिन क्या हम कभी रुककर इन चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं? अक्सर हमारा ध्यान जो है उन चीजों पर जाता है जो हमारे आसपास नहीं है। हम उन कमियों, परेशानियों और चुनौतियों के बारे में सोचते रहते हैं जिन्हें हम बदलना चाहते हैं। लेकिन जीवन का एक बड़ा सच ये भी है कि खुशियां जो है केवल पाने में नहीं, बल्कि जो हमारे पास है उसकी सराहना करने में छिपी होती है। यही भावना है कृतज्ञता, जिसे हम ग्रेटिट्यूड भी कहते हैं। और ग्रेटिट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है दोस्तों, क्योंकि हमेशा हर रिश्ते के बारे में, हमारे जीवन के बारे में, हमारी सोच और सफलता जो है उसे ये एक सकारात्मक दिशा दे सकता है। कृतज्ञता केवल धन्यवाद कह देने का नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसी भावना है जिसमें हम जीवन में मिली छोटी बड़ी जो खुशियाँ हैं, अवसर हैं और लोगों के प्रति जो आभार है वो व्यक्त करते हैं। जब हम कृतज्ञ होते हैं तब हम शिकायतों से ज्यादा आशीर्वादों को देखते हैं, हम अभाव से अधिक उपलब्धियां पर ध्यान देते हैं। कृतज्ञता हमें ये एहसास कराती है कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे लिए मूल्यवान है। कृतज्ञता हमारी सोच को बदल देती है। जब हम हर दिन उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए हम आभारी हैं, तो हमारा मन सकारात्मकता से भर जाता है। इसलिए दोस्तों, ज़रूरी है कि आप भी जो हैं, आपके पास जो भी चीज़ें हैं उनके लिए कृतज्ञ रहें, ग्रेटिट्यूड जो है वो अपना रखें, क्योंकि ये कोई बड़ी या कठिन आदत नहीं है, ये जीवन को देखने का एक सुंदर दृष्टिकोण है। जब हम जो नहीं हैं उसकी जगह जो हैं उस पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तब जीवन में संतोष, खुशी और शांति बढ़ने लगती है। खुशी में हमें कृतज्ञ ये हमें नहीं बनाती, बल्कि कृतज्ञता हमें खुश बनाती है। तो आइए आज से हम अपने जीवन में कृतज्ञता को स्थान दें, लोगों को धन्यवाद करें, प्रकृति का सम्मान करें, अपने अवसरों की सराहना करें और हर दिन को एक उपहार की तरह स्वीकार करें।

जी दोस्तों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिलहाल कार्यक्रम से जाने की इजाजत दें आपकी दोस्त डिंपल शर्मा को। नमस्कार।

युवा साथी सुन रहे थे भी अपना कार्यक्रम युवानी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी जोरू से किया गया। कार्यक्रम विवरण में जानिए हमारी सभा के शेष और कल की पहली सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय।

शाम 6:10 पर आप सुनेंगे फिल्मी देशभक्ति गीत। शाम 7 कार्यक्रम होगा खेती और गृहस्थी, चर्चाएं होंगी सप्ताह के प्रमुख कृषि कार्य, जैविक कृषि तकनीक, दुधारू पशुओं की उचित देखभाल, साथ ही आप सुनेंगे कुछ लोक रचनाएं भी। रात्रि 8 सुनिए हमारे केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। 9:15 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे कुछ लोक रचनाएं कार्यक्रम लोक संगीत में। 9:30 पर आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। जयपुर केंद्र से सुनिए खेल जगत रात्रि 10:00। रात्रि 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सुगम संगीत।

कल की पहली सभा में सुबह 6:10 पर कार्यक्रम चिंतन में सुनिए, सलाह लेना कमजोरी नहीं बुद्धिमानी है। 6:15 पर कार्यक्रम भक्ति संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे वंदना। 6:45 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार। 7:20 पर कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान का अध्याय 6। 7:30 पर कार्यक्रम नमस्कार चूरू में सुनिए, चर्चाएं बचत बनाती है आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है, बेटी बचाओ बेटी बचाओ इस योजना के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। 8:30 पर आप सुनेंगे झलकी। 8:45 पर समाचार तरंग।

आपको एक बार फिर बता दें कि नमस्कार छोरू कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे भेंट वार्ता केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ से अमित कुमार की बातचीत। साथ ही चर्चाएं होंगी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुण्यतिथि, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। आठ बजकर 30 मिनट पर सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम, देश का 9 बजकर 10 मिनट पर, 9 बजकर 15 मिनट पर स्वास्थ्य आपका कार्यक्रम में सुनिए बाल रोगों में होम्योपैथी कितनी कारगर विषय पर शिव कुमार शर्मा की डॉक्टर मधुबाला से बातचीत। 9 बजकर 30 मिनट पर दिल से दिल तक कार्यक्रम आप सुनेंगे। 10 बजे विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे मुंबई केंद्र से। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज और कल की पहली सभा में प्रसारित किए जाने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की जानकारी। एफएम 110.7 MHz पर हम आकाशवाणी चुरू से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। कुछ लोग घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इमारत में स्थित एनिमेशन सेंटर में मौजूद 16 से 18 वर्ष की आयु के 14 छात्रों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि दमकल कर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में छात्रों की तलाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई भीषण अग्निकांड पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव अभियान जारी है और अधिकारी हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सतेग पटनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों

0: में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक मांगे पेश की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीत्रा पवार और अक्षय करडिले को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत में कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गदीर निजामी पुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया के राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत इथियोपिया रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले आज खेले गए मुकाबले में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

धूल का फूल फिल्म के इस देशभक्ति गीत के साथ ही फिल्मी देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 107 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत में समाचार।

0: लगाओ इंजेक्शन।
1: RBI कहता है
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने हर नागरिक तक न्याय की पहुंच अधिक सुलभ और मजबूत करने के लिए दिशा 2.0 को मंजूरी दी। इस योजना को 5 साल के लिए लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नीति आयोग के सदस्य केवी राजू के साथ बैठक कर जिला आधारित विकास मॉडल पर चर्चा की। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC पर विधेयक बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कहा, कोटा, बीकानेर और जोधपुर प्रसूता मामले अलग अलग हैं, इन्हें एक दूसरे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने दिशा 2.0 योजना को मंजूरी दे दी है। ये कार्यक्रम इस साल पहली अप्रैल से 31 मार्च 2031 तक 5 साल तक की अवधि के लिए नए रूप में लागू किया जाएगा। 255 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य हर नागरिक तक न्याय की पहुंच सुलभ और मजबूत बनाना है। ये देश के 16

सतत विकास लक्ष्यों की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाती है। इसे विकसित भारत 2047 के विजन से भी जोड़ा गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अनुसार दिशा 2.0 में प्रौद्योगिकी सक्षम न्याय वितरण के लिए विधि संजीवनी नाम का नया घटक पेश किया गया है।

0: बैठक हो रही है। दो दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं। इसमें समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग ले रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां बैठक का मुख्य विषय है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीक की भूमिका पर चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर केवी राजू की मौजूदगी में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए जिला आधारित विकास मॉडल पर चर्चा की गई। इसके तहत हर जिले में आकांक्षी उपखंडों को जोड़ते हुए स्थानीय आवश्यकताओं और संसाधनों के अनुरूप विकास योजनाएं बनाने की बात कही गई। इससे आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार बढ़ सकेगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार और निवेश के अवसर मिलेंगे। वन मंत्री संजय शर्मा ने सीएसआर निवेश से संरक्षित वन क्षेत्रों में विकास पर जोर दिया है। श्री शर्मा आज सवाईमाधोपुर में राज्य स्तरीय सीएसआर कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वन विभाग और कॉरपोरेट क्षेत्र की साझेदारी से वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता और इको टूरिज्म पर अच्छा काम किया जा सकता है। दो दिन के इस कॉन्क्लेव में राज्य के संरक्षित वन क्षेत्रों में सीएसआर के माध्यम से किए जाने वाले कामों पर चर्चा की जा रही है। राजस्थान एटीएस ने जयपुर से जैश ए मोहम्मद से कथित रूप से जुड़ी एक महिला को गिरफ्तार किया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर पकड़ी गई बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा नाम की ये महिला सवाईमाधोपुर जिले की मूल निवासी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार ये लंबे समय से देश विरोधी नेटवर्क के लिए काम कर रही थी। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि UAPA एक्ट के तहत गिरफ्तार कर आरोपी महिला को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 27 जून तक रिमांड पर भेज दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने आज जयपुर में समान नागरिक संहिता UCC को लेकर प्रेस वार्ता की। श्री पटेल ने कहा कि इससे समानता की भावना को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही भेदभाव को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने UCC लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए विधेयक लाने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है।
1: राजस्थान सरकार नागरिक संहिता कानून बनाने हेतु एक विशेषज्ञों की कमेटी का गठन किया। उसमें माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय की न्यायाधिपति रही है, वो हमारी इस कमेटी की अध्यक्ष रहेगी। और इस कमेटी का गठन विधिवत पूर्व में ही किया जा चुका है और उनसे अपेक्षा की गई कि बहुत जल्द से जल्द इस कानून पर सभी तरह का मंथन कर ये राजस्थान समान नागरिक संहिता बना करके पेश करें।
0: वहीं श्री बेढम ने कहा कि UCC संविधान के अनुरूप है, ये लैंगिक समानता की दिशा में भी अहम है।
2: भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति, वो महिला हो या पुरुष हो, उनको समान नागरिक संहिता लागू हो, जिससे सभी वर्गों, सभी धर्मों और सभी लोगों को एक कानून मिलेगा तो एक जैसी सुविधाएं, व्यवस्थाएं, उनके अधिकार सुनिश्चित हो। समान नागरिक संहिता UCC राजस्थान के लिए लागू हो, इसके लिए विधेयक बनाने के लिए कमेटी का गठन किया है।
0: चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कहा है कि जोधपुर के पावटा सैटेलाइट अस्पताल में प्रसूताओं के उपचार में पूरी गंभीरता बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञों की देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा है। मीडिया से बातचीत में चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कोटा, बीकानेर और जोधपुर के मामले अलग अलग हैं, इन्हें एक दूसरे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।
3: इंजेक्टेबल जो अभी जोधपुर के अंदर मार्केट से जो ये ला रहे हैं, जो 25% अलाउड है, उसकी जांच करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसका जो है हम उस पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं, क्योंकि ब्लीडिंग और इंजेक्टेबल और थोड़ा डिहाइड्रेशन, जो गर्मी पड़ रही है, और जो ये दो तीन चीजें ही हैं। तो हमारी डॉक्टर्स की टीम, मैंने जयपुर में भी गायनेकोलॉजिस्ट को और इनको बुलाया, डॉक्टर्स को बुला के हमने बैठ के बात करी, तो सब पॉइंटर्स जिन्हीं पे आ रहे हैं। ये एक बहुत गंभीर विषय है जिसका एम्स की टीम ने भी जांच कर ली और हम भी जांच।
0: प्रसूताओं के स्वास्थ्य को लेकर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर BS जोधा और अन्य डॉक्टरों के साथ बैठक की, मामले की जांच की।

0: के लिए कमेटी गठित की गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज अपने आवास पर जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने लोगों की परिवेदनाएं सुनी और उचित समाधान का आश्वासन दिया। मीडिया से बातचीत में श्री दिलावर ने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जुलाई के पहले सप्ताह तक सभी विद्यालयों में शिक्षक लगाने के प्रयास किए जाएंगे।
1: 1 जुलाई को ही कोशिश करेंगे कि हम सबको शिक्षक मिल जाएं, और 1 जुलाई को नहीं तो कम से कम 10 जुलाई तक तो सबको शिक्षक मिल जाएंगे और किसी प्रकार की समस्या न होगी। हमारा प्रयास ये रहेगा कि सभी विद्यालयों में समान रूप से शिक्षक हो जाएं।
0: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष हनुमान सिंह राठौड़ ने आज अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने बोर्ड के 41वें मुखिया के रूप में कमान संभाली। बोर्ड प्रशासक शक्ति सिंह राठौड़ ने उन्हें चार्ज सौंपा। श्री राठौड़ ने मीडिया से बातचीत में विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए नई शिक्षा नीति के समुचित क्रियान्वयन पर जोर देने की बात कही।
2: इस समय 2 प्रकार की योजनाएं हैं, कि हमारे राजस्थान के परिवेश के अनुसार विद्यार्थियों का शैक्षिक उन्नयन किस प्रकार से हो। दूसरा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा ये विद्यार्थी काल से किस प्रकार उनके अंदर और प्रेषित की जाए कि वो विद्यार्थी आगे चलकर अपने देश के लिए अपने समाज के लिए हितकारक नागरिक के रूप में वो निकल कर आए। तो केवल परीक्षा परिणाम नहीं तो साथ में उनका भौतिक शैक्षिक आध्यात्मिक ये सब प्रकार का उन्नयन कैसा हो, इस प्रकार का प्रयत्न सबके सहयोग से करेंगे।
0: राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्य पद पर नियुक्त हुए डॉ. संतोष आनंद ने निष्पक्ष परीक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता बताया है। श्री आनंद वर्तमान में भीलवाड़ा के माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में काम कर रहे हैं। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि वे जल्दी ही RPSC सदस्य के रूप में पदभार संभालेंगे।
3: प्राथमिकता ये है कि राजस्थान भर के जितने बच्चे मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उनको अपनी मेहनत के अनुरूप और उनकी योग्यता के अनुरूप उनका स्थान मिले, ये हमारी सबसे प्राथमिकता रहेगी। समय पर कैलेंडर हमने जारी कर चुकी है, RPSC कैलेंडर के अनुसार सारे काम हो रहे हैं, इसमें कोई इफ और बट और कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है।
0: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने RAS मुख्य परीक्षा 2024 के अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिकाएं ऑनलाइन देखने और डाउनलोड करने का मौका दिया है। आयोग सचिव ने बताया कि इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 6 जुलाई से 27 जुलाई तक आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक ML गर्ग ने आज राज्य के मुख्य सचिव V श्रीनिवास से भेंट की। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए सावंत भी मौजूद रहे। भेंट में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। सीकर जिले के रामगढ़ सेठान क्षेत्र में आज सुबह एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। रामगढ़ सेठान थानाधिकारी प्रकाश चंद्र ने बताया कि दुर्घटना सड़क किनारे खड़े ट्रोली और तेज रफ्तार ट्रेलर के बीच टक्कर से हुई। घायल व्यक्ति को चूरू रेफर किया गया है। उधर श्रीगंगानगर के सत्यम नगर में एक निर्माणाधीन भवन में करंट लगने से आज 2 श्रमिकों की मृत्यु हो गई। आज विश्व ऊंट दिवस है। ये दिन दुनिया के कई हिस्सों में आजीविका के लिए ऊंटों के महत्व को बताता है। रेगिस्तान का जहाज कहा जाने वाला ये जीव शुष्क क्षेत्रों का महत्वपूर्ण पशुधन है और भारत का गर्व माना जाता है। सहन शक्ति और सेवा का प्रतीक ऊंट लाखों लोगों के जीवन का सहारा है। ये कई दिनों और हफ्तों तक बहुत ही कम पानी के साथ जीवित रह सकता है और इसीलिए इसे रेगिस्तानी यात्रा के लिए आदर्श माना जाता है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ऊंट को संस्कृति और परंपराओं का वाहक बताते हुए लोगों से इसे अपना आदर्श साथी मानने का आग्रह किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने हर नागरिक तक न्याय की पहुंच अधिक सुलभ और मजबूत करने के लिए दिशा 2.0 को मंजूरी दी। इस योजना को 5 साल के लिए लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नीति आयोग के सदस्य KV राजू के साथ बैठक कर जिला आधारित विकास मॉडल पर चर्चा की। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC पर विधेयक बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कहा, कोटा, बीकानेर और जोधपुर प्रसूता मामले अलग अलग हैं, इन्हें एक दूसरे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से भरतपुर जिले की चिट्ठी सुनिए।

0: इसका आलेख शिव कुमार वशिष्ठ ने तैयार किया है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भरतपुर में जिला स्तरीय समारोह विश्वप्रिय शास्त्री पार्क में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत मुख्य अतिथि रहे। इसके अलावा ब्लॉक और पंचायत स्तर पर भी योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान विभिन्न योगासन और प्राणायाम कराए गए। कार्यक्रम में विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ आम जन ने भाग लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर के बंद बारेठा पहुंचकर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने बंद बारेठा की पाल का निरीक्षण किया और परियोजना के विस्तार कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने बरसात के दौरान जल भराव की समस्या से निपटने के लिए बेहतर योजना बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के निर्देश दिए। सहकारिता विभाग की शासन सचिव और जिला प्रभारी सचिव आनंदी ने भरतपुर का दौरा कर अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बजट घोषणाओं के कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागों के बीच समन्वय के साथ गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान देने को कहा। संभागीय आयुक्त नलिनी काठोतिया ने संभाग स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक आयोजित की। बैठक में बरसात से पहले सड़कों की मरम्मत, विभागीय समन्वय और उद्योगों तथा आमजन से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर चर्चा की गई। उन्होंने विद्युत संबंधी शिकायतों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। विश्व पर्यावरण दिवस पर निर्वाचन विभाग की ओर से एक पेड़ लोकतंत्र के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके तहत सरकारी और निजी संस्थानों, कार्यालयों तथा सार्वजनिक स्थानों पर पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में भरतपुर को पायलट परियोजना में शामिल किया गया है। स्किल डेवलपमेंट फॉर यू कार्यक्रम के तहत युवाओं की क्षमता और स्थानीय जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय के सलाहकार डॉक्टर आई बी सुब्बा राव ने अधिकारियों के साथ बैठक कर वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने युवाओं का डाटा तैयार कर उनकी रुचि और स्थानीय रोजगार की संभावनाओं के अनुसार प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से ब्लॉक स्तर पर नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्राम पंचायतों में विकास और जन कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में सैन्य और प्रशासनिक अधिकारियों की समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आपदा प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय पर चर्चा की गई। आमजन को राहत देने के लिए जिले में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में पट्टे, नामांतरण, निर्माण स्वीकृति, उपयोग परिवर्तन, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सहित अनेक कार्य किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर और शहर में वार्ड स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। जल संसाधन मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत ने वैर उपखंड के सरसेना गांव और भरतपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में आयोजित सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। सूचना और जनसंपर्क कार्यालय में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं तथा उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। प्रदर्शनी में किसान कल्याण, आयुष्मान भारत, पक्के आवास, सैन्य सुविधाओं और अन्य योजनाओं से संबंधित जानकारी चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित की गई। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग की ओर से जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। महात्मा गांधी वेटनरी कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 500 युवाओं, विद्यार्थियों और किसानों ने भाग लिया। कृषि वैज्ञानिकों ने मिट्टी स्वास्थ्य, जैविक खाद, जल संरक्षण और फसल विविधीकरण से संबंधित जानकारी दी तथा किसानों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने शहर में जल निकासी व्यवस्था से जुड़े कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्य ड्रेन के निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता की समीक्षा की तथा बरसात से पहले जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने भरतपुर अचनेरा फोरलेन सड़क चौड़ी करने के काम का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। इसी के साथ भरतपुर जिले की चिट्ठी समाप्त होती है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेरू पेश है सिंझा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार। केंद्र सरकार हर नागरिक तई न्याय रिपूक बत्ती सुलभ करावन सारू 2.0 ने मंजूरी दी। योजना ने 5 साल माए लागू करी जायला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा

नीति आयोग रा सदस्य केवी राजू रे साथे बैठक करने जिला आधारित विकास मॉडल माथे चर्चा करी। राज्य सरकार समान नागरिक संहिता यूसीसी माथे विधेयक बनावण ने उच्च स्तरीय समिति बनाई और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर कयो कोटा बीकानेर और जोधपुर प्रसूता मामला न्यारा न्यारा है आने एक दूजा जोड़ने नहीं देखा जावना चाहिए।

0: की अध्यक्ष रहेगी
1: और इस कमेटी का गठन विधिवत पूर्व में ही किया जा चुका है और उनसे अपेक्षा की गई बहुत जल्दी से जल्दी इस कानून पर सभी तरह का मंथन कर ये राजस्थान समान नागरिक संहिता बना करके पेश करें।
2: श्री बेडम कहो के यूसीसी संविधान मुजब है और लैंगिक समानता री दिशा में अहम है।
3: भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति वो महिला हो या पुरुष हो उनको समान नागरिक संहिता लागू हो जिससे सभी वर्गों सभी धर्मों और सभी लोगों को एक कानून मिलेगा तो एक जैसी सुविधाएं व्यवस्थाएं उनके अधिकार सुनिश्चित हो। समान नागरिक संहिता यूसीसी राजस्थान के लिए लागू हो इसके लिए विधेयक बनाने के लिए कमेटी का गठन किया है।
2: चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर कहो है कि जोधपुर रा पावटा सैटेलाइट अस्पताल में प्रसूतवा रा इलाज में पूरी गंभीरता बढ़ती जा रही है विशेषज्ञ की देखरेख में वारो इलाज करियो जावे। मीडिया साथे बतल में चिकित्सा मंत्री कहो के कोटा बीकानेर और जोधपुर रा मामला न्यारा न्यारा है अने एक दूजा जोड़ने नहीं देखा जावना चाहिए।
4: इंजेक्टेबल जो अभी जोधपुर के अंदर मार्केट से जो ये ला रहे हैं जो 25% अलाउड है उसकी जांच करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा उसका जो है हम उस पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं क्योंकि ब्लीडिंग और इंजेक्टेबल और थोड़ा डिहाइड्रेशन जो गर्मी पड़ रही है और जो ये दो तीन चीजें ही हैं तो हमारी डॉक्टर्स की टीम मैंने जयपुर में भी गायनाकोलॉजिस्ट को और इनको बुलाया डॉक्टर्स को बुला के हमने बैठ के बात करी तो सब पॉइंटर्स जिन्हें पे आ रहे हैं ये बहुत गंभीर विषय है जिसका एम्स की टीम ने भी जांच कर ली और हम भी जांच।
2: प्रसूतवारा स्वास्थ्य ने लिए जिला कलेक्टर अशोक रंजन मेडिकल कॉलेज रा प्राचार्य डॉक्टर बी एस जोधा और दूजा डॉक्टरों के साथ मीटिंग करी मामलारी जांचारू कमेटी बनाई जी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज आपरा रहवास माते जन सुनवाई करी ई दौरान वना लोगा री फरियादा सुनी और वाजिब निपटारा रा आश्वासन दिया। मीडिया साथे बतलमाए श्री दिलावर कहो के नुआ शैक्षणिक सत्र सारू जरूरी तैयारियां करी जा रही है वना कहो के जुलाई रा पहला हफ्ता ताई सगली स्कूला माए शिक्षक लगावन री कोशिश ही करी जावे।
5: एक जुलाई को ही कोशिश करेंगे कि हम सबको शिक्षक मिल जाएं और एक जुलाई को नहीं तो कम से कम 10 जुलाई तक तो सबको शिक्षक मिल जाएंगे और किसी प्रकार की समस्या न होगी। हमारा प्रयास ये रहेगा कि सभी विद्यालयों में समान रूप से शिक्षक हो जाएं।
2: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रा नुआ अध्यक्ष हनुमान सिंह राठौड़ आज अध्यक्ष रा ओधव संभाल लियो वना बोर्ड रा 41वां मुखिया रा रूप में कमान संभाली। बोर्ड रा प्रशासक शक्ति सिंह राठौड़ वाने कामकाज सौंपियो। श्री राठौड़ मीडिया साथे बतल माए पढ़ेसरा रा समग्र विकास सारू नुवी शिक्षा नीति रा वाजिब क्रियान्वयन माथे जोर देवन री बात कही।
6: इस समय दो प्रकार की योजनाएं हैं कि हमारे राजस्थान के परिवेश के अनुसार विद्यार्थियों का शैक्षिक उन्नयन किस प्रकार से हो। दूसरा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा ये विद्यार्थी काल से किस प्रकार उनके अंदर और प्रेषित की जाए कि वो विद्यार्थी आगे चलकर अपने देश के लिए अपने समाज के लिए हितकारक नागरिक के रूप में वो निकल कर आए तो केवल परीक्षा परिणाम नहीं तो साथ में उनका भौतिक शैक्षिक आध्यात्मिक ये सब प्रकार का उन्नयन कैसा हो इस प्रकार का प्रयत्न सबके सहयोग से करेंगे।
2: राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्य ओदा माते नियुक्त हुआ डॉक्टर संतोष आनंद निष्पक्ष परीक्षा ने पहली प्राथमिकता बताया है। श्री आनंद अबार माए भीलवाड़ा रा माणिकीलाल वर्मा राजकीय कॉलेज रा प्राचार्य रूप में काम कर रहा है। खबर नवीसा साथे बतलमाए वना कहो के वे बेगाई आरपीएससी सदस्य रा रूप में ओ दो संभाल लेवेला।
7: प्राथमिकता ये ही कि राजस्थान भर के जितने बच्चे मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उनको अपनी मेहनत के अनुरूप और उनकी योग्यता के अनुरूप उनका स्थान मिले ये हमारी सबसे प्राथमिकता रहेगी। समय पर कैलेंडर हमने जारी कर चुकी है आरपीएससी कैलेंडर के अनुसार सारे काम हो रहे हैं इसमें कोई इफ और बट और कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है।
2: बीएसएफ रा महानिरीक्षक एमएल गर्ग आज राज्य रा मुख्य सचिव वी श्रीनिवास रे साथे मिलिया। ई दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर सामंती मौजूद रिया। ई मुलाकात में न्यारा न्यारा मुद्दा माथे चर्चा करी जी। सीकर जिला रामगढ़ सेठान हल्का माए आज सवारा एक सड़क हादसा माए दो लोगों की मौत वेगी वठे एक दूजो घायल वेगियो। रामगढ़ सेठान थाना अधिकारी प्रकाश चंद्र बतायो के हादसों सड़क रे किनारे खड़ा ट्रोला रे तेज रफ्तार ट्रेलर बीच टक्कर वियो। घायल ने चूरू रेफर करी जा है उठने श्री गंगानगर रा सत्यम नगर माए एक नुआ बन रहा भवन माए करंट लागण।

दो लोगों की मौत वेगी। रबे मौसम राज्य में लाड़ला कुछ दिनों चल रही प्री मानसून गतिविधियां लोगों ने हीट वेव और करड़ी गर्मियों आराम मिल रो है। एक रे पछे एक लगातार सक्रिय वेरिया पश्चिमी विक्षोभों कई जिला में आंधी बिरखारो दौर बनियोड़ो है। आज ही प्रदेश रा कई हल्का में मौसम रो मिजाज बदलो रियो। मौसम महकमा मुजब आंधी बिरखारी ये गतिविधियां जयपुर अजमेर और भरतपुर संभाग में 26 जून तई बनी रहने की आस है। इस दौरान कठे कठे धूल भरी आंधी चल सके है। दूजी कानी बीकानेर और जोधपुर संभाग में मौसम साफ रहने की आस है, फिर वही कुछ थोड़ा बादल छाए जा रह सके है। न अबे आखिर में खास समाचार आप एक कर फिर सुन ले रहो। केंद्र सरकार हर रहवासी ताई न्यायरी पूग बत्तियों बत्ती सरल और मजबूत करण सारू दिशा 2.0 ने मंजूरी दी। योजना ने 5 साल सारू लागू करी जायला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नीति आयोग रा सदस्य केवी राजू रे साथ मीटिंग करने जिला आधारित विकास मॉडल माथे चर्चा करी। राज्य सरकार समान नागरिक संहिता UCC माथे विधेयक बनावन सारू ऊंचा तरी समिति बनाई। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर कहो है के कोटा बीकानेर और जोधपुर प्रसूता मामला न्यारा न्यारा है अने एक दूजाओं जोड़ने नी देखा जावना चाहिए। एंड रे साथ ही प्रादेशिक समाचारों ओबुलेट नठे पूरो व्यो। नमस्कार।

0: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम
1: ना। सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं पीएलआई पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।
2: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
3: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
4: बन गया बजट?
3: हाँ, 5,000 बच गए।
4: तो नई साड़ी ले ले
3: ना, पिछले महीने तो ली थी।
4: एक और
3: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
4: बढ़िया,
3: जाओ भाई।
5: आरबीआई कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: FM 107 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी चुरू से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती और गृहस्थी।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होए। धरती बने बिछावना, अंबर छावे छात, सुख तो है संतोष में, भूल पाछली बात। कार्यक्रम है खेती और गृहस्थी, सुनना रहे सगड़ा किसान भाया ने। आपके नानड़े किसान भाई गोपाल कानिशियो
2: और किसने भाई कानिशियो मोकला मोकला
1: राम राम। तो किसना भाई देखो के अड़िया की रूत है जी की फेरू आ गई।
2: बिल्कुल आ रही है सा।
1: अरे आप तो बजनी गणाई सुनावा गाली, तेरा खेत पड़ा है दूर, खेत में दिन छिप जैसी
2: हैं।

0: तो बदन छिपनारा बे टेम जो को है ने वो फिरू आ गयो
1: आ गयो।
0: और किसान जो को है किसना भाई इको जीवन जो को है ने वो हमेशा देखो का संघर्ष सारो रही है हैं।
1: बिल्कुल
0: किसानी का काम कोई सा ही उठा के थे देख लियो से पसीनो निकलना रही
1: और मेहनत करे बिना देखो के कोई भी काम के मायने किसान ने सफलता मिले को नहीं।
0: साल रे माए 365 दिन हो में कदे ही देखो के बारे रजिस्टर के मां छुट्टी को लिखेड़ी
1: कोने लिखेड़ी
0: है क्यों क्यों क्यों क्यों काम है जो रोज की करे। और किसान के जीवन में देखो के सहनशीलता धीरज जो को है ने आशा ओ बहुत तकड़ो है के संसार के मां सात प्रकार का जगह सुख बताए गए हैं वह मैं पहलो सुख निरोगी काया और सातवां सुख है वो संतोषी जीवन।
1: अच्छा अच्छा
0: तो जग के मानस की काया रूपी मशीन निरोगी रहसी और जीवन के मां संतोष होसी वो देखो के इस संसार रूपी जगी सराई है एक मां आम को टेम जुक है वो चौकी त्रियाओं पास करके और चलो जसी और जे जीवन के मां संतोष नहीं है तो फेस देखो के वे बालोड़ी कीड़ी किया लड़े डील के वो चिरमिराट है जो देखो के कदे मिठाई को नहीं।
1: भाई आजकल देखो के जीवन का मैं जका उठा पटक चाल दिए ने देखो कारण भी वही है।
0: हाँ
1: बहुत सारा जका रोग है भाई देखो बारह को नहीं आवे आपने शरीर के मायने रोगान देखो पालने को काम भी आपा ही करा
0: लाभ दबड़गी जी।
1: हाँ भाई एक तो देखो मन में शांति रहसी जित तो आपा कमा लियो बीस हूँ आपा तसलीस वगैरह रह सिया जब तक तो देखो अपनी शरीर रूपी गाड़ी चौकी चाले।
0: हाँ हाँ
1: अब कई बार देखो के लाभदा इतनी हो जाए आपा इतना रुपया कमा लिया लेकिन मैं निन्यानवे के फेर के मायने के भाई इतना रुपया हो बिना तो देखो के पार पड़े को नहीं।
0: हाँ हाँ
1: और क्यों देखो के आजकल भावना कंपटीशन की होगी एक मान लो के सरतरियो मिनख है वो पांच रुपया कोई कारण का हो मैंने चोखा लगा दिया तो पड़ोसी का हो जाएगा भाई आप इससे कम नहीं रह जाओ। अब देखो आए तो सह की बराबर को नहीं हो
0: कौन नहीं सा
1: कोई मान लो कई प्रकार का धंधा करे भी के पांच रुपए का आज ज्यादा और कई देखो के हरेक लाभदाम पड़ कौन पाऊ भाई एक दो ही धंधा करें और माम भी बहुत सारी बार घाटो लाग जाए लेकिन फिर भी आप बीके बराबरी हूं तो आपने काम करनो ही है।
0: किसना तो भाई आपने हाथ की आंगली ने ए देखो के कोई मानस की थे देख लो एक सार को नहीं
1: कोनी
0: छोटीर बड्डीर गुंठार बांकार चुंकार लमार ही ने
1: तो आऊ सीख लेनी चाहिए
0: भी आई परिवार में चाहे जितना ही मानस हो चाहे दो चाहे दस हो बांका चाल चलने न आचार विचार न बोली चाली न उठा बैठे के ने काम धंधो करने को ढंग न संतोष न व्यवहार हर एक चीज के मां फर्क मिलसी है
1: भाई। कई मिनट तो देखो आपकी जिंदगी का मायने इतनी मेहनत करें
0: हाँ।
1: के जकी को कोई अंत को नहीं
0: सही बात
1: और फेरू भी बागे जीवन का मायना रहेगा भाई ओ काम तो आपनो अधूरे ही रह गयो ई काम ने अगर आपा ई ढंग सु करता तो और भी ज्यादा बढ़िया रहतो। और कई मिनक देखो इच्छा में
0: हाँ।
1: जिंदगी का मायने बागे कदी पसीनो को नहीं आयो
0: हाँ हाँ
1: पण बागी जकी गाड़ी है बा ये की गुड़ेगा मान लो के बागे जीवन में आनंद ही आनंद है
0: भाई। थेज की बातड़ी कह रहे हो ने ई बातड़ी ने सुन के एक भजन याद आ गयो उन्ने मुन्ने जावाने खड़े जागण जुम्मे में जद के कई भजन गावे।
1: अच्छा
0: के क्या लेके आए बंदे क्या लेके जाएगा दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला इस जगत सराही में मुसाफिर रहना दो दिन का क्यों बीरथा करे मरोड़ मुरख तू धन और यौवन का है के राजा के राज का दुख है लेगा कभी बेरी दबाए धनदारी के धन का दुख है चोर कभी ले चुराए भूखे के भोजन का दुख है कौन जगह बैठ खाए है
1: मतलब सुखी कोई कोनी
0: कोई सुखी कोनी धरती के ऊपर आ मर्ग तृष्णा है घर में हम आप सड़क पर चला कोई साधन में बैठ के आपन यहाँ सो एक फुट का आ गई लगे जाने पानी पड़ी हो सड़क पर है और बटे सी आवाज बा 100 फुट दूरी है और बढ़ जा हिरण जो है वो रेत का टिब्बा ही वहां पर के का आवासियों यहाँ धारी मंड जाये तो वो जो तावड़ी पड़े न जोर की तो भी हिरण ने यहाँ दिखाया कि वो बटे पानी है वह झील तो वो बाज की बटे जा बटे

0: आज स्थिति होगी कारण की है अपा काम छोड़ दियो और काम छोड़ दियो और जितना अपा प्रकृतियों धीरे धीरे धीरे धीरे दूर होता गया ने बीतो ही देखो के आपनी जगी काया है ने आ रोगल होगी आ काया रोगल होगी आ रोगल होना की है के सारो खेल जुगो है ना जीवन को ओ एंड बैंड हो गयो है और गेलो छूट जा ने किसना भाई फिर गांव आवे को नहीं
1: आवे को नहीं
0: फिर गांव को नहीं हाँ ई खातर प्रकृति का बनाएड़ा जगह गेला ही वहां पर चालो ईमानदारी काम करो टेम के ऊपर काम करो तो प्रकृति जी की है बा आपनो जी की मेहनत है ने भी को प्रतिफल जो को है बा रख है कोनी कई हजार गुना बढ़ा के देसी तो आपन किसान भाई आई कहनी चाहवांगा के बातरी जी की थन बताई वहां पर गौर करियो और मैं देखो के थारी हर एक बात को ध्यान रखा है। अब जिया रेडियो एदबी का तीन उद्देश्य हो सूचना शिक्षा और मनोरंजन है जानकारी भी दिया आपा सूचना भी दिया और अब देखो बारी है मनोरंजन की तो किसान भाई ने सुनावा पप्पू मस्ताना की आवाज रमाई या लोक रचना
1: सुनाओ सा।

0: हाँ, तो अभी अपा पप्पू मस्ताना और साथियों की आवाज रे माए, ओ माता जी रो भजन है वो आपने किसान बयान सुनायो।
1: सुनाया सा।
0: किसना भाई, आपा रोज सुना अखबारा में भी पढ़ा के जे सब्जी लियावा तो बा दो टेम ज्यादा कौन रहे, फल लियावा तो वो दो टेम ज्यादा कौन रहे, नाज है तो वो सही कौन रहे। कुल मिला के चारों मेर समाचार वो आ रही है कि भाई जिको रसायन इस्तेमाल कर रहे हैं आपा तो बिका दुष्परिणाम जका ही वे आपने सामने आ रहे हैं
1: अरे
0: आंखियां के सामने। तो यूं बचने को तरीको एक ही है कि भाई खेती बाड़ी में जिको रसायन आपा इस्तेमाल करा बिने धीरे धीरे करके कम करो, और आपनो पुराणो जुगो तरीको खाद खुड़ो गेर के जुगो खेती करना रो वो अपनाओ, ताकि आपने खेत की मृदा जुकी है बा निरोगी रहे, आपनो पर्यावरण जुगो है वो साफ सुथरो रहे, सब्जी को अनाज को फलां को जुगो उत्पादन होवे वो सही होवे, गुणवत्ता युक्त होवे, पौष्टिक होवे। हैं?
1: भाई देखो, अगर आपन टिकाऊ खेती करनी है
0: हाँ
1: और लंबे वक्त तक अगर मान लो जमीन को आपन फायदो लेनो है तो
0: हाँ
1: जैविक खेती का नहीं आपन बढ़नो पड़ो।
0: सही बात है।
1: पिछले सालों के मायने देखो कि उत्पादन के मायने अपने देश में कोई कमी कौन रही, घणो ही करो। पर देखो जरूरी भी है बेटा इन,
0: सही बात है।
1: लेकिन अबार उत्पादन खूब हो गयो। और अब आपने मिन का वो जो स्वास्थ्य मिन देखता था कहा, देखो कि आज अपना किसान मिन की बेबी सावचेत होया। आपने सरकार है भाभी देखो जगह जगह ई चीज को बखान करे
0: हाँ
1: कि भाई जैविक खेती है बिसुते हर एक चीज को उत्पादन करो तो आपने देश को किसान है वो स्वस्थ होसी।

0: और स्वस्थ होशी तो वो मजबूत होशी और मजबूत होशी देखो उत्पादन ज्यादा कर सी। अब जैविक खेती की जी आप बात करा
1: हाँ,
0: तो सब पहले तो देखो के जैविक खेती में आपने जिकी माटी है बिन फायदो सी।
1: हाँ हाँ
0: भाई पिछले साल आपने जिकी माटी है बा बिल्कुल उतर गई, ठीक है। मायने आपने क्षेत्र में देखो नमक की मात्रा भी ज्यादा है और जमीन के ऊपर पापड़ी बन गई। अब भी पापड़ी के मायने थे नाज गेर सो तो नाज तो पड़ जैसी,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन देखो उत्पादन हो गए
1: तो जगह कमजोर होगी जी,
0: जगह कमजोर होगी। पिसा देखो मोकड़ा लागने लाग रहा है, लेकिन जी हिसाब से पिसा लागने लाग रहा है 20 साल में किसान के देखो उत्पादन हो रहे को नहीं। तो अब इको देखो सीधो सो एक ही तरीको है।
1: हाँ हाँ
0: के भाई शुरुआत आप जैविक खेती करा। अब जैविक खेती की शुरुआत तो देखो गोपाल भाई आप कर दी, लेकिन कई जगह किसान है पहले देखो मोकड़ो नाज ले डो। अभी की तुलना बार बे जैविक खेती के मायन करने लाग जाएंगे, पहले मारे 5 बोरी बीघा की होती, 10 बोरी बीघा की होती। अब बार में तो जैविक खेती करने लाग गया जगह बाद मार तो बोरी बीघे की कोनी हुए, 2 बोरी बीघे की कोनी हुए। तो शुरुआत में देखो एक बार आपन थोड़ा बहुत घाटो उसके, लेकिन तसली राखो आई चीज थाने 1-2 साल के बाद के मैंने झक्की ते हुए 5-10 बोरी लिया करता 20 उसके ज्यादा ही उत्पादन होने लगे। चोखी चीज थाने खाने मिल सी, आपने शरीर का मायने ताजगी आसी, बीमारियां जगो आपा नुतो देने लाग रहे, अपना 5 रुपया जगह बीमारी में खर्च होने लाग रहे हैं।
1: हाँ हाँ
0: वे बंद हो जैसे तो आपने उत्पादन वो बठिनो बढ़ गयो। भाई मन्ने का जे मान लो का आपा 1,500 रुपया बीमारी पर जे आपा खर्च करता और 12 महीना अगर आपा स्वस्थ रह गया तो आपा 10-12 हजार रुपया तो भाई बचा लिया। अब एक घर का मायने 5-4 महीने की हर एक की जो आप स्वास्थ्य की दृष्टि देखा।
1: हाँ हाँ।
0: तो वो भी देखो आपने वो उत्पादन को फायदा है।
1: सही बात।
0: अब जैविक खेती का तर देखो के जिकी आपनी माटी है बिक मायने देखो के नया नया जिका जैविक का जिकी खाद है।
1: हाँ।
0: बिका जिका भी तत्व भी कमाई मिल सी वे अपने शरीर के लिए स्वास्थ्य वर्धक है। आपने ई कमाई देखो फसल चक्र है बिक को भी प्रयोग करना पड़ेगा।
1: ठीक बात।
0: लगातार अगर आप एक एक फसल लेने लाग रहे हैं तो बम चाहे रासायनिक खेती हो और चाहे जैविक खेती हो बात दुनिया का मायने नुकसान दे
1: बा माटी ने कमजोर करे।
0: कमजोर करे और फिर बात जल्दी सी बा माटी बा चांका आवे भी को नहीं।
1: हाँ हाँ।
0: लगातार 2 या 3 साल एक अगर आप फसल ले ली तो बा माटी के अगर उतर जा
1: भाई बदलवा फसल बाणी।
0: हाँ। और फिर जे आप प्राकृतिक कीट जे प्रबंधन की बात करना तो भाई देसी जगह नुस्खा है।
1: हाँ हाँ।
0: वहां से ही वहां को आपा नियंत्रण करना क्योंकि एक तो के जल्दी काम हो जे आपने खेत कमाए ना आपने बेरो पड़ गयो भाई आपने कीट लागो आपा सलाह ली के भाई वो रसायन वो छिड़ दो फटाफट आराम है जैसी।
1: हाँ हाँ।
0: तो फटाफट आराम की बजाय आपन देखो जगह भी देसी नुस्खा है बन अपनाना पड़सी तो बार बार जब आप वहां को प्रयोग कर सा तो आपने इसकी खेती है बाबा की आदि हो जैसी। और अगर आप मान लो कि फिर भी जगह कीटनाशक का प्रयोग करांगा तो आप खाद आप जरूर जैविक खेती करने लाग रहे हैं खाद आप चूंकि आपने गोबर की दी है या वर्मी कंपोस्ट दी है लेकिन भी कमाए अगर मान लो कीटनाशक का प्रयोग करने लाग रहे हैं तो जो फिर वो ही अपन माटी में नुकसान होने लाग रही
1: है। इनमें किसना भाई समझने वाली बात इतनी है किसान भाया खातर है देसी असली नकली को जो खेल चाल रही है कि भाई एक तो देसी बीज बावा आपा और एक संकर बावा। अब संकर जो नाज है या बीज है तो बिकी म्याद ते 60 दिन है
0: सही है
1: और देसी जो नाज है तो वो तो बुढ़िया कहता नहीं कि सहज पके सो मीठा होए। जको अनाज जको काम जितने टाइम लेके तैयार होएगो खेत की माटी में भी को कोई मुकाबलो को नहीं है। अब बाजार में देखो घी जो को है वो 150 रुपया किलो मिल रही है, 200 में भी मिल रही है, 300, 400, 500, 600 में भी मिल रही है और सगड़ा गारंटी दे रहे हैं कई एक ही नंबर को गया माली दुकान पर लियो थे उज्जू आओगा रात ने बाज गए इश्यो है बताओ।
0: अरे
1: और देसी घी जे आप लिया जो असली वो गांव में थे जाके लियाओगा तो 1100-1200 रुपये महीना को नहीं मिले और तावड़ो सो तो मिले ही को
0: नहीं।
1: क्यों के पशुआ के जो दूध हुए बे तो दूध आ रहा है जगह बाल्टी में काट के लिया लुगाई बताई भठे बे लीटर लिया खड़िया रही तो बी

0: में परिणाम घाले और भाई दूध है जो तो शहर में जा और वो दूध है जो तो चा पानी में ही देखो कसरे को नहीं इतनी जनता है जी तो बताओ ये तो घी आगे खटो
1: सोचने की बात
0: सगड़ा गारंटी दे रहे हैं असली है अब बताओ 100 रुपया किलो आ रही है वो ही कह असली है दो सारो कह वही

0: का अपने शरीर के लिए जरूरी ही वे जिकी बस संकर नस्ल की जिकी आवे ने गाया बांके दूध में कोने
1: कोने
0: अब बांका जिकी उष्टि ने बा गायगी वे गर्मिया में आप बड़ोड़ा माट कुन ले आएगे पानी आरा बोडा बड़ा उष्टा लटके कहेंगे तो जमीन के थने जगह जाए आथन के दूध नहीं काटे बीती
1: थे 20-30 लीटर एक खड़को दूध
0: हाँ एक टेम को
1: हाँ टेम को
0: हाँ
1: तो मायनो रखे
0: हाँ
1: इतने दूध तो शरीर में वो किया तो बने
0: और
1: फिर वो काटनी है वो भी देखो के मान यार वो दूध आपन मिले भाई बा गुणवत्ता तो देखो बीसी तो
0: कोनी बीम रात दिन को अंतर है किसना भाई और डेरे हम तो आजकल मशीन आ रही में कुंपला सा मांगे ठंड में गाल दे और बटन दबावी तो चई चई उष्टिम दूध है वो सो बाल्टे में जा
1: छोड़ ही कोनी मैं छोड़ ही कोनी
0: पण वो तो धोवण है बीम में धोवण है वो तो धोड़ो पानी को पीवे वो उष्टि माजे बीम बे तत्व मौजूद कोनी जगह देसी पशु कहीं है और जे कोई विश्वास नहीं हो तो बुढ़िया जगह गाँव में रखे मान बुझ लियो वहां को दूध खा के देखो दही जमा के देखो बिलोनो करके देखो वो घी आवे वो खा के देखो जमीन आसमान को अंतर है भाई
1: पने गोपाल भाई देखो शहर के मायने तो मजबूरी भी होगी गांव के मिन खान तो बार भी देखो जगह भी लाजिया देसी पशु एक दो अब घर राख सके लेकिन भाई जट्ठे मजबूरी है बन तो देखो के दूध की जगह दूध लेनो है तो जो हाथ है वो ही लेनो पड़ेगा
0: भाई किसना भाई बात बताने की आए किसाना ने के आपनो विषय चल रही है के भाई खेती जी करा ने वा बिन्या जहर की किया करा तो बी के लिए आपा जैविक कृषि तकनीक विषय अपनावा अब जैविक खेती जिके इका तीन घटक हुए हैं एक तो कंपोस्ट खाद एक वर्मी कंपोस्ट खाद और एक हरी खाद
1: हरी खाद
0: जिका घरापा खाडो खोद के तैयार करा दो तीन मना भी कूटड़े चो कितरिया गड़ा के और फिर भी खाद ने आपा खेत में गेर के बांध करवावा पहलो तरीको दूसरो गोबर कूटलो और है वो भेड़ो करके खावरिया ढक्के भी केचवा छोड़ दिया केचवा खा के वो देखो चाय पत्ती सी वाह खाद तैयार करे वाह खाद होगी तीसरी ज्यादा बरसात होना फल फूल आवे को नहीं फसल कर अगली फसल को टाइम आ जा तो किसान के एक रहे के बाद की खड़ी फसल है हरी बिन ट्रैक्टर बांध करवा के खेत का माँ मिला दे तो बा कटके के बा फसल है बा पूरी खेत का माँ मिलगी बाज की खाद है बा आगे की आप फसल बावा बिके बहुत काम आवे बा होगी हरी खाद
1: हरी खाद
0: तो ए तीन जगह तरीका है कंपोस्ट खाद वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद आके तीनवा के सहयोग सीधी भाषा में जो परिभाषा के हिसाब में देखा तो छोटी छोटी परिभाषा ही की आए के रसायन रहित खेती जिकी हुए बिन जैविक खेती का
1: जैविक खेती
0: चाहे बीज उपचार की बात हुए चाहे मर्दा में कोई कीड़ो कांटो लागो बी की बात हुए चाहे बीज ने निकालने की बात हुए चाहे बीज ने उपचारित करने की बात हुए कट्ठे भी जहर जो है वो अपने काम में कौन लेनो
1: भाई जहाँ कई भी निनाण के मायने परेशानी आ जाए बुड़ो निनाण हो जाए तो एक दो मिनट जहाँ काम धाम करनी हुए बैंक वो ताबो बनी आवे तो भेर भाई ने भी ने सलाह ली गोपाल भाई मार तो नाज नू ज्यादा तो घास हो रहे भी वो किए करा तो पुराना जगह बे तांतियाल बे कह रहे एक मायन तो भया तेरे मजूरी बोली लाग सी के
0: कोटलो छाती चढ़ी हो गए
1: मजूरिया ले जैसी तो तेने तो एक मायने 15-20 दिन लाग जैसी तो सीधो रास्तो मैं बताऊ बोलो इंग मैंने तुम छिड़क दे गए
0: डोलिया लिया
1: डोलिया लिया अब डोलिया छिड़क तो वो देसी लेकिन वो जो नाज पैदा हो सी नाज ने खानिया कूड़ने आपा ही तो
0: आई तो बात आप किसाना ने कहनी चाहवा के खरपतवार हटाने की बात हुए चाहे कीड़ो कांटो जो फसल में लागो बिने रोकने की बात हुए चाहे बीज ने उपचारित करने की बात हुए पहलड़ा जगह उपचारित करता तो बिका जो देसी इलाज है जिकी आपने आसे पासे जिकी जड़ी बूटी है जिकी वनौषधि ही बांसू तैयार करके भी खेती को काम है जिको करो ताकि खेत की माटी मृदा जिकी है बा निरोगी रहे बा राजी रहे पर्यावरण जिको है वो शुद्ध रहे स्वच्छ रहे उत्पादन जिको हुए चाहे सब्जी को हुए चाहे फलां को हुए चाहे अनाज को हुए तो वो देखो कह रसायन रही तो सी शुद्ध हो सी भी नाज ने सब्जी ने फला नापा खसिया तो आपनो डील जो को है अपनी काया बा निरोगी रसी है
1: देखो एक बात और भी है

0: तीज के मेरे घने बा इतनी करनी चाहिए
1: हाँ।
0: जितनी वो आराम से बिकी परवरिश कर सके बिकी मान लो के निनान कर सके और बिन कटाई बढ़ाई है वो आराम से कर सके
1: हाँ।
0: अब कई बार मैं घर में काम करने आ जाए मान लो 2 या 3 मिनट हुए 3 मिनट हुए और आप जो मान लो 50-60 या 100 बीघा खेती कर ली तो वे में देखो दिक्कत आवे बारे काम करने देखो इतना मिनक रह से अलग अलग कोई खटाई जा रहे है कोई खटाई जा रहे है खेती बाड़ी का जगह काम करने वाला मिनक बहुत कम हो गया तो चाहे आप खेती थोड़ी करो लेकिन आपने नियंत्रण में होनी चाहिए
1: भाई
0: इतनी को काम आप आराम से को निनान कर सका और जे लावणी की बात आवे तो भी आप आराम से की लावणी कर सका।
1: तो गांव में आज की थी बात बताई ने इन बोले घरू खेती के जितनी वाया समय ने
0: बीती कर
1: बीती करो खेत चाहे 100 बीघा और चाहे 500 बीघा हो जितनी समय बोझो डाली सिनिया काटनो लेके नाच गड़ाई के पशु घर तक लिया
0: हाँ।
1: इतने मजूरी होगी इन्हें मिन्हे भाजने की जरूरत कोनी तापड़िया होने की जरूरत कोनी काम खुद मिलके लुगाई टाबर जो भी है पर खेत को काम सो करो वाह होगी घरू खेत है। और ई आप बुआलिया और फिर देखो के न टेम पर निनाण हुए न कोई कटाई बढ़ाई हुए और हुए तो बीम के दुख पाई को काम हो जाए तो ई खातर आपनो तो ये कहना है कि जितनी समय बीती खेती करो पण जहर जो है ने वो कम कम इस्तेमाल करो ताकि आगे आने और जो टेम है वो तो कम से कम सही तरीके कट जा नहीं तो चारों में हरेक चीज में जहर ही जहर हो जाएगो और बीम उत्पादन होने लग जाएगो तो बताओ के फिर अपनी जी की गाडू लिए बा क्या चलेगी
0: क्या चलेगी परेशानी तो होनी है फिर
1: तो अपना किसान भाई बातां देखो के समझ गया आप के कहना चाहवा अब बांगी जी की बात है बा आप पूरी करा और माने एक मिट्टी सी लोक रचना और सुना दिया
0: सुनाओ सर।

0: हाँ, तो किसान भाया अभी आपा सुजान सिंह खींची और साथियों की आवाज रमाए आ लोक रचना सुनी। और किसना भाई जे खेती बाड़ी की बात करा सागे जे दिने दापे की बात नहीं करा तो फिर आपनी काया रूपी जी की गाडू लिए
1: चलेगा नहीं।
0: बाकी यहाँ चल रहे। किसान के घर में देखो कह दिनोड़ी होनी बहुत जरूरी है, चाहे गाय हुए चाहे भैंस हुए। और जग के घर का माँ देखो कह दुधारू पशु होसी तो बन राजी राखना बन स्वस्थ राखना वो देखो के आपनों
1: जरूरी है।
0: कर्तव्य बने। क्यों कहे तो मूक प्राणी बोल के तो कहीं को नहीं
1: कहेगा नहीं।
0: है, पर अब की है के आप वर्षा की ऋतु होवे इक माँ की है के ए झड़ा राड़ंगा रहे टपूक ले जो कई कई दिन है जो डटाई को नहीं
1: डटेगा
0: है।
1: नहीं।
0: डांगरे जगह ठाणा का माँ खड़िया खड़िया देख लियो तो बांगा पग सूज जाई, खुर पका है मुंह पका है, कोई कहे बुखार हो गयो कोई कहे क्यों हो गयो है।
1: रोग तो देखो के बिरख्या शुरू होते हैं जगह संक्रामक रोग है भाई, देखो पशुओं के शुरू हो जाए।
0: हाँ
1: और अगर किसान मिनक सावचेत नहीं रहे तो देखो के बीको खामियाजा तो भी नहीं भुगतना पड़े।
0: हाँ हाँ
1: दुधारू जगह पशु ही बांकी जी आप बात करा कि भाई बांको आपा देखभाल की बात करा तो पहली बात तो आई है कि बिरख्या की अब देखो शुरुआत हो रही। तो बिरख्या की शुरुआत से पहली बांको जो ठाण की जगह व्यवस्था है
0: हाँ हाँ
1: आपा चोखी द्रियासु जचावा,
0: सही है।
1: क्योंकि पशु लगातार देखो के मायने अगर बंद है तो बटे गोबर भी है, बटे मान लो पशु को पेशाब भी है,
0: हाँ हाँ
1: तो रात पूरी रात जे बंद रहे फिर जे दूसरे दिन जे झड़ लाग गयो तो जे दो ठाण नहीं है तो बिने दिन का मायने बटे ही बांधना पड़ से।
0: ठीक बात है।
1: तो बी स्थिति का मायने एक जगह पशु अगर बंद रहे तो ठाण जो को है वो साफ सुथरो रहना बहुत मुश्किल काम हो जाए। बी के लिए आपने देखो के जिकी माटी है सूखी
0: हाँ
1: वह
0: हाँ
1: दो तीन ट्रोली आपने बी की व्यवस्था घना राखनी चाहिए। एक ही जगह जो मान लो कोई आपनो झोंपड़ो है बी के मायने आपा घेर दिया ताकि बा गीली नहीं हो और जे झड़की या की स्थिति हो जा तो बी
0: हाँ
1: टाइम आपा भी माटी ने मायन घेर सका अंदर की जिकी गीली माटी है बा बाहर नहीं घेर सका। तो जका संक्रामक रोग है
0: हाँ हाँ
1: वासु देखो निजात पाने को वो एक ही तरीका।
0: भाई भी के अलावा देखो के जब ऋतु परिवर्तन हुआ है तो बी टाइम देखो के सरकार जी के बाबी अभियान छेड़े और पशुओं देखो के टीकाकरण जो है वो करवावे।
1: हाँ
0: पशुआंगा जगह डॉक्टर हैं भाई घर घर जाके जगह पशुधने बांगे देखो के टीका लगावे। फिर भी जे कोई भूल चो को पशु इन्हें मिने गेड़ हुए खेत गेड़ हुए कोई जे बच जावे तो डॉक्टर साहब संपर्क करके आपन देखो के जगह संक्रामक रोग है बस यू बचाव का जगह टीका लगाया जावे वे अपने पशुओं का जरूर लगाना चाहिए ताकि आगे आने वाले टाइम का अपना जो दुधारू पशु है वो निरोग हो रहे बीमार नहीं पड़े और अपने दोनों टाइम दूध जुको है वो बाल्टी भर भर के देवो करे ताकि अपली गाडू लिए भाभी चो कितरिया चाल बोक रहे। क्योंकि खेती बाड़ी का काम जो कहीं वह मेहनत का ही परिश्रम का ही और जे आपनों खान पान बढ़िया नहीं रहेगो अपा घी नहीं खावांगा कड्डी नहीं खावांगा दूध दही नहीं खावांगा तो अपनी काया बा कमजोर हो जाएगी। तो ई खातर पशुधन और किसान एक दूसरे का पूरक है,
1: भाई
0: आपा भी निरोग रहा अपनो पशुधन भी निरोग रहे ताकि दोनों को जो काम है वो चौकी त्रिया चाल बोक रहे।
1: भाई पशु ने देखो के संतुलित आहार देखो जरूरी है। कई
0: हाँ
1: बार आप लगातार एक एक चीज आप पशु ने दे बोगरा आपा देखा कि भाई आप पशु ने देखो के घणो ही दबाव देन लाग रहा, लेकिन खाने दाने के मायने बीक का देखो प्रोटीन की मात्रा भी होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी होनी चाहिए, खनिज की लवण की मात्रा भी होनी चाहिए, वसा की मात्रा भी होनी चाहिए।
0: हाँ हाँ
1: आ सगला की संतुलित मात्रा अगर होसी तो पशु देखो निरोग हो रहे।
0: सही बात।
1: पशुओं के बहुत सारी बार बीमारी आने को देखो एक ही कारण हुआ है कि आपा लगातार एक एक चीज देने लाग रहे हैं जबकि शरीर के मायने पशु के कमी चालन लाग रही है
0: हाँ
1: बा चीज की भी मायने पूर्ति को नहीं होने लाग रही।
0: सही बात है।
1: तो आपा के जका पशुओं का डॉक्टरी
0: हाँ
1: बासु वक्त

0: हाँ, तो अभी देखो के पप्पू मस्ताना की आवाज रमा या लो कृष्ण आपने किसान भाई ने सुनाई, और खेती और गृहस्थी कार्यक्रम है वो अब 28 तक है। ओजू मिलने तक गोपाल भाई ने
1: और किसने भाई ने दो सीख
0: करा
1: का
0: राम राम।
1: राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती और गृहस्थी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी चुरू से किया गया। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता।

0: फसाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा जी,

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण

0: अभियान के।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: जिप्सनी लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज में मस्ताना फिल्म का गीत, आनंद बख्शी का गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
3: तैयारी दैया।

आकाशवाणी चूरू से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाज, गुलजार के गीत, शब्द मदन मोहन, फिल्म मौसम।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: किशोर कुमार की आवाज में आइए सुनते हैं।

कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति लता मंगेशकर की आवाज सौदागर फिल्म से, गीत और संगीत रविंद्र जैन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चुरू से प्रसारण कार्यक्रम फिल्म संगीत का गुलदस्ता।

0: लता मंगेशकर के गए सौदागर फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से पहले समाचार संध्या और रात 9 बजे News@9।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्रे ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के KGMC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
2: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, SDRF और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य के DGP और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
3: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह DGP मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना की कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
4: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
2: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
5: निभाया देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर बैंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ बैंबू जी ने क्या काम किया है,

0: शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था, करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे, चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे देखने के लिए भाई नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए, मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
1: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
2: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
3: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादीप, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनुपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
4: वित्त मंत्री डॉक्टर ने आज 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काश्मीर नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव

0: सचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में CISF के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज CISF के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोले की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रस लाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर 94 रुपए 68 पैसे पर

0: बंद हुआ।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आकाशवाणी चूरू से इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति अनुराधा पौडवाल की आवाज में है।

0: अनुराधा पौडवाल, शब्बीर कुमार और साथियों की गई इससे लोक रचना के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। रात्रि के 9:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक आकाशवाणी दिल्ली से।
1: प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। रोजगार केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, सम्मान और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है। जब युवाओं को अवसर मिलते हैं तो न केवल उनका भविष्य संवरता है बल्कि देश की प्रगति को भी नई गति मिलती है। इसी सोच के साथ सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और युवाओं को औपचारिक रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से पिछले वर्ष प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की। पिछले सप्ताह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। ये योजना विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। क्या है ये योजना, इससे युवाओं, कर्मचारियों और नियोक्ताओं को क्या लाभ होगा, इन्हीं सब महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में। हमारा विषय है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर। इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा और क्षेत्रीय आयुक्त प्रणित जोशी। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं। आप हमारे स्टूडियो नंबर 011 जो दिल्ली का कोड है उसके बाद 2331-0481 या 2371-7117 या 2371-7106 और 2331-4444 पर फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। इस पर आप प्रश्न भेज सकते हैं और ट्विटर हैंडल है @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए आपके जो भी सवाल हैं और शंकाएं हैं पूछ सकते हैं। तो आगाज करते हैं कार्यक्रम का। सबसे पहले पूर्णेंदु जी, आपसे जानना चाहूंगी कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक ऐसी योजना है जो कि यहाँ हमारे फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, वर्कफोर्स को फॉर्मलाइज करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट को इनकरेज करने के लिए एक सरकार ने एक इंसेंटिव स्कीम जारी की है। ये इंसेंटिव स्कीम इनफैक्ट 1 जुलाई 2025 से शुरू होकर अभी अगले 2 साल के लिए रहेगी और इस इंसेंटिव स्कीम में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दोनों को इंसेंटिव दे रही है भारत सरकार, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जो भी जनरेट हो रहा है उसको एक बढ़ावा मिले और जो एम्प्लॉयज किसी भी एम्प्लॉयर के साथ जुड़ रहे हैं वो वहाँ पे कुछ 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट बनी रहे।
0: जी प्रणित जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ईपीएफओ बहुत मेजर रोल निभा रहा है, क्या है, अपने श्रोताओं को इस बारे में बताएं।
2: सो ये स्कीम जो है भारत सरकार ने इसकी जिम्मेदारी ईपीएफओ को सौंपा है। तो ईपीएफओ इंडिया एंड वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे यहाँ जो फॉर्मल एम्प्लॉयज़ है लगभग 8 करोड़ फॉर्मल एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ कवर्ड है। तो ये स्कीम में जो भी बेनिफिट्स हैं वो

0: ईपीएफओ के थ्रू हम देने की प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें कोई द बेस्ट पार्ट इज इसमें कोई एडिशनल कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट नहीं है आइदर फॉर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स। डायरेक्टली ईपीएफओ एनरोलमेंट से ही सारे बेनिफिट्स हम लोग ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेट करके इनको दी जाएगी।
1: ये तो एक तरह से मध्यस्थता का काम कर रहा है

0: हाँ रमाशंकर जी, ये स्कीम 1 अगस्त 2025 से शुरू हुआ है, तो अभी तक लगभग 70 लाख युवा फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय जो पहली बार फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आए हैं, लगभग 70 लाख से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े हैं। इसमें लगभग 13.29 लाख तक का बेनिफिट अभी हमने उनको, इन्होंने 6 महीने कंप्लीट कर चुके हैं, तो इनका पहला किस्त का जो बेनिफिट है हमने उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए हैं।
1: जी पूर्णेंदु जी, आपने इंसेंटिव्स की बात की थी, तो इंसेंटिव्स जो, अगर मैं सबसे पहले कर्मचारी जो पहली बार जो नौकरी पाने वाले हैं, तो उनको क्या मिलता है, किस तरह से मिलता है, ये बताएं।
2: कर्मचारियों के लिए जो यहाँ पे बेनिफिट मिलती है इस स्कीम में, वो है जो पहले 6 महीने तक अगर कोई भी कर्मचारी किसी भी संस्थान को ज्वाइन करने के बाद वहाँ रह जाता है, तो उनका जो एवरेज वेज होता है उसका आधा सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 15,000 रुपये, तो ये पूरा बेनिफिट हो गया। पहले 6 महीने में उनको 7,500 रुपये तक मिलते हैं, और अगले 6 महीने तक अगर वो एक हमारे यहाँ पे वो लिटरेसी कोर्स उनको करना पड़ता है, 6 महीने के बाद अगर उन्होंने वो कंप्लीट कर लिया और लगातार वहीं एम्प्लॉयड रह गए, तो उनको 12 महीने के बाद 15,000 रुपये तक की राशि दी जाती है।
1: तो 6 महीने के बाद और फिर
2: छह
1: महीने
2: महीने के दो
1: बाद।
2: दो बार में दिया
1: जी
2: जाता
1: जी
2: है।
1: आगे भी चर्चा करते हैं, पहले अपने श्रोता का सवाल पूछ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला से हैं राकेश जी।
3: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
3: जी, तो मेरा एक प्रश्न ये है कि जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है, तो इसमें हमें क्या क्या प्रावधान रखना पड़ता है, और इसके लिए हमें फॉर्म किस तरह से भरना पड़ता है, ये मेरा प्रश्न है।
2: राकेश जी, आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना पड़ता, आपको केवल ईपीएफओ के साथ जुड़ना पड़ता है। ईपीएफओ के साथ जुड़ने के लिए जो ईपीएफओ में कवरेज के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो आपकी कंपनी जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, जो भी संस्थान हो जहाँ आप काम कर रहे हैं, वो अगर ईपीएफ में कवर्ड हैं, और जो बिल्कुल नए लोग अगर आ रहे हैं उस कंपनी में जो 1 अगस्त 2025 के पहले कहीं भी हमारे ईपीएफओ से जुड़े हुए नहीं थे, तो वैसे लोगों के लिए एक इंसेंटिव है, और इसलिए इसमें कोई अलग से आपको कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ईपीएफ में आप किसी भी एम्प्लॉय का कंप्लायंस हो रहा है, तो वैसे लोगों को ऑटोमेटिकली इसका बेनिफिट मिल जाता है।
1: जी अगर हम नियोक्ता की बात करें, तो उनको इस योजना से क्या लाभ मिलेगा, और जो इसमें उनको भाग लेने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा रहा है, और खासकर जैसे अगर कोई कंपनी है, अगर वो हाल फिलहाल में ज्वाइन किया, उसने ईपीएफओ में रजिस्टर किया है, या स्टार्टअप है नया, तो उन सब के लिए क्या प्रावधान है?
2: कंपनी के लिए दो तीन चीजें आवश्यक हैं।
1: जी
2: पहला, अगर वो ईपीएफओ में कवर्ड नहीं है, तो पहला तो उनका कवरेज जरूरत होगी यहाँ
1: जी।
2: ईपीएफओ में। साथ ही उनके जितने भी एम्प्लॉई हैं, जो नए एम्प्लॉई आके ज्वाइन कर रहे हैं, उनके बेसिस पे, और जो पुराने एम्प्लॉई जो भी हैं, जो कहीं और से आके उनके यहाँ जुड़ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं फर्स्ट टाइमर एंड रीज्वाइनिंग, तो दोनों के नंबर को जोड़ा जाता है। और जो इंसेंटिव है, अगर 10,000 रुपये तक की सैलरी है एम्प्लॉई की, तो उसमें 1,000 रुपये, अगर 20,000 रुपये तक की सैलरी है 10 से 20,000, तो 2,000 रुपये, और अगर 20,000 से लेकर और 1,00,000 रुपये तक की अगर सैलरी है, तो 3,000 रुपये का इंसेंटिव एम्प्लॉयर को मिलता है, और ये एम्प्लॉयर को ये प्रत्येक महीने जैसे मिलता जाएगा। अभी पहले 6 महीने किसी का सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट हुआ, फिर अगले महीने भी किसी न किसी का 6 महीने होगा, तो वैसे उनको बेनिफिट मिलता
1: ये
2: रहेगा
1: भी डीबीटी के थ्रू ही।
2: ये सारे बेनिफिट एम्प्लॉयर को डीबीटी के थ्रू मिलेगा। जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो केवल एक ही होती है, एक ईपीएफ में कवर्ड हो, दूसरा उनका जो पैन डिटेल्स है वो हम लेते हैं उनके, क्योंकि हम पैन से जो लिंक्ड उनके बैंक अकाउंट होते हैं उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होती है, डीबीटी एम्प्लॉयज के लिए होती है
1: जी। हरिद्वार से जुड़े हैं रवि जी।
4: हाँ जी नमस्कार मैम जी।
1: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
4: हाँ जी थैंक यू, और महानुभव विशेषज्ञ को भी नमस्कार।
2: नमस्कार
4: जी सर, मैं जानना चाहता हूँ सर, ये प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना है सर, इसके लिए जो ये एक युवा है वो मतलब क्या क्वालिफिकेशन होकर मतलब इस योजना का हिस्सा बन सकता है, मतलब इस योजना से लाभ उठा सकते हैं, इसमें एक युवा की क्या मतलब क्वालिफिकेशन होती, क्या
1: पात्रता क्या होनी चाहिए, चाहिए।
0: रवि जी, इसमें जैसे कि पूर्णेंदु जी भी पहले बताया कि इसमें कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, आपको बस ईपीएफओ के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो अगर पहली बार आपके संस्था में आप ज्वाइन कर रहे हैं, पहली नौकरी में ज्वाइन कर रहे हैं, कोई युवा अगर कोई ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनको फेशियल ऑथेंटिकेशन के माध्यम से उमंग ऐप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस ऐप में उनको एक नंबर दिया जाएगा, उसको हम लोग यूएएन कहते हैं,

0: और उसके बाद 6 महीने अगर उसी संस्था के साथ आप जुड़े हैं और आपका जो जो ग्रॉस वेजेस है आपके, आपका जो सैलरी है वो 1 लाख से कम होना चाहिए, उनके लिए एक स्कीम है। तो 6 महीने के बाद आपको पहला किस्त 7,500 तक दिया जाएगा और उसके बाद एडिशनल 6 मंथ्स के बाद आपको दूसरा किस्त दिया जाएगा।
1: जब एम्प्लॉयर्स की बात आगे कंटिन्यू रखते हैं, जैसे मैंने पूछा कोई नया अगर स्टार्टअप आया है और 50 से कम अगर उसके एम्प्लॉयज़ हैं या 50 से ज़्यादा हैं, तो उन सब के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं अलग अलग कि मिनिमम आपके पास अगर आपको इतने रखने होंगे, ईपीएफओ में रजिस्टर होना होगा, तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं।
2: जी, एक स्कीम की सबसे प्राइमरी कंडीशंस में से एक ये है कि आपने एडिशनल एम्प्लॉयमेंट उस संस्थान ने कितना जनरेट किया है। तो उसने अगर किसी के पास 50 से कम एम्प्लॉई हैं, अगर उन्होंने मिनिमम 2 भी एम्प्लॉई को जनरेट कर दिया, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अगर नया आ गया, और अगर 50 से ज़्यादा उस संस्थान के सदस्य हैं, तो वैसे केसेस में 5 उनको कम से कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा, तभी वो इसके लिए पात्रता के भागी होंगे। लेकिन साथ में एक और चीज़ बता दूँ आपको कि जहाँ पे एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर का जो टोटल हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारे ECR पे, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न होता है। तो न केवल ये कितना उसका थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा, 2 आदमी होंगे या 5 आदमी होंगे, बल्कि इन लोगों के लिए कंप्लायंस भी रिक्वायर्ड होगा 6 महीने के लिए। तो लगातार अगर कंप्लायंस आएगी 6 महीने, तभी EPFO को पता चलेगा कि ये एम्प्लॉय इनके साथ जुड़े हुए थे, उनका वेज कितना था और कितने रुपए के इंसेंटिव के हकदार हैं। जो थ्रेशोल्ड का एक और दूसरा भी कंपोनेंट है हमारा कि जो नेट एम्प्लॉयमेंट है कितना जनरेट हुआ, उसका हम लोगों ने एक रखा हुआ है जो एक पर्टिकुलर पीरियड हमने माना हुआ है, राइट। एक पीरियड है कि अगर अगस्त के पहले, अगस्त 2025 के पहले अगर कोई भी इस संस्थान हमारे साथ जुड़ी हुई थी, तो उसको हम तभी मानते हैं, उसके पिछले 12 महीने का एवरेज देखते हैं कि कितने लोग थे, और वहां से फिर उसका वो एवरेज हो गया बेसलाइन जिसे हम कहते हैं। तो बेसलाइन से कितना बढ़ रहा है, अगर अगस्त 2025 के बाद कोई भी संस्थान है तो उसका बेसलाइन होगा हमारा वो 20 रहेगा मिनिमम, वहां पे एवरेज हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, तो उस बेसलाइन के बाद फिर हम उसको आगे काउंट करते हैं।
1: छोटी छोटी चीजें देखी जाएंगी और तभी इंसेंटिव के आप पात्र बनेंगे। बिहार से जुड़े हैं हिमांशु जी। हिमांशु जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? आपसे अनुरोध है कि अपने जो आपका रेडियो है सेट है उसकी आवाज कम कर दे।
3: मैडम कर दिया मैंने।
1: जी जी,
3: कर दिया कर दिया।
1: सवाल
3: मैडम, मेरा ये सवाल था कि क्या मैं अभी भी एम्प्लॉयमेंट में हूँ NIC मुजफ्फरपुर में, ठीक है
1: जी।
3: लेकिन थर्ड पार्टी जो मुझे पेमेंट कर रही है, तो ये जो एम्प्लॉयमेंट के, ये मेरा जो है EPF नहीं कट रहा है मैम, तो क्या हम लोग, लेकिन पहले से जो कंपनी हमारी थी उनके द्वारा मेरा जो EPF कटा हुआ है, तो क्या हम लोग इसमें इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है?
1: जी पुनेंद्र जी,
2: हाँ, इसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको बिल्कुल नए एम्प्लॉई होना पड़ेगा। आप चूंकि पहले से EPF से जुड़े हुए हैं, तो जो एम्प्लॉयज़ को जो बेनिफिट मिलती है उसमें आप हकदार नहीं होते हैं। लेकिन जो एम्प्लॉयर है, अगर आप कहीं भी और दूसरी जगह पे ज्वाइन करते हैं, तो उसको एज रीज्वाइनी हम लोग आपके जो भी यहाँ पे ज्वाइन करने के हिसाब से एम्प्लॉयर को इंसेंटिव मिलेगा।
1: महाराष्ट्र के ठाणे से जुड़े हैं गुरुनाथ जी। हेलो,
4: हाँ जी मैम, नमस्कार।
1: नमस्कार,
4: मैं गुरुनाथ बोल रहा हूँ ठाणे महाराष्ट्र।
1: जी जी,
4: हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन है, जैसे EPFO में जो नई कंपनियाँ होती है, जैसे जॉइंट होते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज का पैसा तो कटता है, तो कभी कभी ये देखा गया है कि सही तरीके से पैसा वहाँ पे जमा नहीं हो पाया है, फ्रॉड, कभी कभी फ्रॉड भी देखा जाता है, गड़बड़ी देखी जाती है उसमें, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। और सही, मतलब जो पैसा सैलरी से कट जाता है एम्प्लॉयज का जिस कंपनी से, तो वो जमा हुआ है कि नहीं जो ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये कैसे चेक करें? थैंक यू
1: जी। प्रणय जी,
0: गुरुनाथ जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो एम्प्लॉयज से, जो एम्प्लॉयर पैसे काटता है PF जमा करने के लिए, अगर वो एम्प्लॉयर PF जमा नहीं करता है, तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा एंड उस एम्प्लॉयर को एक क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर उनको जेल भी भेजा जा सकता है।

0: तो अभी इसमें ये सवाल है कि इसमें आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो आपका जो पासबुक है, आप अपने पासबुक में आप चेक कर सकते हैं हर महीने की जो आपका अमाउंट कट रहा है वो सही से जमा हो रहा है नहीं है। एंड उसमें पासबुक में आपको ये भी दिखेगा कि आपका इंटरेस्ट कितना जमा हुआ है और टोटल कितना अमाउंट है। तो आपके लॉगिन या फिर आप उमंग ऐप से भी आपका पासबुक आप देख सकते हैं इसमें।
1: जी, बिहार के सासाराम से जुड़े हैं अमित उपाध्याय जी।
2: जी नमस्कार। मेरा ये सवाल था, सभी विशेषज्ञों को मेरा नमस्कार, कि जैसे कि हम लोग जो अभी 2025 से जो अभी लागू हुआ है 1 अगस्त, उससे पहले जितने भी जैसे कि अलग अलग कंपनी में जो लोग जॉब करते हैं या बीच में कहीं छूट जाता है, तो कैसे वो मालूम चलेगा कि उनका पीएफ जो करता है या पीएफ का जो इतना संभाग उनमें रहता है क्रेडिट, तो कैसे मालूम चलेगा कि वो कट रहा है कहाँ कैसे?
3: अमित जी, अमित जी नमस्कार। आपको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया गया होगा, आपने जहाँ कहीं भी काम किया होगा, तो अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के थ्रू आप एम्प्लॉई पोर्टल पे जाके ईपीएफओ के आप लॉगिन कर लें। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो जो भी आपका आधार लिंक्ड फ़ोन नंबर है उसके थ्रू ओटीपी से आप रिसेट कर सकते हैं। और जितने जगह पर भी आपने काम किया होगा जो यूएएन से लिंक्ड होगा, वहाँ पर आपको सारे डिटेल्स दिख जाएंगे आपके अपने पोर्टल पर ही। आपके पासबुक में भी वो दिखने चाहिए और जहाँ जहाँ से भी आपने काम किया है, अगर आपने ट्रांसफ़र नहीं करवाया है तो आप उसको एक जगह पे ट्रांसफ़र करवा लें ताकि आपके लिए बाद में सुविधा होगी।
1: जी हाँ, जैसे अब कई लोगों की शंकाएं हैं, कई जो होते हैं जो कर्मचारी हैं उनको ईपीएफ खाते, यूएएन नंबर जो अन्य सुविधाएं उनके बारे में जानकारी नहीं होती, तो उस लिहाज से आप क्या बताना चाहेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखना है जब आप कोई ज्वाइन कर रहे हैं, आपको क्या कदम उठाने हैं?
3: अभी
0: जब भी कोई अभी जो हमने अगस्त 2025 से एक प्रावधान किया है, पहले ये होता था कि जहां पे जिस संस्था में कोई ज्वाइन करते हैं कोई एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयर खुद वो उनका यूएएन जनरेट करते थे। तो अभी हमने वो हक सिटीजन को ही दिया है, एम्प्लॉय को ही दिया है, जो खुद अपने उमंग ऐप से जो आधार ऑथेंटिकेशन करके वो खुद अपना यूएएन जनरेट करेंगे और फिर वो एम्प्लॉयर को देंगे। तो उससे जो उसको बेसिक तो उनके हाथ में है कि उनका ईपीएफओ का अकाउंट बना है या नहीं है, अभी एम्प्लॉयर के हाथ में नहीं है। तो उसके बाद उनको ये देखना है कि उनका हर महीने पासबुक उनको चेक करना है कि हमेशा वो हर महीने उनका एवरी मंथ डिपॉजिट हो रहा है नहीं हो रहा है।
1: जी, ओडिशा से जुड़े हैं देशदीप दास जी। दास जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो दास जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है?
4: जी नमस्ते।
1: नमस्ते
4: शर्मा जी और अरोरा जी, नमस्ते।
1: जी
3: नमस्ते
4: जी। पर मेरा सवाल है, क्या नियोक्ता को अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा और योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक है?
3: नियोक्ता को अलग से मैं नहीं कहूंगा कि रजिस्ट्रेशन करना है, उनके पोर्टल पे जाकर और आपको केवल नियोक्ता को अपना पैन देना होता है और जो एक बैंक अकाउंट उनका देना होता है जो पैन लिंक्ड होता है, उसी को हम इनफैक्ट इस स्कीम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन मान सकते हैं। सेपरेट रजिस्ट्रेशन बस उसी तरह का होता है। उसके बाद नियोक्ता का जो भी बेनिफिट होता है, बिकॉज पैन के साथ हम इसको लिंक करते हैं, तो अगर मान लीजिए एक ही पैन के साथ बहुत सारी संस्थाएँ जुड़ी हुई हैं, तो हम उन सबों को पैन एग्रीगेट करके जो बेनिफिट देते हैं वो पैन लिंक्ड बैंक अकाउंट में देते हैं। तो बेसिकली आपको पैन टैन का डिटेल्स होगा, नियोक्ता का जीएसटी नंबर आप दे सकते हैं वहाँ पे, और साथ में बैंक अकाउंट नंबर जो कि पैन के साथ लिंक्ड हो वो एम्प्लॉयर पोर्टल पे ही देना होता है। उसके लिए आपको और कहीं अलग रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती है।
1: और इन्होंने दस्तावेज के बारे में पूछा था,
3: और तो कोई दस्तावेज नहीं चाहिए,
1: जरूरत नहीं है, बार बार बता रहे हैं आपको इस कार्यक्रम के जरिए। ये जो योजना है, अगर आप फॉर्मल नौकरी के हिसाब से, रोजगार सृजन के हिसाब से बात करें, तो बहुत बड़ी 99,000 करोड़ रुपए से इसका आउटले है। मेजर अगर बात करें जो असंगठित क्षेत्र से जो आते हैं लोग, उनको संगठित क्षेत्र में लेकर जाना, तो उनके लिए योजना किस तरह से आप लाभकारी होते देखते हैं?
3: इसमें 2-3 तरह से हम इसको देख सकते हैं। सबसे पहला, जो एम्प्लॉयज पहली बात की 6 महीने तक वो रहेंगे एक जगह, तभी उनको बेनिफिट मिलेगा, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि वहाँ रुकें। एम्प्लॉयर के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि कोशिश करें कि उनके एम्प्लॉयी वहीं पर रह जाएं। एम्प्लॉयी को एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा।

0: आपको पता होगा कि जैसे नए एम्प्लॉई अगर कोई भी ज्वाइन करते हैं तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी चीज है। तो यहाँ एक ऐसी स्कीम है जहाँ पे एम्प्लॉयर को भी फायदा हो रहा है, एम्प्लॉई को भी फायदा हो रहा है। जनरली अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जनरली एक कॉन्सेप्ट था इंडिया में कि अगर एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉई के अगेंस्ट है, एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉयर के अगेंस्ट है। यहाँ इन दोनों को साथ में लेके चलने की बात हो रही है।
1: और ये होता था कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, भाई आप हमें नौकरी पे रखोगे तभी एक्सपीरियंस मिलेगा,
0: और जब तक नौकरी में आएंगे नहीं तब तक एक्सपीरियंस होगा नहीं। तो एक बहुत अच्छी स्कीम है जहां उनको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए भी सरकार प्रोत्साहित कर रही है और एम्प्लॉयर को भी प्रोत्साहित कर रही है कि आप ऐसे लोगों को रखेंगे और सस्टेन करें वहाँ 6 महीने 1 साल के लिए, तो आपको भी इंसेंटिव मिलेगा।
1: जी, दिल्ली से जुड़े हैं धर्मवीर जी।
2: नमस्कार मैडम, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर नमस्कार।
0: नमस्कार
2: सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो कुछ जो एम्प्लॉयर होते हैं जो उनकी एज लिमिट निकल जाती है, तो क्या सरकार को चाहिए नहीं कि उनकी एज लिमिट को थोड़ा बढ़ा के रखना चाहिए, जिसको जरूरत है वो ही इसमें भी आ सके, और इसमें जो एम्प्लॉयर है वो कितनी इसकी सैलरी इसको डिसाइड कर सकता है।
3: तो इसमें दो पार्ट आपने पूछा है, एक तो एज का पूछा है, तो स्कीम तो जनरली युवा एम्प्लॉयज को प्रोत्साहन मिलता है, बट ऐसा कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। तो अगर कोई 40 साल में भी पहली बार संगठित क्षेत्र में नौकरी पा रहा है तो वो इस बेनिफिट के लिए एलिजिबिलिटी है। एंड दूसरा
1: सैलरी का पूछा
3: है। सैलरी, हाँ, तो इसमें मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये था कि जो हाई अर्निंग हाई इनकम ग्रुप है तो उनको ये बेनिफिट ना दिया जाए, तो 1 लाख से जो नीचे है उनका जिसका ग्रॉस सैलरी है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है।
1: अक्सर हम देखते हैं कि जैसे लोगों को सामाजिक सुरक्षा के बारे में जानकारी नहीं होती, तो इस योजना के जरिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज को किस तरह मजबूत किया जा रहा है?
3: तो इसमें जो सामाजिक सुरक्षा EPFO हम लोग 3 स्कीम चलाते हैं, तो जो भी ये PMVBRY के तहत हमसे जुड़ते हैं तो उनको ये तीनों स्कीम के बेनिफिट मिलते हैं। तो इनमें से प्रोविडेंट फंड है जो कि आपके लाइफ टाइम अर्निंग्स को वेरी गुड इंटरेस्ट रेट के साथ हम लोग रिटर्न करते हैं, और इसमें बहुत सारे पार्शल विड्रॉल्स के प्रावधान है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पेंशन एक बहुत बड़ा चीज है इसमें, ना केवल उनका सुपर एनुएशन पेंशन बल्कि उनके डेथ केस, इन केस ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी उनको फैमिली को भी पेंशन मिलता है, एंड इंश्योरेंस का भी एक कंपोनेंट है, लाइफ इंश्योरेंस का।
1: जी पुणेंदु जी, जैसे अक्सर शायद किसी ना किसी के मन में ये प्रश्न होगा कि जो ये योजना है रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाई गई है, लेकिन ऐसे में यदि कोई जो नियोक्ता योजना का लाभ प्राप्त करने के बाद कर्मचारी को नौकरी से हटा देता है या उसे लंबे समय तक कार्य में नहीं बना के रखता है, तो क्या ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोई प्रावधान या निगरानी व्यवस्था है?
0: इसमें एक सिस्टम का ही इनबिल्ट मैकेनिज्म है, जैसे ही अगर कहीं भी एम्प्लॉयमेंट कम होती है जो बेसलाइन से या थ्रेशोल्ड अगर उसका डाउन होता है तो एम्प्लॉई तो चलो 6 महीने के बाद अगर वो नहीं रहते हैं वहाँ एम्प्लॉयमेंट में तो उनको नहीं मिलेगा बेनिफिट, लेकिन साथ ही एम्प्लॉयर को भी यह बेनिफिट कम हो जाती है। तो एम्प्लॉयर के लिए काइंड ऑफ डिसइंसेंटिव है कि अगर लोगों को निकाल रहे हैं, हटा रहे हैं, अगर वहाँ पे रिटेन नहीं कर रहे हैं, तो रादर एम्प्लॉयर को अभी ज़्यादा इंसेंटिव इसमें है कि लोगों को रखें, रिटेन करें और उनको ट्रेन करें। तो केवल रिटेन करना ही नहीं होगा, जितने दिन लोग रहेंगे उनके लिए एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एम्प्लॉई के लिए भी फायदा, एम्प्लॉयर के लिए भी फायदा।
1: जी, विन विन सिचुएशन है दोनों।
0: विन-विन है, जी।
1: बिहार से जुड़े हैं मोहन पासवान जी।
4: नमस्कार सर।
0: नमस्कार।
4: मैं बस दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ सर।
1: जी।
4: सर मैं जानना चाहता हूँ कि छोटी छोटी कंपनियां लोगों के रोजगार के लिए क्या क्या योजना बनाई है सर नए स्तर से। दूसरा है सर
0: जी, पूछे
1: जी मोहन जी,
4: जो सर भारतीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो सपना है 2017 तक, इसके लिए कौन से सूत्र तैयार किए गए हैं सर, एवं इसमें युवाओं के रोजगार के लिए क्या क्या योजना बनाए गए हैं सर?
1: जनरलाइज सवाल पूछाना,
0: एक जनरलाइज सवाल है। बहुत सारी योजनाएं तैयार की गई है भारत सरकार के द्वारा, उनमें से एक योजना यह प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है जो 2047 के विजन को ध्यान में रखकर किया गया है। इसमें एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई दोनों को बेनिफिट देते हुए, इंसेंटिव देते हुए ये कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार को जो सृजित कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, वर्कर जो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया

0: किया जाए तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को ओवरऑल इंसेंटिव करने के लिए, इंसेंटिवाइज करने के लिए ये एक बहुत अच्छी योजना है।
1: जी अक्सर मैं एक सवाल जो रहता है जहन में एमएसएमई क्षेत्र को लेकर, जो छोटे छोटे जो रोजगार सृजित करते हैं, तो देश के जो एमएसएमई क्षेत्र को रोजगार का जो प्रमुख हम स्रोत मानते भी हैं, तो इस योजना को एमएसएमई क्षेत्र को क्या लाभ मिलने की संभावना है इस योजना से?
2: तो इसमें एमएसएमई के ऊपर जो जो इसके ऊपर प्रोविजंस है, तो नॉर्मली ईपीएफओ जो लॉ है वो केवल एस्टैब्लिशमेंट्स विद एटलीस्ट 20 एम्प्लॉयज जो है उनके लिए मैंडेटरी है। बट आज के डेट में हमारे पास जो डेटा है उसे बहुत सारे ऐसे एमएसएमई हमसे जुड़े हुए हैं जिसका स्ट्रेंथ 20 से भी कम है, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि उनके लिए उनके छोटा साइज को ध्यान में रखते हुए, उनके कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए उनको केवल 2 एम्प्लॉयज एडिशनल एम्प्लॉयज जनरेट करने का उनको कंडीशन रखा गया है। तो 2 साल के पीरियड में उनको एटलीस्ट 2 नए एडिशनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है और उनको सस्टेन करना है, तो सारे एमएसएमएस इसमें बहुत बेनिफिट मिलने की आवश्यकता है।
1: तो विनिर्माण क्षेत्र को भी इस जो योजना से बहुत लाभ मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, तो वो किस प्रकार मिलेगा?
2: तो विनिर्माण क्षेत्र में एम्प्लॉयर जो है उनके लिए एडिशनल बेनिफिट है इसमें। सो जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से ये स्कीम चलता है, तो बाकी संस्थाओं को जो 2 साल तक जो बेनिफिट मिलता है हर एक महीने हर एक नेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग में है उनको 4 साल तक इसके स्कीम के बेनिफिट्स मिलते हैं।
1: यदि कोई जो युवा है पूर्णेंदु जी, पहली बार नौकरी शुरू कर रहा है, तो उसे ईपीएफओ से जुड़ी कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा?
0: जो भी नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहली बात तो उनका एक फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू उमंग ऐप पे जब भी वो यूएएन जनरेट होता है तो वहाँ पे उनकी हम आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। जो पार्ट ए का जो बेनिफिट मिल रहा है इस स्कीम में कि फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू उनका होना पड़ेगा। सेकंड, उनका एक डीबीटी इनेबल्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए, सो आधार के साथ लिंक होता है, लेकिन आपको बैंक में साथ ही साथ अपना डीबीटी के लिए भी इनेबल करवाना पड़ता है। तो ये दोनों चीजों को अगर ध्यान में रखेंगे, फिर जैसे ही ईपीएफओ में अगर आप जुड़ते हैं ऑटोमेटिकली आप 6 महीने तक अगर आ रहे हैं यहाँ हमारे साथ सस्टेन कर गए एक एम्प्लॉयर के साथ, आपका सारा रिटर्न यहाँ आ रहा है, आपका कंप्लायंस हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके बेनिफिट कैलकुलेट होके आपके अकाउंट में चले जाते हैं।
1: छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं इंद्र भान जी।
3: जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। प्रश्न ये है,
1: सवाल पूछे,
3: भारत रोजगार में कौन कौन से सेक्टर है?
1: कौन कौन से
0: इसमें
1: सेक्टर्स?
0: इसमें सारे सेक्टर्स इंक्लूडेड हैं जो भी ईपीएफओ के साथ जुड़े हुए हैं। ये स्कीम ईपीएफओ के थ्रू भारत सरकार चला रही है, वो भी इसलिए यहाँ पे हमारा आइडेंटिफिकेशन यूएएन के थ्रू करते हैं, कंपनीज कवर्ड हैं, तो बेनिफिट बिकॉज आइडेंटिफाइड लोगों को जाती है, तो जितने भी ईपीएफओ के साथ जुड़े हुए संस्थान हैं उनके थ्रू ये सारा कुछ, ये सारी बेनिफिट जाती है।
1: जी, अगर किसी के मन में प्रश्न है कि कोई कर्मचारी है नियोक्ता इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो कोई ऐसा पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर है जिस पर सीधा संपर्क किया जा सकता है?
2: हाँ, तो ये स्कीम के लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट है हमारा pmvbrv.labor.gov.in। इसमें सारे स्कीम रिलेटेड सारे आपको विशेष उसमें मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अगर कॉल करके पूछना है तो टोल फ्री नंबर है 1-44-80-1-44-80। इसमें आप मंडे टू सैटरडे 10 to 6 आप कॉल करेंगे तो आपको किसी भी तरह की डाउट है तो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं।
1: जी हाँ, 1-44-80 हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी शंकाओं का जो भी है निवारण पा सकते हैं। पूर्णेंदु जी, आपसे एक जाते जाते यही आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगी कि ईपीएफओ के आंकड़ों के आधार पर देखें तो पिछले कुछ वर्षों में औपचारिक रोजगार में क्या परिवर्तन देखने को मिले?
0: मैम, हमारे साथ काफी लोग जुड़े हैं और ईपीएफओ के आंकड़े बताते हैं कि भारत में एक बहुत मेजर चेंज आ रहा है
1: जी।
0: वो जो इनफॉर्मल इकोनॉमी हुआ करती थी वो काफी फॉर्मलाइजेशन की ओर बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में बिकॉज ऑफ दिस स्कीम हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि काफी ज्यादा बढ़ेगी और हम सबों को एक फॉर्मल इकोनॉमी, एक विकसित भारत देखने को मिलेगा।
1: जी हाँ, हमें विश्वास है कि आज की चर्चा से युवाओं को रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में उपयोगी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद आप दोनों का, पूर्णेंदु जी और प्रणय जी, आप

0: स्टूडियो में आए और हमारे साथ चर्चा की। श्रोताओं, आपका भी धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ जुड़े। अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी सोमवार को एक नए मुद्दे के साथ। तब तक प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से कार्यक्रम खेल जगत।
3: हम जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगा हर्ट्ज पर तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। इस समय रात के 10 बज रहे हैं और अब समय हो गया है कार्यक्रम खेल जगत का।

0: खेल जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज के इस अंक में सबसे पहले आप सुनेंगे
1: पैरा स्विमर जगदीश तेली से की गई बातचीत। यह आकाशवाणी केंद्र उदयपुर का अंशदान है।
2: नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कहते हैं कि पानी हर बाधा को अपने रास्ते से काटता हुआ आगे बढ़ता रहता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे ही खिलाड़ी जिन्होंने ना सिर्फ पानी की लहरों को बल्कि जीवन में आई हुई सभी चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए सफलता के नए आयाम कायम किए हैं। आइए स्वागत करते हैं जगदीश तेली जी का। जगदीश जी नमस्कार, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
3: जी नमस्कार सर।
2: जगदीश जी कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे।
3: सर मेरा नाम जगदीश तेली है, मैं राजसमंद का निवासी हूँ और पैरा में मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ।
2: जैसे कहा आप पैरा स्विमर हो
3: जी,
2: तो ये जो आपके साथ जो घटना हुई है इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे, ये कैसे हुई और किस उम्र में हुई?
3: सर ये घटना मैं जब 7 साल का था तब हुई है और उस समय मतलब मुझे भी नहीं पता था, इतना नॉलेज तो छोटा था मैं उस समय, लेकिन ये 7 साल की उम्र मेरे साथ घटना हुई थी।
2: अचानक से हो गई थी ये?
3: अचानक मतलब ऐसे मेरे माता पिता बताते हैं कि अचानक मतलब पैर जो है पैरालिसिस हो गया, मैं चल नहीं पा रहा था। फिर धीरे धीरे जैसे बड़ा हुआ तो वापस थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ था।
2: जैसे आपने कहा आपको 7 साल की उम्र में ये हुआ, तो उसके पहले तो आप एक नॉर्मल किड थे
3: जी,
2: लेकिन जब ये घटना हुई तो फिर आप एक पैरल वो हो गए, आप डिसेबल
3: हाँ,
2: वो हो
3: गए। जो चलने में भी सहारे की जरूरत हाँ, होती थी उस समय
2: जी। तो जो समाज है उसका रवैया आपके लिए बिल्कुल बदल गया या वो ही रहा?
3: नहीं, बहुत नेगेटिव था सर।
2: जैसे कि
3: जैसे हीन भावना से या फिर कोई बोल देना, जैसे डायरेक्ट ही बोल देते थे, मतलब एक ऐसे शब्द बोलने नहीं चाहिए हालांकि, लेकिन अब ऐसे शब्द है कि जैसे लंगड़ा है ऐसे बोल
2: जी, जी।
3: इस तरह की सुनने को मिलता था, अब कुछ नहीं कर पाएगा बच्चा,
2: मतलब वो समझते थे कि आप बोझ बन जाओगे।
3: जी बोझ बन जाओ जी।
2: और आपके माँ बाप क्या सोचते थे?
3: नहीं, उनका मतलब बहुत पॉजिटिव था, जो भी है वैसा है, क्योंकि माँ का एक मतलब कैसा भी बच्चा हो माँ बाप का तो लाडला होता है
2: जी
3: जी। तो वो उसमें तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई उनके सपोर्ट से।
2: आपको कब ऐसा लगा कि मुझे कुछ अपनी लाइफ में स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ करना है, खासकर स्विमिंग को लेकर?
3: ये सर एक मतलब एक खेल खेल में हुआ है। मैं जब ऐसे स्विमिंग खाली सीखने जा रहा था और जब मैंने भक्ति शर्मा का देखा, उदयपुरी जलपुरी नाम से फेमस है
2: जी,
3: और उनकी माता जी के अंदर भी मैंने स्विमिंग सीखी थी बाद में, तो उनका मैंने एक आर्टिकल देखा जिसमें वो इंग्लिश चैनल पार किया था 2016 में। तब से मेरे भी मन में आया कि लड़की होके कर सकती है, तो मैं खाली राजसमंद झील क्यों, मैं नहीं सोचा कि मैं राजसमंद झील में भी पार करूँ। तो मैंने ऐसे सोचा था और किसी को बोला मैंने, भाई मैंने ऐसे राजसमंद झील पार करनी, तो मुझे बोला कि नहीं नहीं तू तो दिव्यांग नहीं कर पाएगा। तो फिर मैंने दिमाग से आने की अब तो करना ही है, मतलब एकदम तरह का मैंने पॉजिटिव लिया कि नहीं नहीं अब तो मुझे करना है, उन्होंने मना किया इसका मतलब, तो क्योंकि मुझे स्विमिंग आ गई थी और मुझे पता है कि मैं डूबूंगा तो नहीं, कम से कम कैसा भी हो जाए, मौसम कैसा हो जाए भले या फिर कुछ भी हो जाए।
2: स्विमिंग में सबसे जरूरी होती है कि आपके हाथों के साथ साथ पैरों का भी इस्तेमाल हो
3: जी,
2: ठीक है। तो आपको शुरुआती दौर में किन बाधाओं का सामना करना पड़ा?
3: सर एक भगवान मतलब एक लोग कहते हैं कि भगवान कुछ लेता है तो देता भी है, तो मेरे में एक चीज थी कि मेरे जब कोच भी बोलते सब कि मेरे जो पैर में जो पोलियो है उसकी वजह, मतलब पता नहीं मतलब, लेकिन मेरे हाथ में जो हाथ है आम स्विमर जो होते हैं उनसे थोड़े लंबे है।
2: अच्छा।
3: तो मेरे वो मुझे फायदा मिला उसका,
2: उस चीज का फायदा मिला
3: जी।
2: और फिर जब आपने शुरुआत की तो फिर कहाँ से, नॉर्मल स्विमिंग से ही की, कि जैसे आप गांव में तो लोग बात तालाबों से शुरुआत करते हैं?
3: तालाबों से सर, वही नॉर्मल स्विमिंग जो देसी गांव

0: होती है, क्योंकि मुझे फ्री स्टाइल का स्ट्रोक भी उदयपुर में आया तब पता चला कि भाई एक्यूरेट स्विमिंग ये भी होती है।
1: अच्छा, और फिर उसके बाद फिर आप कैसे कैसे धीरे धीरे अप्रोच करते गए?
0: मैं फर्स्ट टाइम सर यहाँ यूपी में एक रिवर स्विमिंग थी नेशनल इवेंट, उसमें गया, ब्रॉन्ज मेडल लगा। तो एक तरह का होता है जैसे एक मेडल लग गया तो आपके पंख लग गए हो।
1: हाँ बिल्कुल
0: जी, तो उस टाइप का मेरा वहाँ हुआ। फिर मेरा मतलब एक अब खुद में भी सर पॉजिटिव सोच ये सब जागृत हो जाती है कि एक मेडल लग गया तो मतलब आपको फिर धीरे धीरे सब रास्ते भी खुल जाते हैं, कहाँ से कहाँ आगे क्या बढ़ना है, आगे के जो भी स्ट्रोक है कैसे सीखने हैं ये चीजें सब।
1: एज अ पैरा स्विमर और नॉर्मल स्विमर जब सीखते हैं तो इन दोनों में ट्रेनिंग को लेके क्या अलग अलग रवैया रहता है?
0: बहुत,
1: या फिर मतलब टेक्निक वगैरह कुछ अलग रहती है दोनों में?
0: नहीं, तकनीक तो सर सेम होती है लेकिन समझाने का तरीका जो होता है
1: जी,
0: जैसे आम स्विमर है उनको कोच समझा सकता है उनके तरीके से क्योंकि उनको पता है वो। आज हमें पूरे भारत में कई बहुत कम देखने को मिलते हैं दिव्यांग के लिए स्पेशल कोई कोच हो।
1: बिल्कुल,
0: तो अब कोच दिव्यांग अगर के लिए दिव्यांग के लिए होगा तो वो उसकी तरफ से समझा सकता है क्योंकि उन्होंने वो फेस किया है। अब जैसे मैं हूँ, मैं दिव्यांग हूँ और मेरे जो स्टूडेंट है मैं, मुझे पता है ये अगर पैर नहीं है तो क्या तरीका अपनाएंगे तो जाके वो मेडल लाएगा। तो उस तरीके से वो अब धीरे धीरे होने लगा है। पहले ये नहीं था कि दिव्यांग के लिए समझाने वाला हो। जैसे मुझे बहुत सारी जगह ऐसे भी थे कि नॉर्मल स्विमर जो स्विमर स्विमिंग कर रहे हैं उससे अलग रखा जाता है, भाई ये तू अलग यहाँ पे कर ले। तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी हुई कि मैं उनके पास में, हालांकि उनके साथ नहीं कर रहा हूँ लेकिन पास में करके मैं उनके तरह के कॉपी करने की कोशिश करता था, तो उससे मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ ज्यादा।
1: तो ये स्विमिंग करने के लिए कुछ जैसे स्पेशल इक्विपमेंट्स का भी इस्तेमाल होता है
0: जी, जी।
1: पैरा स्विमर्स के लिए कि वही इक्विपमेंट्स होते हैं जो नॉर्मल स्विमर्स के लिए रहते हैं?
0: पैरा में कुछ अब आने लगे हैं, पहले नहीं होते थे इतने।
1: पहले नहीं होते थे
0: जी,
1: अब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है।
0: अब अपग्रेड होती जा रही है, जैसे अभी डाइविंग के लिए भी आ रहे हैं, सपोर्ट के लिए आ रहे हैं, जैसे बहुत सारी चीजें चेंज हुई अब।
1: अच्छा, जब आपने अपना पहला मेडल जीता था जैसे कि आपने बताया ब्रॉन्ज मेडल था, उसके बाद जो समाज का रवैया था वो कितना चेंज हुआ आपके प्रति?
0: जो लोग सर मुझे बोलते थे पहले, जैसे मैंने रास मंजिल पार करी उस समय मुझे जो बोलते थे भाई तू नहीं कर पाएगा ऐसा वैसा, वही लोग जैसे माला लेके आए फिर वही लोग तारीफ करते थे तो वो फिर एक अलग ही खुशी देता था।
1: आपने इंटरनेशनल भी कम्पीट किया है?
0: जी।
1: तो जो आपका फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट था जिसमें आप कॉम्पिटिशन में जा रहे थे उस समय आपकी क्या फीलिंग थी? कभी आपने सोचा था कि मैं एज अ पैरा स्विमर इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर पाऊंगा?
0: सर सोचा तो नहीं था क्योंकि मैं एक किसान परिवार से आता हूँ, तो इतना बड़ा सोचना मेरे लिए बहुत बड़े एक सपने की तरह था
1: जी।
0: लेकिन जब समाज का सपोर्ट, अपने घर वालों का सपोर्ट, सबका जो कोच का जो रवैया है या भी उनका जो तरीका है अपने बताने का, फेस करने का, उससे सर मुझे बहुत मतलब फायदा हुआ है। और समाज जब एक होता है ना, जब मेरा मतलब ब्रॉन्ज मेडल लाया उसके बाद से मेरा लाइफ एक तरह का जैसे चेंज होने लगी थी। तो उससे मतलब अब जब इंटरनेशनल जा रहे हो आप तो उसमें तो होता ही सर एक प्रेशर तो होता है, हालांकि वो वाले खेलने का, लेकिन एक खुशी भी होती है कि चलो एक गांव से निकल के यहाँ तक पहुंचना मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी।
1: जी बिल्कुल, आपकी उपलब्धियों में सबसे बड़ी चीज है इंग्लिश चैनल और कैटालिना चैनल की।
0: जी जी,
1: इन दोनों चैनलों के बारे में आपके मन में सबसे पहले विचार क्या आया?
0: सर मेरा
1: और कहां से आया, मतलब आपने कैसे सोचा कि मैं इन दोनों चैनलों में उतरूं और इनको पार करूं?
0: मैं सर है मतलब जब स्विमिंग की मेरी शुरुआत हुई थी मेन, तब मैं निकला इसलिए था कि इंग्लिश चैनल करना। 2009 में 10 में हमारा प्लान था कि इंग्लिश।
1: अच्छा, आपने उनसे जो उदयपुर की जो भक्ति जी, जी थी, हाँ, उनसे प्रेरणा लेके,
0: उनसे प्रेरणा ली कि भाई मुझे भी इंग्लिश चैनल करना है।
1: हाँ।
0: लेकिन क्या हुआ कि ऐसे जैसे तो सर फंड की भी जरूरत होती है
1: जी, बिल्कुल।
0: मैं, जैसे मैंने पहले बताया कि परिवार में किसान परिवार से हूँ तो इतना वहां से तो होना नहीं, मतलब बाहर तक जाना मतलब सोचने से भी, और ट्रेनिंग के लिए भी नहीं हो रहा तो वहां तो क्या होगा सर। तो फिर पैसे नहीं हुए थे, तो मतलब 2010 तक मेरे बजट नहीं हुआ था तो फिर नहीं कर पाया मैं। लेकिन जब मेरे स्टेट लेवल पे नेशनल पे मेडल लगने शुरू हो गए और लोगों का जैसे सपोर्ट मिलना शुरू हुआ तो अलग अलग बहुत सारी कंपनियों भी हमने सपोर्ट किया, जैसे हमारे केलवा से भी कुछ संस्थाएं हैं, राजसमंद से, उदयपुर से हैं, मुंबई से हैं, ऐसी ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया था और उससे हम इंग्लिश चैनल करके आए। और इंग्लिश चैनल में हमारा सर एक पैरा ग्रुप बना जिसे हम नेशनल लेवल पे मिलते रहते खिलाड़ी लोग, तो उसमें हमारा एक ग्रुप बना, उसमें बोला सबको करना था इंग्लिश चैनल, तो हमने वहीं से एक प्लान करके 2018 में प्लान किया कि अब करना है। तो फिर हम रोहन, हमारे जो कोच थे रोहन मोरे जो पुणे के हैं, उनके दिशा निर्देशन में हमने ट्रेनिंग करी वहाँ और फिर 2018 में करके आए हम।
1: तो जब आप इंग्लिश चैनल पार कर रहे थे तो उस समय आपको क्या रियलाइज हुआ कितनी बड़ी चुनौती है और ये उस समय क्या क्या बाधाएं आई?
0: सर एक तो इंग्लिश चैनल अपन बोलते हैं यहाँ, यहाँ खाली खाली बोलना देखना मतलब करना ऐसा सोचना आसान है, लेकिन जब

0: हम वहां हम गए ट्रेनिंग के लिए, तो वहां जो लगा जैसे एक हाथ पैर सुन्न हो जाना,
1: बिल्कुल
0: ये चीजें हमारी
1: पानी का बहाव भी ज्यादा होता है,
0: तो दिमाग में कभी ऐसा हमारे भी दिमाग में आया था कि यार इसकी जगह कोई दूसरा गेम चूज करते तो अच्छा था, क्योंकि इतना ठंडा पानी और खाली यहाँ मतलब दूसरा गेम करते तो ठंड तो ठंड से बचाते हैं, लेकिन वहाँ चलो गए हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे हमने ट्रेनिंग करी वहीं पे, तो हम उसी लेवल मतलब जहाँ पे हम देखते थे वहाँ के लोग एकदम ओपन, जैसे हम कट में घूम रहे हैं कट कपड़े पहन के, और हम ऐसे जो अपने सर्दियों में पहनते हैं वो कपड़े पहन के घूम रहे थे, तो वहाँ पे फिर लगा कि सर ये मतलब इसके ये अब हम कैसे कर पाएंगे। तो धीरे धीरे धीरे हम डेढ़ महीना वहाँ प्रैक्टिस करी, उसके बाद में हमने उसी उनकी तरह आराम से कर लिया जैसे।
1: और फिर उसके बाद कैटेलिना चैनल का नंबर आया
0: जी।
1: जो चुनौतियां इंग्लिश चैनल के समय थी, क्या वही चुनौतियां कैटेलिना चैनल के समय थी कि वहां पे कुछ विपरीत वो माहौल था?
0: वो विपरीत माहौल था वहाँ, इंग्लिश चैनल बहुत टफ है, कैटेलिना चैनल थोड़ा सा लाइट, मतलब थोड़ा सा मतलब आप एकदम इजी भी नहीं मान सकते उसको, लेकिन थोड़ा लाइट है, जो ठंडे जो कम ठंडा है जैसे, और चैलेंजिंग नहीं। इंग्लिश चैनल में बहुत करंट आते हैं, जैसे करंट वेव आते हैं अंदर के जो आपको पीछे खींचते हैं, तो केरला चैनल में इतना नहीं था। और प्लान था हमारा कि जैसे इंग्लिश चैनल करना, फिर केरला चैनल करना, 7C का टारगेट था, लेकिन फिर लॉकडाउन की वजह से नहीं कर पाए थे।
1: अच्छा सर, आप एक ट्रेनर भी हैं
0: जी,
1: आपके पास जब कोई बच्चा स्विमिंग के लिए आता है, खासकर पैरा स्विमर, उसमें आप सबसे पहले कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करते हैं कि वो पानी में उतर के स्विमिंग कर ही पाएगा?
0: नहीं, उनको विश्वास में लेते सर, प्यार से भी बच्चे मतलब कर लेते हैं, जैसे साम दाम दंड भेद सब अपनाने पड़ते हैं हालांकि।
1: अच्छा,
0: लेकिन पहले जो होता है प्यार से समझाना, जैसे करना ना कराना वो कर लेते हैं, हालांकि ज्यादातर ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं होती है ना। और पैरा स्विमर तो सर वैसे ही वो आते हैं, मतलब ऐसे मैंने अब तक जो सिखाए जितने भी पैरा हैं, मुझे जो नॉर्मल लोगों को सिखाना और उनको सिखाना बहुत आसान लगा, मतलब पैरा को सिखाना मुझे बहुत आसान लगा।
1: ऐसा क्यों
0: पता नहीं, ये अलग ही उनके अंदर एक सर अलग ही होता है, वो जुनून होता है थोड़ा सा, क्योंकि वहां तक आना
1: कुछ साबित करने का जुनून रहता है।
0: हाँ, साबित करने का जुनून होता है, बाकी होता है नॉर्मल जो भी आते हैं सीखेंगे तो ठीक है, नहीं तो वापस चले जाएंगे।
1: आप पिछले कितने सालों से सिखा रहे हैं?
0: मैं 4 साल हो गए सर सिखाते।
1: तो इन 4 सालों में आपका ऐसा कोई शिष्य जिसने बहुत ज्यादा मतलब काफी उपलब्धि हासिल कर ली हो?
0: एक है हमारा विष्णु कुमार बेरवा, जो अभी हाल ही में वो एक गोल्ड 2 सिल्वर लेके आए हैं बेंगलोर में जूनियर पैरा में।
1: आपके नॉर्मल स्टूडेंट से ज्यादा उपलब्ध है उन्होंने?
0: जी जी।
1: अच्छा जगदीश जी, जाते जाते हमारे जो श्रोता है उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: हमारा उद्देश्य ये है कि हर व्यक्ति को अपने बचाव इतना स्विमिंग आनी चाहिए। अगर आप अगर हो सके कॉम्पिटिशन की तैयारी करते तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने बचाव जितने तो हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए, और माता पिता को भी अपने बच्चों को अपने बचाव जितने सिखानी चाहिए।
1: तो श्रोताओं, ये थे श्री जगदीश तेली जी। आपने अपनी कहानी से ये बताया, ये साबित किया कि शारीरिक बाधाएं सिर्फ नाम की होती है, अगर आपका मानसिक ताकत हो और आपके पास कर जाने का जुनून हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, भले वो इंग्लिश चैनल हो या कैटेलिन चैनल हो। और हम आशा करते हैं कि आप भविष्य में 7 के 7 चैनल पार करें
0: जी, धन्यवाद।
1: हमारे उदयपुर का, राजसमंद का और हमारे देश का नाम रोशन करें। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद सर।
2: अभी आप सुन रहे थे पैरा स्विमर जगदीश तेली से की गई बातचीत, यह आकाशवाणी केंद्र उदयपुर का अंशदान था। श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं टेबल टेनिस खिलाड़ी प्रखर मदान से की गई बातचीत।
3: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसे खिलाड़ी से मिलवा रहे हैं जिसका खेल बहुत ही तेज गति का है, और उसमें शॉट मारने के लिए आपको इतना कम समय मिलता है जैसे सेकंड के 100वें हिस्से से भी कम समय में आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि आप उस खेल के शॉट को कहां और कैसे मारे ताकि आप अधिक से अधिक अपने पॉइंट बना सके। जी हां, उस खेल का नाम है टेबल टेनिस, और टेबल टेनिस के एक खिलाड़ी के तौर पर आज हमारे साथ हैं श्री प्रखर मदान। प्रखर मदान, नमस्कार, स्वागत है आपका।
4: नमस्कार
3: प्रखर। टेबल टेनिस की बात की, और जो जैसा कि मैंने कहा कि इतना कम समय मिलता है, सेकंड के 100वें हिस्से से भी कम जब आपको शॉट मारना पड़ता है, ये बात सच है?
4: हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। आपको आधा सेकंड से 1 सेकंड रहता है, उसमें आपको पूरा डिसाइड करना होता है आपके पास बॉल स्पिन कौन सी आ रही है, कैसे कितनी स्पीड में बॉल आ रही है, सामने वाला प्लेयर कहाँ पर खड़ा है, आपको वो बॉल कहाँ पर प्लेस करनी है, ये सब चीजें आपको आधे से 1 सेकंड में डिसाइड करके ही सब कुछ आपका फैसला लेके आपको उधर बॉल प्लेस करनी होती है।
3: इतनी तेज गति का खेल है ये, जिसमें इतना कम समय हमको शॉट मारने के लिए सोचने का समय मिलता है कि हम कैसे अपने पॉइंट्स को बचाएं और अधिक से अधिक अपने पॉइंट बनाएं। टेबल टेनिस के खेल की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ?
4: तो ये स्टार्ट हुआ था जब मैं करीब 10 साल के आसपास का था, जब मैं फिफ्थ क्लास में था
3: जी।
4: तो

0: मेरे पापा ने मुझे इसके इसमें लगाया है. मतलब मेरे पापा बहुत खेलते थे टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कैरम. तो इसका शुरुआत हुआ, मेरे पापा ने एक टूर्नामेंट जीता था, तो वो बहुत सारे प्राइजेस लेके आए थे घर पे एक बार. तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, तो मैंने ऐसे ही पापा से सीखना चालू किया मेरे घर की डाइनिंग टेबल पे.
1: अच्छा
0: तो मेरे पापा हमेशा ऑफिस से आते थे, तो मैं डाइनिंग टेबल हमेशा रेडी करके सेट करके उस पर नेट वेट लगा के मैं हमेशा तैयार रहता था और पूरा इंतजार करता था उनका. और फिर मेरे पापा ने मेरे को खेलना सिखाया उसका. तो धीरे धीरे ऐसा चलता रहा, हम लोग खेले ऐसा 2-3 महीने. फिर मैं धीरे धीरे मेरे पापा को टक्कर देने लगा, पापा
1: अच्छा
0: के साथ अच्छा जीतने लगा. मतलब वॉल प्रैक्टिस करता था मैं पापा, फिर घर आते थे तो खेलता था उनके साथ. तो फिर ऐसे ऐसे मेरा गेम काफी इम्प्रूव हुआ. और उसके बाद फिर ये देख के मैंने स्कूल में भी खेलना चालू करा. तो स्कूल में फिर मेरा धीरे धीरे हाउस टीम में सिलेक्शन हुआ. फिर ये ऐसा ऐसा करके मैंने फिर शाम को मैं आके डाइनिंग टेबल पे फिर मेरे को छोटी लगने लगी. और फिर मेरे पापा ने मेरे को, जो मैं तब अलवर में रहता था,
1: जी
0: तो अलवर में स्टेडियम था एक, वहाँ पे अच्छे प्लेयर खेलते थे. तो धीरे धीरे मैं अपनी मम्मा के साथ जाता था वहाँ पे शाम को खेलने. तो वहाँ पे मैंने खेलना स्टार्ट किया. फिर ऐसा करीब ये चला होगा 1 से 2 साल, फिर मैं अपनी स्कूल की टीम में सेलेक्ट हुआ. तो तब मैं सबसे छोटा प्लेयर था जो स्कूल की टीम में सेलेक्ट हुआ था 7th क्लास में. फिर उसके बाद हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट खेला. तो 8th स्टैंडर्ड की बात है, तो मैं डिस्ट्रिक्ट खेला था, जिसमें मेरा पहली बार ही मैं डिस्ट्रिक्ट खेला था और पहली बार में मेरा स्टेट में सिलेक्शन हो गया था. तो ऐसे ही चला. फिर 9th स्टैंडर्ड में भी मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला. और 9th स्टैंडर्ड में मैं डिस्ट्रिक्ट में एज अ मैंने 8th स्टैंडर्ड में मैं 5th क्वालिफाई किया था सिर्फ. बाकी 9th स्टैंडर्ड में मैंने 2nd स्थान प्राप्त किया पूरे जयपुर में.
1: जी
0: तो उससे मेरा फिर वापस स्टेट हुआ. और फिर उसी साल मैंने पूरे ऑल ओवर राजस्थान में 4th रैंक हासिल करी थी एज अ स्टेट स्टेट लेवल पे.
1: स्टेट लेवल पे जैसा आप बता रहे हैं कि 7th से आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलना शुरू किया और लगातार पहली दूसरी पोजीशन के आसपास ही आप स्टैंड करते रहे, और पापा ने आपको को देखकर आपको इसका शौक लगा। अभी खेलते खेलते आपको काफी अरसा हो गया है, और स्टेट के बाद में क्या कभी नेशनल टूर्नामेंट में किसी में जाने का मौका मिला जहां पर दूसरे स्टेट के प्लेयर्स भी आए हों?
0: स्टेट के बाद हमारा ऐसा होता है, जब मैं 4th रैंक आई थी मेरी ऑल ओवर राजस्थान में, मतलब पूरे स्टेट में, तब हमारा नेशनल कैंप लगता है जिसमें 10 बच्चे सेलेक्ट होते हैं. जो एक रहता है आपका क्वार्टर फाइनल में, जो 8 लोग आते हैं, उसके बाद 2 बच्चे वो उनकी ओवरऑल रैंकिंग एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस देख के 2 लोग जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स रहते हैं टेबल टेनिस के, वो लोग सेलेक्ट करते हैं. तो उसका 10 लोग का हमारा नेशनल कैंप हुआ था जयपुर में, 2014 की बात है ये. तो 2014 में नेशनल कैंप हुआ था, तो उसमें मैं थोड़े से रैंक से रह गया था. तो 5 लोग क्वालिफाई करते हैं उसमें, तो मैं 6th पोजीशन पे आया था. तो उस साल मैं नहीं खेल पाया था. फिर नेक्स्ट ईयर भी 10th स्टैंडर्ड में भी मैं गया था खेलने स्टेट लेवल पे. स्टेट लेवल पे मैं 3 बार स्टेट लेवल खेला हूँ और 3 बार टीम इवेंट में हम लोग 2nd आए हैं. 2 बार मैं जयपुर की तरफ से खेला हूँ और 1 साल मैं 8th स्टैंडर्ड में अलवर की तरफ से खेला हूँ.
1: जी हाँ, प्रखर मदान, आप काफी तेज गति से इस गेम को खेलते हैं और इससे कहते हैं कि हमारी बॉडी का जो स्टेमिना है काफी इसमें चाहिए खेलने के लिए। वास्तव में अगर हम टेबल टेनिस की टेक्निक को सीखना चाहें, क्या टेक्निक का गेम है या माइंड का गेम है, किस तरह से हम इसको खेलते हैं?
0: तो जहां तक मेरा अनुभव है, मैं कहना चाहूंगा कि ये दोनों का ही गेम है. गति का भी गेम रहेगा इसमें और इसमें आपका टेक्निक भी बहुत रहता है. और ये बहुत धीरे धीरे आपको आता है. आप सोचोगे कि आपको बहुत जल्दी आ जाए, ऐसा नहीं रहता. ये बहुत ही आपके आपको बहुत इसमें अनुभव चाहिए, बहुत टाइम की प्रैक्टिस चाहिए, तभी आप इसमें वो मास्टर कर सकते हैं. ऐसे क्योंकि बहुत स्पीड से बॉल आती है और बहुत तरीके की स्पिन होती है इसमें. साइड स्पिन होती है, बैक स्पिन होती है, फॉरवर्ड स्पिन होती है. तो आपको वो चीज़ें एनालाइज करने में और देख के खेलने में काफ़ी समय लगता है, बहुत टाइम लगेगा आपको ये सब सीखने में. तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, मतलब स्टैमिना के लिए भी, मतलब मेरा कोच मुझे मल्टी बॉल वो प्रैक्टिस कराता था, उसमें बहुत ज़्यादा स्टैमिना चाहिए होता है. फिर आपका फुटवर्क आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय होता है कि आप पोजीशन से इधर लेफ्ट से राइट, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करें. तो फुटवर्क भी इसमें एक बहुत ज़्यादा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा काम का है, तो उसका आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है. और बाकी मेरा कोच मुझे ये मल्टी बॉल से और उससे मेरा स्टैमिना काफ़ी इम्प्रूव हुआ था.
1: जैसा आप बता रहे हैं कि आपके कोच ने आपको सिखाने में काफ़ी मेहनत की, आपने 2 शब्दों का इसमें इस्तेमाल किया है, फुटवर्क और स्पिन। ऐसा लगता है जैसे क्रिकेट की बात कर रहे हैं
0: हम. हाँ, वो बॉल का गेम में तो सब में ही रहता है आपका. आप टेनिस ले लो, टेनिस और टेबल टेनिस दोनों में ही आपका सारा स्पिन रहता है. बैक स्पिन, फॉरवर्ड स्पिन, साइड स्पिन, तो वो सब आपको देख के खेलना पड़ता है कि आपको कब

0: साइड्समैन का, आपको कैसे सामने वाले को रिप्लाई करना है एज अ बैट से, तो वो सब आपको देख के ही करना पड़ता है।
1: प्रखर, कभी आपको लगा खेलते खेलते कि यार एक बहुत ही टफ गेम है और इसमें काफी स्पीड चाहिए और मुझे गेम बदलना चाहिए, कुछ और खेलूं, ऐसा विचार मन में आया कभी?
0: नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा विचार आया, लेकिन मैं जरूर, मैंने बैडमिंटन भी बहुत खेला है, मेरे पापा ने सिखाया वो भी मेरे को, तो मैंने बैडमिंटन भी बहुत खेला है और लॉन टेनिस, तो मैंने सारे तीनों रैकेट स्पोर्ट्स बहुत खेले हैं, बट प्रोफेशनली मैंने टेबल टेनिस को ही वो चुना क्योंकि मेरे को उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। लेकिन एज अ मैं बोलूंगा, लेकिन काफ़ी ये टेबल टेनिस और लॉन टेनिस काफ़ी सिमिलर गेम है क्योंकि इसमें आपका स्पिन वगैरह सब ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, लेकिन थोड़ा, लेकिन बैडमिंटन भी खेला है तो फुटवर्क मेरा उन सब से भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है क्योंकि बैडमिंटन बैडमिंटन में थोड़ा आपका बड़ा एरिया हो जाता है, तो
1: जी
0: उसके लिए आपको और फुटवर्क ज़्यादा अच्छा चाहिए होता है, तो मैं कहूँगा कि मेरा बैडमिंटन और लॉन टेनिस खेलने से भी मेरे गेम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है।
1: इसका मतलब ये हुआ कि एक टेबल टेनिस के प्लेयर को बैडमिंटन और टेनिस दोनों खेलना जरूरी है ताकि
0: नहीं,
1: उससे
0: खेलना जरूरी नहीं कहूंगा मैं, लेकिन अगर आप खेलते हैं तो आपका फुटवर्क और ये सब जो,
1: मतलब आपकी गेम में इम्प्रूवमेंट आता
0: हाँ,
1: है।
0: गेम में इम्प्रूवमेंट आ सकता है, करेक्ट।
1: ऐसा कोई मैच याद है जब आपको बिल्कुल नेक टू नेक लग रहा था कि मैं हार जाऊंगा और हारते हारते जीत गए, या ऐसा कि मैं जीत रहा था और जीतते जीतते हार गया?
0: तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मेरा नेशनल कैंप लगा था, 900 की बात है ये, तो उसमें मेरा वो चल रहा था, प्री क्वार्टर फाइनल चल रहा था जिसमें 16 लोग रहते हैं,
1: जी
0: तो उसमें मेरे को नेशनल कैंप क्वालिफाई करने के लिए आपको टॉप 8 में आना चाहिए जो कि होता है क्वार्टर फाइनल, तो उसमें मुझे अच्छे से याद है, मेरा मेरा एक दोस्त ही था, मैं तब 8 स्टैंडर्ड में अलवर के लिए, अलवर से खेलता था, और 9 स्टैंडर्ड में मेरे पापा का ट्रांसफर हुआ था जयपुर, तो हमने, मैं जयपुर के उससे खेल रहा था, तो मेरे दोस्त से ही मेरा मैच था जिसके साथ मैं अलवर में प्रैक्टिस किया करता था, तो वो 2-0 जीत रहा था और ये तीसरा बेस्ट ऑफ 5 का मैच था, वो 2-0 अप था, और थर्ड मैच भी मैं, वो 10-7 पॉइंट चल रहा था, तो टेबल टेनिस का मैच होता है 11 पॉइंट्स का मैच होता है, तो 10-7 का स्कोर चल रहा था, और उसके बाद मैंने 3 पॉइंट लगातार लेके ड्यूस पे मैं मैच को लेकर आया, और उसके बाद लगातार मैंने अगले 2 गेम भी जीते, और उसी से ही मेरा नेशनल कैंप में सिलेक्शन हुआ था, और उसी परफॉर्मेंस के चक्कर में मैं मतलब काफी फेमस हो गया था, और जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं आपके टेबल टेनिस के, उनके भी उसमें आ गया था मैं, तो फिर उसके बाद मेरा नेशनल कैंप लगा, उससे मैंने प्रैक्टिस करी, बट कुछ कारण के चक्कर में मेरा नेशनल में सिलेक्शन नहीं हो पाया था, मैं
1: जी
0: कैंप में बाहर हो गया था, बट वो मैच एक ऐसा मैच है जो मैं कभी नहीं
1: कभी
0: भूलूंगा, जिसके
1: जी
0: चक्कर
1: जी
0: में मेरा काफी इम्प्रूवमेंट भी आया, मैं काफी लोगों से मिला भी सही, और मतलब गेम चेंजिंग मैच था वो मेरे लिए।
1: प्रखर, अक्सर हम देखते हैं कि बहुत जुनूनी खिलाड़ी किसी अच्छे खिलाड़ी को देखकर उसका मैच देख देख कर गेम सीख जाते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा भी हम मानते हैं कि अगर आपको परफेक्ट खिलाड़ी बनना है तो एक कोच होना जरूरी है जो आपके सारे कमियों को दूर कर दे और आपको एक परफेक्ट प्लेयर बनाए। तो कोच का रोल टेबल टेनिस में कितना है?
0: कोच का रोल बहुत होता है आपका, तो जैसा कि मैं इधर जयपुर के SMS स्टेडियम में खेला करता था, तो हमारे उधर एक संजय सर करके होते थे, तो उन्होंने मेरा बहुत बहुत सहयोग दिया है मेरे साथ, उन्होंने मेरा सारा, जो मेरा पूरा एक आपका मूवमेंट रहता है हैंड का, तो आपका, मेरा स्टार्टिंग में रिस्ट बहुत मूव होता था, तो जो कि आपका नहीं होना चाहिए, तो रिस्ट का जो इम्प्रूवमेंट होता है वो टेबल टेनिस में बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है,
1: जी
0: तो वो मेरा उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव कराया है, तो मैं उनको उसके लिए बहुत, मेरा उसके बाद से ही काफी इम्प्रूव हुआ है गेम, तो काफी महत्व रहता है, बाकी जो आपके आपको जब आपका मैच खेलते हो आप, आपको उसमें सपोर्ट की जरूरत होती है, तब कोच, तब का भी कोच बहुत मतलब सपोर्ट करते हैं आपको, तो वो
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: सही, अच्छा रहता है।
1: ऐसा कोई खिलाड़ी जिसको देखकर आप चाहते हैं कि मैं भी उसके जैसा खिलाड़ी बनूं, एक बड़ा खिलाड़ी, एक रोल मॉडल जो होता है ना, जो हमें काफी प्रेरित करता है कि यार अगर टेबल टेनिस में खेल रहा हूं तो मुझे इसका गेम बहुत अच्छा लगता है।
0: तो इसके लिए मैं 2 लोग को वो करूंगा, एक है तिमो बोल जो कि है जर्मनी के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बार वो वर्ल्ड नंबर 1, 4 से 5 बार वर्ल्ड नंबर 1 का उनका वो रहा है, बाकी
1: रैंकिंग
0: रैंकिंग रही है, एंड वो अभी भी 41 ईयर्स के हैं, लेकिन वो अभी भी खेल रहे हैं और अभी भी वो टॉप 20 टॉप 10 में आते रहते हैं, तो उनको ही देख के मैंने यूट्यूब पे उनके बहुत वीडियोज देखे हैं, उनकी टेक्निक से मैंने अपने आप को बहुत घर पे प्रैक्टिस करके बहुत इम्प्रूव करा है, और एक दूसरा नाम मैं लेना चाहूंगा मानव ठक्कर करके, वो इंडिया के ही खिलाड़ी है और वो काफी यंग लेवल के खिलाड़ी है जो कि अभी अपने इंडिया कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको मैंने यहाँ पे जयपुर में भी खेलते हुए देखा है, वो अजमेर में प्रैक्टिस करते थे PSPB अकेडमी में, तो उनको मैंने देख के मतलब काफी मैंने अपना रोल मॉडल माना है, वो काफी कम उम्र से वो खेलना चालू करे थे और काफी अच्छा खेलते हैं वो, और अभी सबसे छोटे प्लेयर होंगे जो

0: वर्ल्ड इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
1: प्रखर, आप अभी जॉब में भी आ गए हैं और आपका खेलना भी जारी है, तो आगे आपका इस खेल को लेकर टेबल टेनिस में कोई अच्छा सा ड्रीम होगा, क्या करना चाहेंगे?
0: तो जैसा मैंने आपको बताया था कि 9th स्टैंडर्ड में मैं नेशनल कैंप तक ही जा पाया था और फिर मेरा नेशनल में कभी खेला भी नहीं था, 10th स्टैंडर्ड में मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया था, तो वो मेरा अभी अधूरा रह रखा है। तो उसको मैं, अगर मेरे को टाइम मिला अभी जॉब के साथ, तो मैं अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे हमने कॉर्पोरेट इवेंट्स भी खेलते हैं, तो अभी भी मैं शाम को जॉब से आने के बाद प्रैक्टिस करता हूँ। तो वो मेरा अगर पूरा हो पाएगा तो नेशनल खेलने का एक, तो मैं मतलब वो मेरा है सपना एक तरीके से, एक बार नेशनल खेलना है मेरे को, तो उसके लिए मैं एक बार जरूर प्रैक्टिस करूंगा। और
1: जी जी, क्या कहना चाहेंगे नए दौर के खिलाड़ियों के लिए जो नए नए आ रहे हैं टेबल टेनिस में, कि वो थोड़ा सा पेशेंस रखें और थोड़ा पेशेंस भी रखें?
0: करेक्ट
1: जी, क्या कहेंगे?
0: तो मैं यही बोलूंगा, मैंने भी बहुत प्रैक्टिस करी है, 2 साल मेरे को वॉल प्रैक्टिस करी है मैंने, बहुत लोगों के साथ खेला है। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो होती है वो बहुत जरूरी है। मैंने कितने मैचेस खेले वो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे को वो याद है कि नए नए लोगों से मिला हूँ कैसे सारे, जैसे मैंने आपको एक मैच बताया उसके बारे में याद रहता है। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, वो जो जर्नी है आपकी, वो बहुत अच्छी रहती है आपको। फिर आपको खेलना है तो आपका मतलब कुछ ना कुछ तो आपको खेलना ही चाहिए आपको। और टेबल टेनिस एक ऐसा गेम है जो आपको स्टैमिना भी आपका इम्प्रूव करता है, आपका मूवमेंट्स भी ये आपके मूवमेंट स्ट्रांग कराता है, तो
1: और आपको फिट रखने में,
0: हाँ आपको फिट रखने में बहुत मदद करता है वो। तो नए को मैं ये बोलूंगा, नए खिलाड़ियों को, कि आप खूब से खूब टाइम दें, मतलब एज अ स्टडीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए आपको उसके लिए, लेकिन आपका कोई भी स्पेयर टाइम होगा तो उसमें अगर आप टेबल टेनिस को टाइम दे सकते हैं तो उसके लिए आपको जरूर मेहनत करनी चाहिए।
1: तो प्रखर मदान, आप एक अच्छे खिलाड़ी बने रहें और नित नई सफलताएं आपको मिलते रहें, ऐसी शुभकामनाएं आकाशवाणी आपको देती है।
2: अभी आप सुन रहे थे टेबल टेनिस खिलाड़ी प्रखर मदान से की गई बातचीत। कार्यक्रम का समय हो चला है, अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल जगत, ये आकाशवाणी है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं।
1: FM 102.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं।

सूखी धरती करे पुकार, वृक्ष लगाओ करो श्रृंगार। वृक्ष लगाओ, इंद्र को बुलाओ।

FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आइए हम आपको सुनवाते हैं कुछ गैर फिल्मी भजन लता मंगेशकर की आवाजों में।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के गाए कुछ गैर फिल्मी भजन। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार।

0: प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
2: Every decision I've taken, मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। फिफ्टीन पीपल मोस्ट ऑफ द